0: यही है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है। यही हमारी जिंदगी के बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमानों से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए।
1: लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है?
0: तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तुम्हारे दिल में रहती है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बने कैसे? करते करते करते करते आदत बने। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार और आप सबका आज फिर स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में. अपनी पहचान पूरी हुई, ये तलाश जो कब से चल रही थी वो आज लगता है कि कंप्लीट हुई. खुद को पहचाना, खुशी हुई और फिर परमात्मा से भी हमारा तारुफ हुआ, रूबरू हुए और एक नया सफर, एक नई शुरुआत हुई, एक नया रिश्ता जो कि सबसे गहरा, सबसे अच्छा. लेकिन अब अपने से उठ के थोड़ा बाहर देखे तो फिर वही दुख, वही सारी लाचारगी, वही बेचारगी नजर आ रही है. क्या उसका मैं एक हिस्सा हूँ? इसी समाज में जो कुछ हो रहा है उसका मैं एक हिस्सा हूँ? क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? ये क्यों हो रहा है? क्यों इतना कुछ बदल रहा है आज समाज में? कई ऐसे सवाल अभी भी उठ रहे हैं और इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज फिर मुलाकात करते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से. ओम शांति.
2: ओम शांति.
1: एक शांति का एहसास मैं खुद कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, ये पहचान हमें हुई. उस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा और हम उस प्यार के सागर से वो पूरी चीजें जो हमारी बिछुड़ गई थी, खत्म हो गई थी, हम अपने आप को भर रहे हैं. लेकिन सिस्टर शिवानी, जब खुद में कंप्लीट होके बाहर देखते हैं तो वो जो मैं थी वो हर एक में नजर आ रहा है, बेचारगी, लाचारगी. क्या हुआ हुआ है ऐसा कि पूरा समाज आज सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि डरा हुआ है. कोई और शब्द मुझे नहीं नजर आता, सिर्फ ये कि डरे हुए हैं हम लोग. क्यों
2: डरे हुए भी हैं और हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है बहुत अच्छे भाव से, लेकिन हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे तो डर क्रिएट हो जाता है. एंड द बिगेस्ट फियर इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. यू नो, हम ग्लोबल लेवल पर देखें, हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें, हम एनवायरमेंटल लेवल पर देखें, तो हर एस्पेक्ट से हमें फिगर्स, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ, न्यूज चैनल कोई भी ऑन कर लो, डॉक्यूमेंट्री कोई भी देख लो, एवरीथिंग इज दिस. एंड हमारे तरफ फिगर्स फेंके जा रहे हैं, 2008, 2012, यू नो, दैट्स ऑल दैट्स लेफ्ट, दैट्स ऑल दैट्स लेफ्ट, एंड दिस वर्ल्ड विल नॉट बी आफ्टर दैट. तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक भय बैठता जा रहा है, जबकि बहुत डीप नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैठता है कि आखिर हमारा भविष्य क्या. जो आज के बच्चे देख रहे हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो उठेगा ही ना, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2008.
1: एक तरफ जहां डर बैठ रहा है सिस्टर शिवानी, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि मेरे साथ नहीं होगा. ये सिर्फ एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन वो कबूतर जैसे आंख बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो होगा देखा जाएगा. सो ये जो दो एटीट्यूड्स लेकर हम जी रहे हैं, उसके बीच का कोई एक सोल्यूशन वाला रास्ता नहीं निकल.
2: और कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेने के लिए रेडी नहीं है ना, इसीलिए उससे आंख मूंद लेते हैं. परमात्मा आकर हमें तीन चीजों का परिचय देते हैं, आत्मा का, स्वयं अपना, निराकार परमात्मा का, एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम. What is the present time that is going on and what is going to happen? क्योंकि ये भी तो बहुत बड़े question mark है ना. जो आपने कहा अंदर की शांति, वो तब है जब कोई question नहीं है. लेकिन ये भी तो सारा दिन question उठ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक चलने वाला है, ये दुख, अशांति, ये कब
1: से शुरू. और अगर हम खासकर अगर अपने अपनी ही बात करें, क्योंकि अभी तक हम अपने पे ही थे केंद्रित, तो अपने से थोड़ा आगे बढ़े तो रिश्तों को देख रहे हैं. इतना ज्यादा रिश्तों में गिरावट आती नजर आ रही है कि जब मतलब त्राही त्राही करता है मन, मतलब किसी का भी अगर हम देख लें, किसी भी लेवल पे, चाहे वो स्कूल्स में देख रहे हैं, कॉलेजेस में देख रहे हैं, जिस तरह की वायलेंस है, मतलब व्हाट इज रियली हैपनिंग.
2: या दैट्स व्हाट, एंड द थिंग इज के वी नीड टू कैच द साइन. जब हमें ये सिग्नल्स दिख रहे हैं तो हमें इनको कैच करना पड़ेगा कि आखिर समय किस ओर जा रहा है, समय हमें क्या संकेत दे रहा है. सोसाइटी इज फॉलिंग इल, पूरा समाज, हम बीमार होते जा रहे हैं, तो कब तक ये बीमारी को

0: एंड इनफैक्ट उसके बाद क्या होता गया है, मुझे ये लगता है कि उसके बाद इतने सारे इंसिडेंसेस और आ गए. ये इंसिडेंस अगर हम 2 साल पहले देखें तो हमें यूएस में सुनने को मिला था, हमने कहा था ये यहाँ नहीं, मतलब
1: यहाँ नहीं हो
0: भारत में कहाँ
1: सकता,
0: हो सकता है ये.
1: राइट।
0: और आज एक इंसिडेंस के बाद आई थिंक विद इन 3 मंथ्स देर
1: कई
0: आर
1: ऐसे और
0: ऐसे
1: इंसिडेंट्स हो
0: इंसिडेंसेस. तो
1: गए,
0: कहीं ना कहीं मीडिया का भी कंटिन्यूस जो एक इतना गया है वो
1: क्योंकि
0: भी इंस्पायर.
1: इन्फॉर्मेशन जो अंदर जाएगी वो यहाँ एक इम्प्रेशन छोड़ेगी, वो ही एक्शन में आएगा। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन उसको इस तरह से री इन्फोर्स कर देते हैं सारा दिन। एंड इन्फॉर्मेशन देना तो ठीक है, वे इज द सोल्यूशन? अब ये जो इंसिडेंट हुआ कि बच्चा गन लेकर गया, व्हाट वाज द सोल्यूशन? कि रोज जब बच्चे एंटर करें स्कूल में तो आप उनको चेक कर लो कि वो गन तो नहीं कैरी कर रहे। व्हाट काइंड ऑफ अ सोल्यूशन वाज दिस? मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा अपने साथ गन कैरी
0: और
1: कर रहा
0: कितना
1: है।
0: ट्रस्ट, मतलब कितने बच्चे, हर बच्चे पे
1: वो
0: कितना प्रभाव
1: ट्रॉमेटाइज हो जाएगा
0: पड़ता.
1: बच्चा उससे।
0: वो अपने स्कूल एक बहुत विश्वास लेकर एंटर करता है और वो पहली चीज है उस पर अविश्वास के साथ, शक के साथ, जो हम ऑलरेडी शक कर रहे हैं.
1: प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो गन लेकर गया, प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर जो इतनी बिटरनेस या इतना जो इनसिक्योरिटी भरा था, जो उसने ऐसा कर्म किया, और वो एक बच्चे के अंदर नहीं भरा, वो आज बहुत बच्चों के अंदर है। हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से वो बाहर निकल आता है। तो द सोल्यूशन शुड बी टू एड्रेस दैट हॉलोनेस, टू एड्रेस दैट वैक्यूम दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड। वी आर सेइंग डोंट कैरी गन्स टू स्कूल।
0: नो, बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कि सोल्यूशन पे जो दे रहे हैं, हम भी तो हॉलो हैं, हम
1: हाँ,
0: भी तो उसी हॉलोनेस को सच मान के जीते जा रहे
1: ट्रू।
0: हैं
1: तो
0: इतना
1: इसलिए क्योंकि
0: ज्यादा.
1: हम सोल्यूशन नहीं दे पा रहे तो वो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और कहीं ना कहीं वी विल हैव टू स्टॉप एंड यू नो आस्क आवरसेल्व्स हम किस ओर जा रहे हैं, ये कब तक। और इसीलिए तो परमात्मा को कहीं ना कहीं, जो आपने उस दिन भी कहा कि स्पिरिचुअलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जितना दर्द बढ़ेगा उतना उसकी याद आएगी। लेकिन ये कब तक होने वाला है, ये एक हमें अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसको परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, दैट्स वेरी
0: क्या
1: इम्पोर्टेंट।
0: हम कर सकते हैं?
1: कर
0: देखिए,
1: सकते
0: अपने
1: हैं,
0: अंदर
1: राइट।
0: की यात्रा में जिम्मेदारी हमारी थी. हमने कहा था कि आसपास कुछ नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, बदलेंगे हम. हमने उसे एफर्ट किया, अनुभव किया, हमने बदलने की कोशिश की. अब आसपास इतना भयावह चित्रण है. शिवानी, ये स्कूल से अगर हम थोड़ा और आगे घर की तरफ बढ़े तो रिश्तों को देखते हैं, तो आज हर रिश्ते में गिरावट नजर आ रही है. पति पत्नी का एक सेक्रेड रिश्ता माना जाता था, एक सोलमेट की तरह. अगर भारत की परंपरा को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि 40-40 साल, 50-50 साल वो रिश्ता जो है वो कायम रहता था, आज 50 दिन भी टिकना मुश्किल हो जाता है. ये रिश्तों में जो गिरावट आई है, खासकर अगर प्यार के रिश्ते की हम बात करते हैं,
1: सही
0: तो वो
1: बात,
0: भी एक इतना डिग्रेडेशन नजर आता है कि एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है.
1: बिल्कुल।
0: एक्स्ट्रा
1: हाँ
0: मैरिटल अफेयर एक
1: बिल्कुल,
0: फैशन की
1: कॉमन,
0: तरह,
1: बहुत कॉमन हो
0: एक
1: गया है
0: फैशन
1: वो।
0: की तरह बन गया है कि एक एक्सपेक्टेड ही है कि चाहे वो हाउसवाइफ हो या आप बाहर काम करते हो, चाहे आप औरत हैं या मर्द हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं ही. हमारा हर सीरियल, हमारा हर जो सोप ओपेरा की बात करते
1: प्रमोट
0: हैं,
1: कर रहा ना उस चीज को। अगेन इन्फॉर्मेशन जो अंदर जाएगी तो वो
0: वो इतना
1: एक बिलीफ
0: आसान लगने
1: सिस्टम
0: लगता है
1: या
0: कि हाँ ये तो है ही,
1: बिल्कुल,
0: एक्सेप्टेंस आ गई है कि ये तो पॉसिबल है ही.
1: क्योंकि उसको राइट समझने लग गए ना अभी। देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। तो जहां आपने जिस चीज को नॉर्मल कह दिया तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली इट विल कम इन टू योर एक्शंस।
0: इनफैक्ट
1: डिवोर्स रेट,
0: हाँ, इतना ज्यादा, वही तो मैंने कहा 50 दिन भी मैरिज
1: हाँ,
0: आज टिकती हुई दिखती
1: पहले
0: नहीं है
1: कहते
0: कितनी
1: थे
0: बार.
1: कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको संबंध बना के रखना है, अब तो छोटी छोटी बातों पे, अच्छा आपकी नेचर अलग मेरी अलग, इतना सा संस्कार डिफरेंस है, चलो।
0: और म्यूचुअल, अभी एक न्यूज जो था, एक न्यूज बड़ा न्यूज था ये कि ऑनलाइन शादी हुई, 50 दिन बाद ऑनलाइन डिवोर्स भी हो रहा है, फर्स्ट ऑनलाइन डिवोर्स इन
1: अच्छा, इट
0: इंडिया.
1: हैज हैपेंड ऑन द
0: इट हैज
1: नेट,
0: हैपेंड.
1: ओके,
0: सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. वी आर नॉट
1: ट्रू।
0: इवन अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर गोइंग डाउन. वो एक्सेप्टेंस भी, क्योंकि वही एक्सेप्टेंस लेवल इतना हो गया है कि ये हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं.
1: तो इजीली करना शुरू कर देते हैं ना उन बातों को, क्योंकि हमने उनको राइट समझने लग गए। तो कहीं ना कहीं वो संबंधों में गिरावट तो रिफ्लेक्ट होगी ही, इवन रिलेशनशिप्स विद स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के भी जो आजकल रिलेशनशिप्स है उसमें वो प्योरिटी, वो इनोसेंस जो एक स्कूल लाइफ में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है।
0: अवेयरनेस एंड देन दे आर गेटिंग इन टू दोज रिलेशनशिप्स विच दे आर इवन ऑल्सो नॉट अवेयर. वो खुद ही नहीं जानते वो किस रिश्तों में घुसते जा रहे हैं, और
1: बिल्कुल
0: फिर उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, ना
1: बिल्कुल,
0: पेरेंट्स हैं, ना काउंसलर्स हैं. काउंसलर्स हैं वो इतने मैकेनिकल हैं, उनके जवाब इतने मैकेनिकल हैं. ये पूरा अगर हम

0: देख रहे हैं तो भयावह लगता है, लेकिन क्या इसके सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं?
1: इसके सॉल्यूशंस तो डेफिनेटली हैं. अगेन स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस दो सॉल्यूशंस एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी जो बाहर चीजें हो रही हैं इनका कारण है अंदर का खालीपन. इम्प्योरिटी इन द सोल इज इम्प्योरिटी इन द एनवायरमेंट. सो टू प्योरिफाई द एनवायरमेंट प्योरिफाई द सोल, क्योंकि इट इज माइंड थॉट बॉडी मैटर. तो अगर मैटर को चेंज करना है, अगेन माइंड को चेंज किया, बॉडी से निकला, मैटर चेंज हो गया. क्योंकि माइंड ही तो इतना अनहेल्दी है आज, मानसिक बीमारियां.
0: वही, ये सारी बीमारियां, ये जो सारे पूरे एस्पेक्ट्स हैं, ये इतनी मानसिक, बचपन से ही हमें दिखता है कि 13 साल का बच्चा डायबिटीज और डिप्रेशन का शिकार.
1: डिप्रेशन इज बिकम सच अ कॉमन इलनेस कि उस दिन ही हम पढ़ रहे थे कि WHO ने कहा कि बाय 2020 डिप्रेशन विल बी द सेकेंड रीजन फॉर डेथ वर्ल्ड वाइड. एंड वर्तमान समय कहा 112 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. एंड ये लोअर फिगर होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक अपना अवेयरनेस ही नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन.
0: एक्चुअली अगर आप किसी से भी फोन पे बात भी करते हैं तो वो आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, ये एक ऐसा स्लैंग बन गया, बिकॉज दे आर फीलिंग दिस फीलिंग ऑफ होलोनेस व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट.
1: तो एक्चुअली ये कहीं ज्यादा होगा, 112 से कहीं ज्यादा होगा ये आंकड़ा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ अस आर फीलिंग दैट टुडे. और डिप्रेशन में भी कई आगे एडवांस स्टेजेस में ये बीमारी चली गई है, जैसे यू नो ऑब्सेशन, सिजोफ्रेनिया, मतलब ये बातें जो आज दिन तक सुनी भी नहीं थी और आज ऐसे लगता है कि इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन इलनेसेस.
0: और हम जब रिश्तों की बात कर रहे हैं, समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमने पेरेंट्स की बात की, पेरेंट और बच्चे का रिश्ते की बात की, जिसमें इतना डिटीरिएशन दिख रहा है, इतना ज्यादा गिरावट नजर आ रही है आपस में, प्यार जो वो एक छोटा सा प्यारा सा एहसास था, जो पहले प्यार की बात की जाती थी, जो इतना खूबसूरत जिंदगी का आधार माना जाता था, उसमें इतनी वायलेंस आ गई है, इतनी नफरत की कोई आपको एसिड फेंक रहा है, मना कर दिया, रिजेक्शन हो गया तो वो चाकू मार के आपने उसको खत्म ही कर दिया.
1: क्योंकि एम्प्टीनेस है ना, तो आप रिजेक्शन को नहीं फेस कर सकते हो, सो ऑटोमेटिकली यू विल रिएक्ट. और आपके अंदर उतनी टॉलरेंस पावर भी नहीं है, वो पेशेंस भी नहीं है कि आप परिस्थिति को समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे. जैसे ही वहां से रिजेक्शन आया, यू ऑटोमेटिकली जस्ट रिएक्ट.
0: और खासकर अगर हम मोलेस्टेशन की बात करें, क्या औरत सुरक्षित है दिल्ली की सड़कों पर, औरत सुरक्षित या नहीं, ये इतनी इतनी बड़ी हेडलाइंस, इतना इतना इस पे करने के बाद सिचुएशन
1: नहीं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने ले आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो वहीं का वहीं उसकी, क्योंकि मूल इशू को नहीं एड्रेस कर रहे हैं ना, उसकी रूट प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस कर रहे हैं. आप सिक्योरिटी सिस्टम पूरे दिल्ली में कितना स्ट्रांग कर देंगे, इट्स नेवर पॉसिबल, कभी भी नहीं होगा. एम्पावरमेंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे कि आत्माओं को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो वाइसेस हैं, ये सारे जो विकार हैं, ये उसमें से निकल रहे हैं, उसको नहीं एड्रेस करते हैं.
0: और
1: तो वो
0: मुझे
1: बढ़ता
0: लगता है
1: जाएगा.
0: सबसे ज्यादा जो गिरावट हमारे समाज में आ गई है वो है कि आज एक ऐसा लॉ बनाना पड़ा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, इट्स अमेजिंग कहाँ हमने माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया था. आज तो खैर हम ईश्वर को भी नहीं समझ पाते कुछ भी, उसके साथ भी अपना एक.
1: तो ओल्ड एज होम्स भी तो इसीलिए बनाए ना, ओल्ड एज होम्स क्यों बनाए जा रहे हैं? आज देखो, माता पिता चाहे चार बच्चे भी होंगे, उनके पास इतनी सी सैलरी होगी तो भी वो चारों बच्चों का कितना प्यार से ध्यान रखेंगे, लेकिन चार बच्चे मिलकर भी वो माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे और उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ाते
0: तो
1: हैं.
0: कहीं कहीं हमारा पूरा जो सिस्टम है उसमें ही क्या हम अगर हम बच्चों की बात सुने, कई बार बच्चों वाला, बच्चों का एस्पेक्ट भी देखते हैं, युवा पीढ़ी की भी देखते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि हम खुद अपने जद्दोजहद में इतने फंसे हुए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, मतलब ऐसा करना चाहते हुए भी नहीं हो पा
1: नहीं
0: रहा.
1: कर पा रहे
0: क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ है, क्या हो गया है कि आज ऐसा लगता है कि सचमुच,
1: क्योंकि हम दुनिया से तो जुड़ी गए हैं, यू नो वन क्लिक एंड वी आर कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कम्युनिकेशन, वन मोबाइल फोन एंड वी आर एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हम साथ में बैठे हुए व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहे हैं. वी प्रेफर ऑनलाइन चैटिंग रादर देन टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी. तो व्हाई? दैट इज ऑल्सो एन इश्यू टू बी अंडरस्टूड कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना देख सकते हैं, जिसे ना जानते हैं, जिसे ना मिलना है, कुछ नहीं करना, उसके साथ बैठकर बात कर रहे हैं. और घंटों घंटों, ये भी तो एक एडिक्शन है आज, ये भी तो एक एडिक्शन है कि हम सबसे दूर होकर घंटों सिर्फ कंप्यूटर के साथ बैठे पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, पता भी नहीं कि जो साथ ना उस एंड पे जो व्यक्ति है वो अपनी करेक्ट आइडेंटिटी दे रहा है या नहीं, तो हम एक मशीन से बात कर रहे हैं सिर्फ।
0: अच्छा, ये तो अभी हमने समाज की बात की, सोसाइटी की, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट कहाँ खड़े हैं एसएससी शिवानी
1: बिल्कुल,
0: हम इस वक्त?
1: ग्लोबल वार्मिंग ना, सच अगेन न्यूज, हर थोड़े दिन के बाद द न्यूज़पेपर इज कैरिंग एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, बट व्हाट इज इट सेइंग, यू नो, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है।
0: ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम इतनी बार सुन चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या क्लैरिटी हमारे सामने आई है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, हो क्या रहा है हमारी इस धरती
1: बिल्कुल,
0: पर?
1: और क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं आ रही है तो हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, यू नो, वो सिर्फ फिगर्स ही सुन रहे हैं कि कब तक ये होगा, कब तक सृष्टि चलेगी, कहीं सृष्टि खत्म तो नहीं होने वाली है, बट वी आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसका कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है, फिल्म्स बन रही हैं, स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं कि यू कैन कंट्रोल इट, लेकिन हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से ड्यू टू द अनरिस्ट्रिक्टेड बर्निंग ऑफ फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स। कई लोगों के मन में अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो हीट भी पृथ्वी पर, या कहें गर्मी भी पृथ्वी पर पहुंचती है। ये किरणें पृथ्वी से टकराकर लौट जाती हैं। इस प्रोसेस में कुछ गर्मी पृथ्वी के एटमोस्फियर में ट्रैप हो जाती है, जो कि पृथ्वी के लिए अच्छा है क्योंकि इससे रात में भी टेम्परेचर स्टेबल रहता है। लेकिन वर्तमान समय कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ने के कारण ज्यादा गर्मी ट्रैप होने लग गई है और इसी का फलस्वरूप पृथ्वी गर्म होती जा रही है। पिछले 1000 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल स्टेबल था, जिसको वैज्ञानिक बताते हैं कि 300 पार्ट पर मिलियन, इससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं हुआ था कभी भी। लेकिन सिर्फ पिछले 50 वर्षों में ही ये बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया है, और अगले 50 वर्षों में देखें तो ये यहां तक पहुंच जाएगा।
0: ऐसा लगता है कि नेचर भी यही इंडिकेशन दे रही है कि हम जो है हम उस त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे कदम चाहे हम रिश्तों में देख रहे हैं या पूरा पर्यावरण जो हमें बार बार
1: बिल्कुल,
0: खटखटा रहा है, टटोल रहा है कि हम क्या
1: क्योंकि
0: कर रहे हैं।
1: कार्मिक फिलोसफी है ना ये भी, कि जितना हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया उतना नेचर हमारे को वो रिटर्न तो उसका देगी। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है, कोई भी चीज जो प्रकृति में भी असंतुलन आ रहा है, कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जिसको अगर आप गो टू द एंड ऑफ इट यू विल नॉट कम टू नो दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल। हर चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में 1970 में बर्फ से ढका हुआ था, और 2005 में देखिए इसकी स्थिति क्या है। बोल्डर ग्लेशियर, जो कि ग्लेशियर नेशनल पार्क में है, 1932 में पूर्ण तरह से बर्फ से ढका हुआ था, 1988 में इसकी हालत कुछ ऐसी थी। लेक चाड, जो एक समय पर विश्व की बड़ी झीलों में से गिनी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ ही वर्षों में लगभग पूरी तरह से ये सूख चुकी है। एंटार्क्टिक, द लार्जेस्ट मास ऑफ आइस ऑन द प्लैनेट, अगर ये मेल्ट होना शुरू हो जाए और कहें कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, तो जो समुद्र का स्तर है, सी लेवल, वो वर्ल्ड वाइड लगभग 20 फीट बढ़ जाएगा, और साइंटिस्ट का आज ये कहना है कि ये पिघलना शुरू हो गया है। ग्रीनलैंड, अनदर बिग मास ऑफ आइस, अगर ये भी पिघल जाता है तो समुद्र का स्तर और 20 फीट बढ़ जाएगा। 1992 में ग्रीनलैंड इतना मेल्ट हो चुका था, उसके 10 साल बाद उसकी हालत यहां तक आकर पहुंची, और 2005 में यहां पर आ चुका है, और इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि वर्तमान समय इसकी स्थिति क्या होगी। ये जो प्रकृति का असंतुलन हो रहा है ना, इसकी भी एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन नेचर। गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी होड़ है कि जो नई गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी आ रही है, वो खरीदनी है ना, ऑल विद द कॉम्पिटिशन, तो उससे पोल्यूशन तो बढ़ता ही जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना बढ़ता जा रहा है और उसका रिजल्ट हमें सारी प्रकृति में देखने को मिल रहा है। आप सो सो

0: 200 करोड़ खर्च करके हाईवे बनाते हैं, जब तक वो हाईवे रेडी होता है वो हाईवे पे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है. यू नो, सो द चेंज दैट वी आर ब्रिंगिंग अबाउट, इट्स नॉट इनफ फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो. क्योंकि जब तक आप वो चेंज इम्प्लीमेंट करते हैं कि मेट्रो ले आए, आप हाईवे ले आए, एक्सप्रेस वे ले आए, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये गाड़ियां इतनी सारी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा बढ़ रही है.
1: इनफैक्ट शिवानी, अगर हम देखें तो पिछले 1000 सालों में जो टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था, वो इन 50 सालों में जो पृथ्वी का टेम्परेचर राइज हुआ है. और एक और बात जो कही जा रही है वो ये कि अगर ये टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया तो ये जगह रहने वाली नहीं रह जाएगी,
0: क्योंकि जो पोल्स पे भी सारी स्नो है वो मेल्ट होती जा रही है. हम सभी को याद होगा 2004 में सुनामी, जो कि अंडर ओशन अर्थक्वेक था. इस अर्थक्वेक का सिस्मोग्राम पर 9.3 इंटेंसिटी मेजर हुआ. पानी की लहरें 100 फीट से ऊपर चली गई एंड 11 देशों में मोर देन 2.25 लाख पीपल लेफ्ट द बॉडी.
1: सचिव शिवानी, उसी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहे हैं आज, मतलब इतनी गर्मी, ये अनएक्सपेक्टेड गर्मी, और उसी तरह से सर्दी, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है वो बर्फ पड़ सकती है.
0: जो हाईएस्ट 10 ईयर्स ऑफ टेम्परेचर है वो पिछले 16 साल में ही हुआ है. तो मतलब वो प्रोग्रेशन जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता जाएगा. एंड वेदर हैज बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू नो, जैसे बॉम्बे में सर्दी, बॉम्बे में कभी स्वेटर नहीं पहने थे हम. हिरोशिमा पर जो अटैक हुआ उस पे 100,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. लेकिन आज हमारे पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स है उससे कहा जाता है कि 8 बिलियन पीपल कैन डाई, जबकि पृथ्वी की पॉपुलेशन भी उतनी. सो यू नो व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग फॉर, डू आर वी अवेयर वेयर वी आर हेडिंग. आज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट 15 मिनट और 20 मिसाइल्स एक्सचेंज हो जाए कुछ एक देशों के बीच और सारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है,
1: स्वरूप ही बदल जाएगा. लेकिन अगर हम ये देखें तो देशों के बीच कई तरह की ट्रीटीज हो रही हैं, कई तरह की ऐसी संधियां हो रही हैं कि इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
0: दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बट ये जब ट्रीटी साइन होती है ये एक रैशनल लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में साइन होती है, लेकिन हम खुद ही अवेयर है कि आज हम सारा दिन में कितनी देर उस रैशनल स्टेट ऑफ माइंड में है. हम इतने डिस्टर्ब्ड हैं, हम सोच समझ के तो बहुत कम कार्य अब करते हैं, हम इमिजिएटली रिएक्ट करते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में क्या किसी को याद रहेगा कि हमने वो ट्रीटी साइन की हुई है? यू नो, इट जस्ट रिक्वायर्स एन इम्पल्स, वो अग्रेशन, इट कैन लीड मी टू डू एनीथिंग. एंड फिर एक ही तो निकलना है एक देश की तरफ से, द रेस्ट विल जस्ट फॉलो. अगर हम पॉपुलेशन को भी देखें, 150 वर्ष पूर्व, only 150 years back, the population was 100 crores. And aaj sirf Bharat ki population 110 crores hai. And sari vishwa ki population to 650 crores ke upar cha chuki hai. To resources to utne hi hai. Aur usko use karne wale population itni bad gai hai. To aakhir kab tak isi tarah chal sakta hai?
1: Bilkul, aur pichle 100 saal ki jo baat ho rahi hai, to inventions jo hai.
0: ऑलमोस्ट हर इन्वेंशन जो आज हम यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टू ऑल आर कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, एवरीथिंग, कार्स, एवरीथिंग लास्ट 100 ईयर्स. जो चीजें जिनके बिना आज हम शायद कुछ मिनटों के लिए भी नहीं रह पाते हैं, तड़पने लगते हैं अगर फोन नहीं चल रहा है या बिजली नहीं है, और ये सब कुछ सिर्फ इस 100 साल के अंदर ही डिस्कवर.
1: और सबसे बड़ी बात शिवानी कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इन्वेंशंस हुई, सभी इन्वेंशंस हुई और उनकी स्पीड वो इतनी ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर हम देखें कि जो उनका उनकी तादाद जो बढ़ गई है, गाड़ियों की, मोबाइल्स की, किसी भी चीज की.
0: इन्वेंशंस तो लेकिन सारे अच्छे थे, ये हर एक ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए थी, लेकिन वो इतनी फास्ट स्पीड पर और इतना कुछ हमें मिलता गया कि हम इतना ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो गए कि हम अपने से ही दूर होते गए और हमारी इन मैटरियल, इन मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती गई,
1: पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए. हर अब अगर हम देखते हैं, आज हम पूरी कड़ी को देखें अगर पीछे मुड़कर, तो हमने रिश्तों की बात की, उसमें अति हो गई है, हर चीज जो है वो अति की तरफ बढ़ रही है, हर चीज में अति हो गई है. तो अति का तो अंत होता है, तो क्या हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं?
0: हम अंत की तरफ नहीं, हाँ, इस सब गिरावट के अंत की तरफ, लेकिन हम एक परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं. और इसीलिए हमने कहा यही वो समय है जब परमात्मा का सृष्टि पर आना बहुत आवश्यक है और वो निराकार परमात्मा इस टाइम आ चुके हैं, क्योंकि जब इतना केओस हो जाता है जो ह्यूमन काइंड के बस की बात नहीं है, अब इस केओस को फिर से ऑर्डर में लाना, तो वो परमात्म शक्ति की आवश्यकता होती है और वो आकर हम आत्माओं को वो प्योरिफाई करते हैं, जिससे प्रकृति फिर ऑटोमेटिकली प्योरिफाई हो जाती है. तो इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन, हम ये सभी को कहना चाहेंगे कि कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाए, प्रलय हो जाए, ऐसा नहीं होगा. इनफैक्ट एक बहुत सुंदर समय, अ वेरी ब्यूटिफुल पीरियड इज गोइंग टू कम एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट कमिंग टाइम.
1: और क्या हम उस जो आने वाला वक्त है उसकी एक झलक उसके बारे में जान सकते हैं?
0: बिल्कुल.
1: तो अगली कड़ी में हम इंतजार करेंगे कि किस तरह से क्या होगा. Right. और जो आज हमने पूरा एक सिनेरियो देखा है उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या परिवर्तन होगा. Right. सिस्टर शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. सच्चाई ये है कि आज जो आईना हमने देखा है वो उसके उसमें जो अक्स नजर आया है वो काफी भयावह है, डर लग रहा है. हम में से हर कोई कहीं ना कहीं डरा हुआ है, लेकिन एक आश्वासन हमारे सामने है कि परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना है और परिवर्तन हमेशा शुभ के लिए होता है. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं.

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जब भी हम कुछ खास बात कर रहे हैं अवेकनिंग में, तो हमें लगता है कि जो पिछला हमने किया उस पर काम हमने किया दिन भर में, अब आगे देखें कि क्या वो सही है या नहीं। बहुत बार आपका मन करता है कि हमारे साथ शेयर करें, हमारा भी इसी तरह से मन करता है कि आगे बढ़ते जाएं। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि हम रास्ता सही पकड़ कर आगे चल रहे हैं, अनुभव होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एंगर की। पिछली बार हमने देखा था कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुक कर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि यस, आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रांग वर्जन्स गुस्से के जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड, जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी ला सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है रामा कुमारी सत्यशिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, हर बार की बातचीत है। समवेयर इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे हैं। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट यू नो इट्स नॉट दैट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एनी एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो, यू नो दैट बिलीव एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स मी फील वेरी लाइट।
1: इट्स लाइक बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना है, और एक है ये तो छोटी सी चीज है, ये ठीक हो जाएगी,
0: मुझे दवाई मिल गई है, यू नो।
1: हमने इरिटेशन को देखा, और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। सो इट कुड बी ट्राइंग टू चेंज पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और सिचुएशंस अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूं, गाइड दूं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूं। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो आई एम नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है वो इतना ज्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज मोस्टली यू नो बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाले हूँ। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली।
0: अच्छा, और मैं ये कहती हूँ कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती, यू नो। कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है, वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है, हम ये कहते हैं।
1: हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी? नुकसान किसका हो रहा है? सी, हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है ये पकड़ के रखने से। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी नॉट डूइंग अ फेवर टू एनी वन। सम पीपल से लेकिन उन्होंने गलत ही इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को अपने लिए। इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीजें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते हैं, सो इट इज अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरमेंट कैसा है और हम सब की जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है.
0: क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूँ मैं, you know?
1: हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो भी नो वन इज सेइंग के इट वॉज राइट और व्हाटएवर. लेकिन अब जब सारा दिन हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है, तो किस एनर्जी के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अपने अंदर क्या क्या भर के रखा हुआ है. और ऐसे कोई एक आधे के साथ नहीं है, हमारा कईयों के साथ ऐसे छोटी मोटी बातें हैं और हम उसको पकड़ के रखते हैं, एंड वी थिंक वी जस्टिफाइड इन होल्डिंग इट देयर. यू नो मेनी कपल्स जैसे अब मिलते हैं कि उनका कुछ हुआ है आपस में, कोई एक इश्यू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, खत्म हो गई है सिचुएशन, सिचुएशन क्रॉस हो गई. सी दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि किसी से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी या समवन चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप, चीटेड इन बिजनेस, चीटेड एट वर्क, व्हाटएवर, सिचुएशन इज गॉन, वो परिस्थिति खत्म, हम वापस आ गए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी वो अभी तक पकड़ी हुई है.
0: अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. मैंने ये रियलाइज किया है ओवर द इयर्स, यू नो, लाइक अब ज्ञान को समझते हुए, कि जो हम ये सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं ना, जब हम सामने बैठ के कुछ कोई सिचुएशन आ गई, सपोज कुछ हो गया जिसको हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम बैठते हैं कि चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड क्रिएटेड, व्हाट हैड हैपेंड, That doesn't work.
1: और हम सिर्फ वो एनालिसिस भी क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं कि आप फिर से मत करना. यू नो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. इट्स जो हम कहते हैं ना लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम उनसे जो गलती हुई मैं बात करूं फिर जाकर, शुड आई डिस्कस ऑल दैट, विद व्हाट इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है,
0: हम थोड़े ऊपर हो जाएंगे
1: कि उनको बताना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, एंड देन सेंडिंग आउट द एनर्जी कि यू नो आप गलत हैं मैं सही हूँ, विद दिस इंटेंशन नो डायलॉग विल टेक प्लेस.
0: बट विल ही एवर, और ही और शी एवर अंडरस्टैंड.
1: सी दिस इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक ऑफ, उनको समझ में आएगा उन्होंने क्या गलती की. दिस इज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, एंड हम अपना रोल और अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं
0: उनको
1: समझाना कि उन्होंने क्या गलती की, विद द वेरी होप कि अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो मेरे साथ फिर से
0: ऐसा नहीं,
1: वो गलती नहीं करेंगे.
0: नहीं तो फिर क्या करें?
1: तो वो सारी लर्निंग किसके लिए हो रही है, ये पूरा रिविजन पास्ट इंसिडेंट का, ये किसके लिए हो रहा है, उनको समझाने के लिए. आर दे इन माई कंट्रोल?
0: नो नो नो, बट देन इट मींस, सी I cross one situation.
1: लेकिन I am having to cross lot of situations. See, हमारा focus.
0: Because of somebody else, the situation has come. Suppose let's take a situation. You know, let's take okay, business dealing. You know, we were going fine. I was telling my husband only or partner that don't go into this thing. This will not work very well because I can see it. He didn't understand, and he went into this business. Whole of our you know, family things were dependent on them, on the whole thing. जैसे भी वो करेगा, जैसे जाएगा, and he went, उन्होंने किया, और वो major disaster हुआ, ठीक है? He created that situation without even taking my opinion. अब अगर हम बैठते हैं समझने के लिए कि what went wrong, so is it not right?
1: It is very right. लेकिन किस energy और intention के साथ बैठते हैं? आप ये देखो, हम जब भी बैठते हैं ना बात करने के लिए, सबकॉन्शियसली हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ये है कि मैं दूसरे को समझा दूं कि तुम गलत है.
0: पर उनका डिसीजन तो गलत ही हुआ था ना.
1: इट्स ओके, उन्होंने गलत समझ के नहीं किया था, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उस टाइम राइट ही लिया था. हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज इट दैट वेंट रॉन्ग. You know, not that you were wrong, you didn't ask me, I would have given you the right advice. Ek situation hai na, ek decision galat hua. Vyakti galat nahi hai. Hum jo energy bhejte the na, aap galat the. Ye energy hum logon ke paristhiti to choti hoti hai, wo investment choti cheez thi. Lekin ye hamare relationship mein ek वो लेकर आता है. जब हम हर ऐसी सिचुएशन के बाद छोटी छोटी बातें, बच्चे ने मार्क्स ज्यादा नहीं मिले, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यू शुड हैव डन दिस. नाउ इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि तुम गलत थे, या मैं सही था, दैट्स नॉट ट्रू. वी शुड नेवर रब इन दैट सिचुएशन. यू नो, हम बार बार घर में बहुत रब इन करते रहते हैं उसको बार बार, और दूसरे का घाव पहले जो जिससे वो गलती होती है वो कितने गिल्ट में होता है, दे नो व्हाट दे हैव डन. वी नीड टू उनको कंफर्टेबल करने के लिए, हमें एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए उनको कंफर्टेबल कर दे, ताकि वो उस गिल्ट से, उस पेन से बाहर निकल आए. लेकिन हम तो और भी ज्यादा उसको रब इन करते हैं,
0: हम भी तो पेन में गए हुए होते हैं ना.
1: फ्रॉम इट मींस
0: समवेयर उनको कुछ भी हील करने से पहले आई हैव टू हील माई
1: सेल्फ, आई हैव टू बी हील्ड. कि एक तो वो परिस्थिति मुझे ना इतना उसको एक परिस्थिति ही रहने दो, उसको एक इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, वो एक बिजनेस डील ही थी.
0: यहाँ पे ना वो राइटियस एंगर लगने लगता है कि मैंने कहा था, यू नो, और वो बार बार जो, और वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है.
1: पर लेकिन वो एक बहुत पर्सनल एजेंडा बन जाता है घर में, एंड वो कहीं ना कहीं हम उसको यूज करते हैं. और स्पेशली अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और सामने वाला कुछ बोले, तो हम उसको उसकी सारी गलतियां पहले याद दिलाते रहते हैं. दिस इज वेयर आई सेड इट बिकम्स लाइक अ कंपटीशन, कि किसने ज्यादा गलतियां की हैं, किसकी गलतियां ज्यादा बड़ी. यू नो, इफ आई से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बोलोगे आप क्या बात कर रहे हो,
0: आपको कहने का क्या हक है, आपको अपने आप को देखा है कि आपने क्या किया.
1: सो दिस इज नॉट अ लर्निंग, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही है, ये हम एक दूसरे को आगे नहीं उठा रहे हैं, हम दोनों ही फिर एक दूसरे को और ही पुल डाउन करते हैं. रिजल्ट क्या निकलेगा, व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन, कि दोनों ही एक दूसरे से और भी खिंचते जाएंगे. अगर घर में ऐसा कुछ हो जाता है, इमीडिएटली जो स्टेबल रह सकता है अपने ऊपर ध्यान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर के वायुमंडल को, एंड स्पेशली जिनसे वो गलती हुई है, ये बच्चे से भी हो सकती है, मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, इतनी सारी सिचुएशन है, तुरंत उसको इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स फाइन, यू कैन कम आउट ऑफ इट. इट हैज टू बी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बजाय के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
0: लो करना,
1: जो हम कह रहे हैं ना, उनसे बार बार वो गलती होती है. ये जो थॉट है ना जो हम क्रिएट करते हैं, इनको तो ये सीखते नहीं है एक बार भी, इन्होंने बार बार यही वाली गलती करनी है. हम क्या एम्पावर कर रहे हैं, और वी डूइंग द ऑपोजिट, वी नॉट रियलाइजिंग कि ये एक एक थॉट जो हमारी क्रिएट होती है, यू नो, इवन सिंपल थिंग्स लाइक किसी से गलती हुई है, वो ट्राई कर रहा है, कोई और गलती भी हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सामने वाला कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगा. एम आई रेडी टू बिलीव दैट?
0: नो, बिकॉज माई हर्ट इज टू स्ट्रॉन्ग,
1: माई हर्ट इज टू स्ट्रॉन्ग. सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिर से नहीं होगा, मैं अंदर ही थॉट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर फिर से किया ना तो फिर. सो मैंने, किसी ने एक एनर्जी क्रिएट की है कि मैं फिर से नहीं करूंगा, यहाँ से क्या एनर्जी जानी चाहिए कि यस आई एम श्योर आप फिर से नहीं करोगे. ये बोलने की चीज नहीं है, हम ऊपर से तो शायद बोल देंगे,
0: एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. ओह नो, नेवर. आई थिंक या मतलब रिलेशनशिप में या फिर बच्चों के साथ भी, जब बच्चे कहते हैं कि मॉम आई एम सॉरी आई हैव डन दिस सिगरेट पीने के बाद, या कभी, एंड पेरेंट्स कभी भी ये मान ही नहीं पाते कि ये नहीं करेगा,
1: तो दैट इज द रीजन कि वो नहीं करते हैं. और फिर हम ब्लेम उन पर डालते हैं. हमें ध्यान रखना है, दिस इज ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट. लेकिन ये कब होगा, जब खुद अपने वर्ड की वैल्यू होगी तो दूसरों के वर्ड की भी वैल्यू होगी. अगर सामने वाला कहता है मैं नहीं करूंगा, इमीडिएटली क्रिएट अ थॉट कि यस अब ये नहीं करेंगे, यू नो, उनकी थॉट को एम्पावर करो. ये हमें बहुत ध्यान रखना है. हम थॉट क्रिएट कर देते हैं,
0: अच्छा
1: से अब जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया कि ये तो फिर हो जाएगा,
0: चलो देखते हैं, यू नो, चल देखेंगे, लेट्स सी, दिस इज व्हाट.
1: Let's see with time क्या होता है, एंड फिर साथ में बोल भी देंगे, अगर फिर किया ना आपने ये,
0: फिर
1: दैट इटसेल्फ इज अ थॉट के आई हैव अ डाउट कि आप फिर से करने वाले हो. हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनको वार्निंग दे रहे हैं शुरू में. यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी एनर्जी सारा दिन क्रिएट करते रहे जो खुद को भी एम्पावर करे और औरों को भी एम्पावर करे. ये हम क्योंकि अटेंशन नहीं रखते, तो हमें ध्यान नहीं है कि हमारा एक एक थॉट कैसे दूसरे को डिस एम्पावर करता है. तो जब इकट्ठे हैं, चाहे ऑफिस में है चाहे घर में है, ध्यान रखें कि ये जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है एक दूसरे के प्रति, इसको खत्म करें. और इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फिर जब वो एंगर के रूप में बाहर निकल के आता, वो एक्सप्लोजन, तब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ जाती
0: जो हमने कभी सोची नहीं थी, बिल्कुल.
1: और फिर हम तुरंत दूसरे को एक्सप्लेन करते कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरा तो बिल्कुल कोई भाव नहीं था, लेकिन जो भी हमारे अंदर से निकला है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ क्रिएट होता जाता और निकलने वाला जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिएट हुआ है दैट मस्ट बी सो मच के जो वो
0: उसको इतना निकला है, ओवरफ्लो होना था और इस कारण होना
1: है। तो जो निकला बाहर शब्द जो निकले वो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो मैंने इतना संभाल के रखा है वो मेरे अंदर कितना नुकसान करता होगा। तो हमेशा जब भी ये आती है ना थॉट्स अपने अंदर, उसी टाइम रुक जाना चाहिए। वी नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी थॉट हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हम पकड़ के रख लेते हैं ना, ये हर्ट के मेरे साथ धोखा हुआ या उन्होंने रिलेशनशिप में गलत किया, चलो मैंने माफ तो कर दिया, हम इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन क्या एनर्जी क्रिएट करके इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसे इकट्ठे रहने का या ऐसे इकट्ठे काम करने का व्हाट वुड बी द पर्पस, जबकि जो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस वो एक नेगेटिव एनर्जी है। हम बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या वायुमंडल दे रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति वो दर्द पकड़ कर रखा है। एंड फिर होता क्या है, जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होती वो सारा हर्ट, वो सारा दर्द जो अक्यूमुलेटेड है वो सारा फिर शब्दों में निकल आता।
0: तो फिर तब क्योंकि हमने ना एक और बिलीफ सिस्टम ये कि जब तक कि उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि उसको रियलाइज नहीं होगा, यू नो द अदर पर्सन ने, वो बार बार रिपीट करेगा।
1: लेकिन ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हैं औरों को रियलाइज करवाना। अब सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन हम कहते आपको रियलाइज ही नहीं हुआ है कितनी गलती हुई है। आपको रियलाइज नहीं हुआ है मतलब आई एम ट्राइंग टू से मेरा दर्द नहीं खत्म हुआ है अभी, आप ऐसा कुछ करो जिससे मेरा दर्द खत्म हो। जिस दिन मेरा दर्द खत्म होगा उस दिन मैं बोलूंगी कि आपको रियलाइज हुआ है। इट्स नॉट पॉसिबल, आप मेरा दर्द नहीं खत्म कर सकते। इट इज माय प्रोसेस, आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस। लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करने के बजाय सामने वाले को बोल देते हैं आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई एम इन पेन, आई वांट देम टू डू समथिंग जिससे मेरा दर्द चला जाए। जिस दिन मेरा दर्द जाता है आई से आपको रियलाइज हो गया कि आपसे गलती हुई है,
0: अब आपको रियलाइज हो गया। फिर मैं उसको हथियार से बनाया ही होता है।
1: तो दैट वी इफ वी शिफ्ट द फोकस कि हाँ वो आत्मा भी अपनी जर्नी पर है, वो रियलाइज कर रहे हैं, पर क्या मैं रियलाइज कर रही हूँ
0: कि मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ?
1: जो जो रियलाइजेशन कराने हैं अपने आप को करा लो, खुद अपनी बात मानते जाओ और अपने को इतना दर्द मत दो। ये जो जस्टिफाइड समझ लिया है कि जो दूसरों ने गलत किया, वी नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही था, बट अब हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, वो पास्ट हो गया ना, लेकिन हम तो उसको बार बार क्रिएट करते हैं।
0: वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कितना गलत
1: किया? अपने लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। और फिर जो हमारे अंदर क्रिएट होता फिर वो ऑब्वियसली औरों तक पहुंचता एंड फिर वो पूरे घर का वायुमंडल,
0: समाज, एवरीवेयर।
1: बट आई थिंक स्पेसिफिकली दिस वुड बी वेरी एप्लीकेबल इन कपल्स टुडे, हस्बैंड वाइफ। छोटी छोटी बातों की बहुत सारी चीजें, यू नो, मदर इन लॉ के साथ हस्बैंड ने कैसा किया, मदर इन लॉ आज हैं भी साथ में या अलग रह रहे हैं या शायद हैं भी नहीं, लेकिन वो बात
0: मेरी मम्मी के साथ, हाँ, इट स्टेज, इट्स देयर।
1: सो नाउ दिस इज वेरी डैमेजिंग, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो रिजेंटमेंट अपने अंदर भर के रखते हैं, ये है, इसको तो हम कचरा ही कहेंगे ना, जो अपने अंदर भर के रखा है। और ये बिटरनेस से मैं अपने आप को कड़वा बनाती जाती हूँ,
0: अपने लिए बहुत, अपनी नेचर वैसी बनती
1: है। ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स है। आज हम अपने शरीर को तो डिटॉक्सिफाई करते हैं, नेचुरल डाइट लेते, इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, 2 मिनट बैठो, पास्ट है, फिनिश हुआ। लेकिन उन्होंने किया, कोई बात नहीं, उन्होंने किया, हर्ट किसने क्रिएट किया और अभी तक क्रिएट कर रही हूँ, उस बात को खत्म हुए 8, 10, 15 साल हो गए, मैं अभी तक दर्द क्रिएट कर रही हूँ, कब तक? दिस आई हैव टू स्टॉप एंड चेंज। इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स फॉर मी। क्योंकि ये बिटरनेस जब तक मैं नहीं खत्म करती आई कैन नॉट बी हैप्पी, एंड प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा। एंड एक व्यक्ति के प्रति पकड़ी हुई बिटरनेस एक के प्रति नहीं रहती, वो और रिश्तों में भी
0: जाए। मैं, हाँ, I know, because, वो अंदर रहा ना, वो कहाँ,
1: वो बिटरनेस है। तो वो बिटरनेस तो मेरी ऐसे वाइब्रेशन है ना, मैं जहां भी जाऊंगी, जिसके भी संपर्क में आऊंगी, कहीं ना कहीं वो बिटरनेस मेरे अंदर से फ्लो करेगी। तो इसलिए अपनी ये सफाई करते रहना चाहिए। और क्योंकि ये रिजेंटमेंट, अगर रिजेंटमेंट लेवल पर नहीं खत्म हुआ तो नफरत,
0: ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते करते जीते जाते हैं, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं ऐसे रिजेंटमेंट्स रखे हुए. लेकिन जो नफरत है वो कई बार तो मतलब इतने घातक लेवल पर भी आती है. और जब हम अपने आप को विक्टिम समझ कर और वो विक्टिम कई बार तो ये है कि हमारे अपनों ने विक्टिम बनाया. जो विक्टिम जब किसी बड़े लेवल पर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है तब जो विक्टिम है, तब जो हेट्रेड पूरे समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और फिर अपने प्रति.
1: लेकिन इसमें भी यस इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स भी ऐसे आते कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ. मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है. तो वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ दैट वॉज नॉट राइट फॉर यू. लेकिन अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू कैरी दैट बिटरनेस एंड दैट पेन. अब इसमें ये होता कि पहले तो ये जो विक्टिम वाली फीलिंग है कि मैं ही अपने आप से नफरत कई बार हमें हो जाती कि मैं ही गंदी हूं, क्या मैं ही गलत हूं, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया कैसे, किसी ने गलत इतना किया. तो अपनी सेल्फ एस्टीम पहले क्रैश हो जाती. तो वो पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी. समवन एल्स हैज मेड सम वेरी बिग मिस्टेक. इट वॉज नथिंग टू डू विद मी बींग अ बैड पर्सन. हम अपनी इमेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन. अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे वो तो करते ही हैं, और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते. इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट. उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है. लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा. उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन. इट विल टेक टाइम. लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दी कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी, एक पर्टिकुलर बात के लिए. अब मैं अपने ऊपर कितनी, किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ
0: उसको रीलिव कर करके
1: आई एक्चुअली गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन. क्योंकि जब तक वो यहाँ पर है वो मेरा टेप रिवाइंड होता जाता है. एंड देन
0: वी लैश आउट, वी लैश आउट. हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है. तो वो जो मैंने क्रिएट किया, शिवानी, अमेजिंग थिंग इज दैट इफ इवन वंस आई एम एबल टू रजिस्टर दिस, कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ,
1: मैं ही क्रिएट कर रही हूँ. हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है इसको कब फिनिश करना है, एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ. समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया वो सामने वाले को, फॉरगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं. ऐसे इंसान को हमें फॉरगिव करना ही नहीं चाहिए. लेकिन हम उनको नहीं फॉरगिव कर रहे, हम अपने को फॉरगिव कर रहे हैं. ये याद रखना है. डू नॉट, वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते या फिर उस घाव को रोज रोज रोज और गहरा कर सकते हैं. अपने आप से प्यार करना शुरू करो. हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफरत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं. दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को खुद को तो रोक सकते हैं.
0: हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते जा रहे हैं.
1: हम अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं. ये उन घाव से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा.
0: और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली,
1: बिकॉज क्रिएट कर रहे हैं ना, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं. तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो और अपने पर रहम करो. वी डोंट नीड सिंपथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए. और उसके लिए हमें इसको अब खत्म करना पड़ेगा. मेक इट स्मॉल है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तब ही आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस. हम ही अपने आप को कहते मैंने इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती. अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ. मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ.
0: वेरी ट्रू. यू नो पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है. यू नो यू शुड फॉरगिव फॉर योरसेल्फ, कि आपको उनको माफ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए. अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड, या आप बड़े महान बन जाओगे. तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मुझे महान नहीं बनना. लेकिन आई सडनली रियलाइज कि इट इज नॉट दैट. जितना जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहे मैं छोटी सी चीज के लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, छोटी सी चीज के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूँ, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है. चाहे वो मेरे लिए बहुत यू नो जिंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ. इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन. वी नीड टू रियलाइज सामने, वी नीड टू रियलाइज कि हमें अपने आप को कितना प्यार करना है. थैंक यू सो मच शिवानी. आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम. तो अगर मन में कोई सवाल कोई बात उठती है, आप हमारे से जरूर शेयर करें, या तो हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें. बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई जिंदगी आपके साथ होगी. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। खुद को पहचान कर जब परमात्मा से रिश्ता जोड़ा तो एक नए अंदाज, एक नए परिपेक्ष में अपने आसपास हम देख पाए, और जब हमने देखना शुरू किया तब परेशानियां भी नजर आने लगी, और अवेयरनेस के साथ हमने जाना कि कई ऐसी बातें, कई ऐसी हैबिट्स, कई ऐसी आदतें हमारी मजबूरी बनती जाती हैं, और हम खुद ही जान नहीं पाते कि क्या वजह होती है कि वो आदत मजबूरी के रूप में हमारे सामने आ जाए, और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए और आगे बढ़े तो समाज के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह की तरह सामने आती है। अध्यात्म में या फिर अपनी थॉट पावर से, अपने संकल्पों से, क्या हम इन आदतों को, इन व्यसनों को, इन एडिक्शंस को दूर कर सकते हैं? कौन सा ऐसा वक्त होता है जब मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज फिर इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हैं, और हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, हम अब कई बातें कर चुके हैं कि आदतें जो पड़ जाती हैं, जो हमारी मजबूरी बन जाती हैं, और कई बार जो ये व्यसन है ये फिर आगे चलकर और मुश्किलें क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हम उस मूल बात पर जाएं कि वजह क्या बनती है, क्या ऐसा होता है कि हम जो इन आदतों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्या कारण रहते हैं?
1: सबसे मूल या तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो तनाव है, कन्फ्यूजन है कि आज लोग मुंझे हुए हैं तनाव के कारण, फिर सोचते हैं कि भी कहीं रास्ता मिल जाए, और व्यसन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट है कि थोड़ी सी शराब ले लो, हाँ सिगरेट पी लो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मूल रूप से इसी के कारण तनाव को कम करने के लिए लोग तुरंत व्यसन लेने लगते हैं।
0: उस वक्त तो कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं जैसे शिवानी, स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट हो जाता है, कहाँ हमारी क्या चीज वीक होने लगती है?
2: हम कुछ इस तरह के मेजर को लेते हैं ताकि कुछ समय के लिए एटलीस्ट हमारा माइंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए और हम एक अलग ही दुनिया अपने लिए क्रिएट करके उसमें जीने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर वापस आना होगा, और फिर वो रियलिटी को फेस करना शायद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन तो जितनी चैलेंजिंग थी अभी भी उतनी चैलेंजिंग है, लेकिन अंदर जो मेरे पास पावर थी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए वो और भी कम हो चुकी है। अभी मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही टूट गया, तो अब हम उस सिचुएशन को कैसे फेस कर पाएंगे, इट बिकम्स ऑल द मोर चैलेंजिंग नाउ।
1: यहीं पर जो बात है ना कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया, आंतरिक परिस्थितियां है परंतु उसको नियंत्रण करने के लिए आपको आंतरिक ही कोई चीज अपनानी चाहिए कि जिससे सदा के लिए उस परिस्थिति से आप मुक्त होंगे, परंतु आप बाह्य चीजों को ढूंढते हैं कि जो एक सही सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
0: डॉक्टर साहब, उस सिचुएशन पे आते हैं कि सोशल प्रेशर में या पीयर प्रेशर में आके हमने स्मोक शुरू कर दिया, स्मोक किया, एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग हुई कि बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं, या लोगों ने भी बहुत कहा, शुरू किया था एक पीयर प्रेशर में, एक लोगों के सामने एक अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे देखा यह है कि जैसे ही कोई सिचुएशन है, जैसा कि सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि हम रियलिटी से भागने लगते हैं, तो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सिगरेट चाहिए, पहले मैं एक सिगरेट पी लूं फिर बात करते हैं, पहले मैं एक सिगरेट पी लूं फिर मैं सोच समझ के करूंगा, तो यहां शुरुआत जो थी वो तो सोशल प्रेशर से हुई, तो फिर ये क्यों अल्टीमेटली हम इसको इससे क्यों लिंक कर देते हैं कि जहां पे भी सिचुएशन आएगी, तनाव आएगा, मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी?
1: क्योंकि वही उससे वह बात याद आती है कि पिछली बार जब मैंने पिया था तब थोड़ा सा मैं उसे फेस कर पाया था, मेरे में हिम्मत आ गई थी या तो तनाव कम हुआ था, तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भाषा में कहे कि कंडीशनिंग हो जाती है
0: या वो एक इंप्रेशन बना हुआ है।
1: हाँ, इंप्रेशन बना हुआ है, वो भी ठीक है ना, और वह सोचता है कि ये मेरी कोपिंग स्किल्स है, जो कुछ भी हम करते हैं ना, हमने अलग अलग हमारी कोपिंग स्किल्स को अपनाया है। दूसरा एक मनोविज्ञान का यह शब्द है जिसको कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, कि जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते, ईगो को डिफेंस करने की मैकेनिज्म हो जाती है। तो व्यसन लेना भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आगे चल के होता है, सिगरेट पीना या तो व्यसन लेना वह ऐसी मैकेनिज्म हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेजर जो रीजन है वो तनाव से मुक्ति है, ये वो व्यसन की हम बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाह्य है और हम उसे नेगेटिव माना जाता है, सोशली हम जानते हुए भी, मेंटली अगर हम जानते भी हैं कि ये गलत है, हम इसको ले लेते हैं और एक हिस्सा बना लेते हैं। हमने उन आदतों की भी बात की थी जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाते कि ये हमारी मजबूरी बनती जा रहे हैं, उनके क्या कारण होते हैं?
1: एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है वह है कि भी हम बड़ों से सीखते हैं। घर में अगर बड़े भी ले रहे हैं तो हम भी उनसे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। और एक बहुत जो बड़ी बात है वह हमें लगता है कि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। जैसे कहीं आज है सिगरेट्स पीते हैं, स्पेशली मॉडल्स में मैंने देखा है, ये वह समझते हैं कि इससे हमारा वेट कंट्रोल में रहता है।
0: पर एक्चुअली ये मैं इन्हीं बातों पे भी आना चाहती हूँ, आध्यात्मिक के लिए भी जानेंगे, लेकिन ये कि होता क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी टेंशन रिलीव हो रही है, मेरा वेट कंट्रोल हो रहा है, क्या एग्जैक्टली ये सब कुछ होता है, क्या रियल में ये हो रहा होता है हमारे साथ जब हम इन सब व्यसनों में शामिल होते हैं?
1: काफी हद तक तो साइकोलॉजिकल है, प्रैक्टिकल ऐसी कोई बात नहीं। कुछ चीजों में होता भी है, जैसे कि जो साइकेट्रिक दवाइयां हैं उनकी भी आदत हो सकती है। तो क्योंकि शुरू में व्यक्ति अपने आप भी साइकेट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है फिर भी वह लेने लगता है, तो क्योंकि उसे नींद आने लगती है, जो नींद की गोलियां है तो उसे नींद आने लगी तो वह सोचता है कि ये गोली मैं लेता मुझे नींद आती है। कई ऐसी भी दवाइयां हैं कि जो आपकी एंग्जाइटी को कम करती है, जो घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, तो उसे कम करने वाली कुछ दवाइयां हैं। जब आप लेते हैं तो कुछ समय तो अच्छा लगता है, परंतु जब लेते रहते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। जब एक दिन भी आपने नहीं ली और तब जो समस्या होती है तब जागते हैं कि अरे एक डोज मेरा छूट गया, इतनी बड़ी समस्या हुई तो शायद मैं व्यसनी बन गया।
0: डेफिनेटली अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा लगने लगता है, क्या हो रहा होता है हमारे अंदर, कहाँ वो संकल्पों का और विल पावर का और संस्कारों का कौन सा ऐसा तालमेल बैठ रहा होता है कि हम उसे अच्छा फील करने लगते हैं?
2: क्योंकि थॉट्स का जो सोर्स है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम, और ये तीनों चीजें अभी हमारे ऊपर हावी हो रही है। जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि एक दो बार चॉकलेट खाई थी पहले और तब ऐसा लगा कि अच्छा फील हो रहा है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको अगली बार फिर वो थॉट क्रिएट करेगा। इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने फ्रेंड्स से या पीयर प्रेशर से मिलती है, और बिलीफ सिस्टम कि एक बार दो बार वो किया तो वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बैठना शुरू कर देता है कि विदाउट स्मोकिंग मेरा एनर्जी लेवल वो आएगा ही नहीं, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ जैसे स्टेज आर्टिस्ट या परफॉर्म जिन्होंने करना है वो उसके बिना आ नहीं पाते हैं, वो करते ही नहीं है, उल्टा उनको बस बैक स्टेज करके और फिर तुरंत से स्टेज पर आना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम बन गया होगा या वो लो फील करना शुरू भी कर देते हैं तो वो एक बिलीफ सिस्टम साइकोलॉजिकल जैसे का कि वो बन गया कि इसके बिना तो हम वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे ही नहीं पाएंगे, तो वो थॉट्स में हमारे आ जाता है और वो हमारी डेस्टिनी फॉर बनता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिलीफ सिस्टम को एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ ही तो कट करना पड़ेगा कि दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल अब्यूज जो मैं यूज कर रहा हूँ एंड ये मेरे एनर्जी लेवल को टेम्पररी तो शायद एक किक दे रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे कितना डी एनर्जाइज कर रही है। तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा शुरू में कि नए बिलीफ सिस्टम को ले तो नया थॉट क्रिएट होगा, लेकिन अगर अपने लिए you want to do the best for yourself, again yatra jo hai hamari, so you will be able to change it. But kahin na kahin jo most powerful belief system is pe work kar raha hai, happiness is outside. To hum in sabhi cheezon ko isiliye kar rahe hain kyunki kahin na kahin hame khushi chahiye, khushi ko hi to sare dhoond rahe hain aur andar kahin pata nahi chal raha ki kaise usko create karna hai, to sambandhon mein dhoonda wahan bhi nahi mili, to fir in

0: समझो, ये एक परसेंट है वो 99% नहीं, 99% मुझे हानियां है, बस 1%। दोनों को अगर हम बैलेंस करें, वो बैलेंस शीट निकाले, तो पक्का हो जाएगा कि भी 1% बेनिफिट नहीं हो कोई बात नहीं, मैं और कोई रास्ता ढूंढूंगा।
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, हम कारणों की बात कर रहे हैं कि आपने कहा तनाव जो है एक मेजर कारण हो जाता है, और उसके अलावा और भी कई बातें हैं। जैसे कि सिस्टर शिवानी ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया कि मुझे सोल्यूशन बाहर मिलेगा, तो हमने इन स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल किया। एक और देखा गया है कि जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जब आप फेलियर हो जाता है, या रिश्तों में भी देखें या किसी में, तब भी आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ मुड़ते हैं हम, वो भी क्या, वो कारण क्या बनता?
0: वो इम्पोर्टेंट कारण है। उससे पहले मैं एक बात, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, वह बात अधूरी रही गई, मैं सोचता हूँ वह क्लैरिफाई करे कि सिगरेट पीने से ये सोचते हैं कि भी वेट कंट्रोल में आ गया, परंतु वो सचमुच वेट कंट्रोल नहीं होता है। वह भी भले शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो जो चर्बी का डिपोजिशन है वो रुकता है, बॉडी के अंदर फैट डिपोजिट नहीं हो पाती है, इसके कारण आपका वेट बढ़ता नहीं, या तो 1-2 किलो कम भी होता होगा। परंतु उसकी जो और हानियां हैं, जो मॉडल्स की हमने बात की कि बस हेल्थ की बात को लेके ले रहे, परंतु स्किन पर बहुत बुरा प्रभाव है, चेहरे पर इतना बुरा प्रभाव होगा कि वह जो आपको बेनिफिट हुआ वो खत्म हो गया, पर साथ साथ में आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स होने लगते हैं। तो इन सभी बातों का अगर विचार किया जाए तो छोटे से बेनिफिट्स के लिए कभी भी सिगरेट को टच नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो अपने फ्रस्ट्रेशन की बात अभी कही, कि वो भी ठीक है कि भी फ्रस्ट्रेशन को 1 सेकंड में शायद व्यक्ति भूल जाता है, और उसका कारण है कि उससे एसोसिएटेड जो दर्द है वो शायद कम होता है। ये जो ट्रंक्विलाइजर्स है उन्हें वो टेम्पररी बेनिफिट्स देते हैं, वो भले टेम्पररी बेनिफिट्स अच्छे भी है अगर प्रॉपरली डॉक्टर्स की राय के अनुसार थोड़े समय के लिए लिया जाए, फिर उसे सही रूप में छोड़ा भी जाए। आम व्यक्ति क्या करता है कि भी उसे जब जब स्ट्रेस होगी तभी वो सोचेगा कि एल्प्रेक्स की गोली ले लूं, वेलियम की गोली ले लूं, वह ठीक नहीं है। वह टेम्पररी एक्चुअल रिलीफ भी नहीं देता।
1: आई थिंक 90% आज की जनरेशन जो वर्किंग क्लास है वो यही करती है कि नींद नहीं आ रही है तो एल्प्रेक्स ले लिया जाए। एल्प्रेक्स तो बहुत हल्की है, कोई परेशानी का कारण नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ड्यूरिंग एडिक्शन, मैं एडिक्ट भी हूँ एल्प्रेक्स की, क्या मेडिटेशन में कर सकती हूँ, और क्या वो मुझे जो एल्प्रेक्स का असर मुझ पर पड़ रहा था उससे ज्यादा असर दे सकती हूँ?
2: एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक उससे पहले हमें रूट को ढूंढना पड़ेगा कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। you know, कोई ना कोई बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ बाहर से उसके सिम्टम को नहीं देखें, लेकिन वो रूट प्रॉब्लम क्या है, और स्पिरिचुअलिटी हमें वो रूट को एड्रेस करने की कोशिश करेगी कि अगर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन है या करियर में कोई, मतलब एनी सिचुएशन आउटसाइड, तो उसको फेस करने की पावर देगी। अभी हम एडिक्शन से तो ठीक है, हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट एड्रेस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो प्रॉब्लम फिर ट्रिगर होगी तो वी विल अगेन गो बैक टू दैट, क्योंकि हमने वो तरीका नहीं ढूंढा कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमने वो चीज का सेवन किया और अपनी प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए भूल गए, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसको फेस करना, उसकी पावर तो किसी भी मेडिकेशन से नहीं आएगी, किसी भी ड्रग से, या इवन मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग से भी वो पावर तो नहीं आ सकती कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कैसे ढूंढे।
1: तो
2: दैट विल गिव दैट
0: परमानेंट सोल्यूशन,
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, अगर हम देखें तो एक और जो कारण नजर आता है कई बार, वो ये कि ट्राई करना चाहते हैं, जो खासकर इस जिस उम्र की हमने पहले भी बात की थी, यूथ की, वो जो एक एक्सपेरिमेंटिंग मोड है, पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो एक काफी पावरफुल फैक्टर है। एक बार कर लेने से कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करके देख लेने देता हूँ, एक कष्ट लगा लेते हैं, या एक बार एक प्याला पी के देखने में क्या हर्ज है, एक वो कितना इफेक्ट हो जाता है एक बार का पिया भी,
0: क्योंकि मेजोरिटी एक बार के बाद तुरंत छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन वो होता नहीं। एक बार आपको उससे थोड़ा भी बेनिफिट हुआ, आप चाहते दोबारा भी मैं लो, दोबारा जब टेंशन होगा या तो फिर सेकंड टाइम तो थोड़े प्रेशर में भी आप ले लेंगे, क्योंकि एक बार तो मैंने लिया
1: है। मतलब तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे आदत नहीं पड़ी थी।

0: इवन सेल्फ कंट्रोल भी था ना, एक भी बार जब तक व्यक्ति ने नहीं लिया है उसके ऊपर वो एक इमेज है कि मैंने एक बार भी सिगरेट नहीं पी, है ना, वो एक जिसको सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं, आपकी एक इंटरनल स्टेट होती है, जब एक बार पी ली फिर तो इजी है, चलो अभी दूसरी बार भी ठीक है, दैट इज वेरी इजी नाउ नो, उस समय जो रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है।
1: कोई भी बात आप एक बार कर लेते हैं चाहे वो गलत चाहे वो अच्छी बात, दूसरी बार करना बहुत इजी हो जाता है ना। तो अभी तक है कि मैंने कभी नहीं किया, तो जब तक आप अपने आप को वहां पे रख सकते हैं कि मैंने कभी नहीं
2: वो
1: किया,
2: मेरे लिए प्राइड का एक्चुअली मोमेंट होता है
1: एंड आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होती है। लेकिन और इंटरनल एक आपने अपने लिए बैरियर भी तो रखा है ना कि मुझे ये नहीं करना है, लेट्स से मैं नहीं करूंगा ये। लेकिन जिस दिन हमने वो बैरियर को तोड़ दिया, अपने लिए ही क्रिएट किया जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल को तोड़ दिया, तो पहली बार तो शायद ट्राई करने के लिए किया तो वो सेल्फ कंट्रोल था, थोड़ा सा किया रुक गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम शायद कोई प्रॉब्लम आने पर करेंगे। उस टाइम शायद उतनी पावर ही नहीं है कि वो सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करे,
2: क्योंकि ऑलरेडी पावर प्रॉब्लम में है, सिचुएशन ऐसी है, मेंटली हम इतने,
1: और वर्तमान समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं चैलेंजेस तो जीवन में आते ही रहेंगे, तो मुझे वो सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आई हैव टू क्रॉस ऑल दीज चैलेंजेस बिना इन चीजों का सेवन किए, तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
2: अगेन अगर मेल फीमेल रेशो की बात करते हैं, खासकर अगर हम व्यसनों की ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन के साथ भी आज ये हो रहा है कि स्मोक और ड्रिंक जो है वो एक पार्ट ऑफ सोशल कल्चर की जो बात है, ये भी बात कही जाती है कि वुमेन की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैज टेक प्लेस विद हर बॉडी, तो उस उनकी बॉडी पे क्या डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, ये भी एक मिथ है जिसके बारे में हम आपसे चाहेंगे कि खुलासा कर लें।
0: मोर और लेस इफेक्ट तो सेम है, परंतु बॉडी सिस्टम डिफरेंट है, इट्स डेलिकेट, लाइक स्किन इज डेलिकेट, पर उस पर ज्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट होगी, तो इसे नहीं, और सिस्टम्स पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी। हार्मोनल सिस्टम डिफरेंट है, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हार्मोन्स दैट इफेक्ट इज लिटिल डिफरेंट, तो वही जो इफेक्ट मेल को होती है वो फीमेल को भी सारी इफेक्ट्स होनी ही होनी,
2: और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिव सिस्टम है।
0: और दूसरा बहुत बड़ा कारण कि यार टोबेको का यूज जो इतना बड़ा है वो लोग फिल्मों से सीखे, फिल्म में शाहरुख खान प्रॉब्लम में है, बस वो एक सिगरेट पीता है उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया, और लोग उसे
2: और एडवर्टाइजिंग, जिस तरह की एडवर्टाइजिंग जिस तरह की आ रही है, ऐसा लगता ही है कि अब मिल बैठेंगे यार, तो मतलब ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
0: एडवर्टाइज तो फिर भी ठीक है कि हम सोचते हैं कि भी ये कंपनी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए की है, परंतु फिल्म में ये बात नहीं होती,
2: वो रियलिटी दिखा रहा है।
0: फिल्म में तो यह है कि भाई नहीं, थोड़ी धुआं निकालो और तुम्हारा गम खत्म हो जाएगा, गम को तुम भूल जाओगे, और वो तो पहले से ही एसोसिएट कर रहा है फिल्म के साथ देखने वाला कि जो हो रहा है वो मेरे जीवन के साथ है, और जब वहां हो जाता है तो यूथ इमीडिएटली उसे लेने
2: लगते, बिल्कुल पिकअप कर लेते हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल, एक और जो बात सचिवानी सामने मतलब जो दिख रही है दिखती है वो ये कि एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं मेरा बेटा अगर स्मोक कर रहा है, मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैं क्या कर सकती हूँ, ओके कर रहा है तो अब ये है ही, आज का दौर यही है कि करेगा ही करेगा, या मेरा बेटा ड्रिंक्स में चला गया है, या मेरी बेटी भी स्मोक कर रही है, तो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ या समाज के साथ, जो यूथ को एक्सेप्ट करना हमने बहुत आसान कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन माई हैंड एट ऑल, दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर, मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या हम रोक नहीं सकते, क्या हमारे हाथ में नहीं है एज अ पेरेंट?
0: बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं कि भी एक तो आप कहते हो बिल्कुल सही है कि भी आज माता पिता उसको एक्सेप्ट करने लगे हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसे प्रिवेंट करना बहुत पॉसिबल था, कि अगर पहले से थोड़ा से कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते तो उसे वो प्रिवेंट कर पाते। और सेकेंड, अब एक्सेप्ट तो नहीं करो वो बिल्कुल ठीक है, परंतु डांटो भी नहीं,
2: डांटो भी नहीं, लेकिन बात तो करो,
0: बात नहीं हो तो उसको तो ओवरकम करना ही है।
2: नहीं, वो तो बड़ी मजेदार बात ये है कि वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ हमसे छुप के पीता है, हमें नहीं पता चलने देता, हमारे सामने नहीं पीता, तो ये हमारी कम से कम इज्जत करता है, तो ये
0: कल तो पीने लगेगा आपके सामने भी,
2: नहीं पीता आपके सामने लेकिन पी तो रहा है, तो ये हमारा माइंडसेट को क्या आप क्या कहेंगे?
1: आई थिंक हमें इतना प्यार देना पड़ेगा उसमें। अभी नॉर्मली क्या होता है, अगर पता चल जाता है तो वी स्टार्ट लुकिंग डाउन यू नो एंड हम बार बार वो रब इन करते हैं, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और क्रिमिनल जैसा उसको फील करने. अब उसने वो एडिक्शन शुरू की बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, इधर लोनलीनेस और यू नो टेंशन, और अब जब उसको ये नेगेटिव एनर्जी पेरेंट्स से मिलती है तो वो एडिक्शन से बाहर निकलने के बजाय और भी उसकी तरफ चला जाते हैं. तो हमें पहले तो बहुत प्यार देकर उसको, जो आपने कहा एक्सेप्ट, उस सेंस में नहीं एक्सेप्ट, लेकिन बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढना पड़ेगा,
2: उसकी लत को, उसकी एडिक्शन को एक्सेप्ट ना करें,
1: एडिक्शन को नहीं. अभी हम ज्यादातर क्या करते हैं, उनकी जो बात है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझने की बजाय, अगेन द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज एक्सेप्ट कर ले कि ये तो आजकल के बच्चे सुनते नहीं है. तो कहां किस बात को एक्सेप्ट करना और उसको गाइड करना, rather than you know trying to make him sound ki you're doing something wrong. Yes, wrong, but in what way? And again find the solution to the root problem ki kyun inhone ye karne shuru ki. Agar peer pressure, agar media, to wo bhi aap ghar mein baith kar you know have a dialogue. And I think parents do it, but it's with negative energy ki wo karte hain lekin wo us tarah se nahi, galat kar rahe ho, galat. To wo ek negative energy jo transmit hoti hai wo parivartan nahi karne dete.
2: Aur fir wo kahin na kahin ki aapne hamara trust break kiya,
1: wo sab jo factors aa jate hain. To bhale hum kar rahe hain, hum unhe rokna bhi chahte hain in baaton se, lekin vidhi ko theek apnana padega ki pehli baat solution root pe nikalna padega ki kya unke koi relationships mein problem hai, kahin college school mein koi problem hai, kahin parents ke sath hi to nahi bonding ho rahi hai, कहीं स्टडी में कुछ प्रॉब्लम, वो बातों को जरूर देखना पड़ेगा. राधा देन नहीं बस आप इसको छोड़ दो, वो तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन जब आप सोल्यूशन ढूंढेंगे रूट पे, ये बात तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी. एंड ओवरऑल आपने अपना घर में कल्चर कैसे बनाकर रखा है, किस तरह से बनाकर रखा है, वो ऑटोमेटिकली बच्चों को इन बातों की तरफ जाने से.
2: इनफैक्ट अगर गिरीश पटेल जी देखें कि बहुत से फादर्स को मैं से जानती हूँ कि हाँ मेरा बेटा जो ड्रिंक्स शुरू करेगा वो मेरे साथ बैठ के ही शुरू करेगा.
1: तो कल्चर है,
2: ही विल हैव हिज फर्स्ट फैग विद मी. वेयर आर वी हिटिंग, हाउ रॉन्ग इट इज. आई वुड लाइक यू टू टेल इट हाउ रॉन्ग इट.
0: नो नो, इट्स डेफिनेटली नो, ये एक एक्सट्रीम नेगेटिव है कि भी आप टोटल उनको सोच रहे भी मेरे साथ पी के सीखेगा. उल्टा आपको तो एग्जाम्पल बनना है कि भी मैं छोड़ दूं ताकि मेरा बेटा भी उसे कभी छुएगा तक नहीं. और शिवानी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि भी हमारा डायलॉग है ही नहीं. उन्होंने तो कहा कि डायलॉग है परंतु नेगेटिव है. परंतु बहुत सारे ऐसे में परिवारों को जानता हूं कि जो पैसा दे देंगे ना, उनको एटीएम कार्ड दे दिया, जब चाहे जितने पैसे निकाल लो बैंक से, परंतु समय नहीं दे पाते. सबसे बड़ी बात है उनको समय देने की, उनके साथ डायलॉग
1: भी नहीं चलता कि वो ले रहे हैं ऐसे कोई चीज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम स्पेंड नहीं कर.
2: और मैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी आसानी से हम उसे एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, हम एफर्ट क्यों नहीं करना चाहते कि हम बदल सकते हैं. मैक्सिमम पेरेंट्स का यही देखा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते. तो क्या पेरेंट्स कर सकते हैं, पहले मैं ये चाहूंगी, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो इस टाइम पे देख रहे हैं, जिनके या तो बच्चे या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स एडिक्शन में है स्मोकिंग के या ड्रिंक के, आप ये बताइए क्या पेरेंट्स, चाहे वो बच्चा एडिक्ट हो गया है, मतलब जिसको स्मोकिंग को हमने इतना नेचुरल मान लिया है या ड्रिंकिंग को, क्या उन्हें वापस ला सकते हैं?
0: डेफिनेटली ला सकते हैं और लाना ही चाहिए. जितना जल्दी आप कदम उठाएंगे वो इजीयर होगा. नहीं, जितनी आप देर करेंगे वह हैबिट स्ट्रांग होगी और आगे चल के दिक्कत हो सकती है. और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये बच्चे को वापस, वो एक समझो लैप्स हो गया परंतु उससे मुझे अब वापस लाना है और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. बल बिजनेस थोड़ा कम हो कोई बात नहीं है, और कहीं सोशल बातें मैं ना भी कर पाऊं, परंतु बच्चे के लिए समय देना है ना. उसको कि कैसे अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना है, कुछ उसे टेक्निक सिखानी है कि जिसके द्वारा वो कम्प्लीटली वापस आ जाए.
2: शिवानी, एक्सेप्टेंस, जैसा आपने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट द सिचुएशन बट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट की अगर हम बात करेंगे, तो उसके बाद के जो कदम होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया. अब क्योंकि पीयर प्रेशर में भी है, लोग भी अपने दोस्तों को तो वो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ऐसे पेरेंट कर सकते हैं कि उन्हें वापस लाया जाए?
1: उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करके, अप्रिशिएट करके उनके अंदर जो क्वालिटीज है. और यही चीज अगर बचपन से उनको रियलाइज करवाई जाए कि आपकी अप्रिसिएशन उस चीज में जो आपके अंदर है, बजाय कि जो आप बाहर करते हैं. वी डोंट अप्रिशिएट, मतलब वी डोंट वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू ओनली फॉर वॉट यू अचीव, बट वी अप्रिशिएट यू फॉर वॉट यू आर एज अ पर्सन. तो अगर हमने बचपन में ये नहीं किया, वील हैव टू डू इट नाउ. एंड उसके

0: इमोशनली भी उसकी चीजों को देखा जाए कि इन तरफ जाने से आपका फ्यूचर क्या है, या हम क्यों इस तरफ जा रहे हैं, जब आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतने स्किल्स हैं, तो यू डोंट नीड टू बी अ विक्टिम टू यू नो दीज स्मॉल थिंग्स. और वो प्यार से, स्नेह से, और कहीं ना कहीं परिवार में ये चीज रॉन्ग है, जो हमने कहा था फैमिली की राइट्स एंड रॉन्ग्स हमें फिक्स करने, इस चीज को रॉन्ग है अगर हम रॉन्ग मानते, तो इसको बचपन से हमें इंस्टिल करना पड़ेगा. और अगर फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो पेरेंट्स का तो शायद उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है. इफ दे टेक इट इन द राइट डायरेक्शन, देन पेरेंट्स की बात ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट करेगी.
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा जो आज की बातचीत रही, क्योंकि कई कारण सामने आए. जब कारण एक बार पता चल जाए, तो हम सोल्यूशंस की तरफ तो चल ही सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, लत पड़ने की, व्यसन की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं, तो कितने सारे कारण सामने आते हैं. जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था तनाव से मुक्ति, उसके बाद पीयर प्रेशर है, या फिर मैं कुछ कर दिखाने की बात करता हूँ, या लगता है कि मैं एक हमारे सामने रोल मॉडल है वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ. कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब भी उस फेलियर को दूर करने के लिए. और सबसे बड़ी बात जो बच्चों में, जो युवा शक्ति में नजर आई, वो ये बात कि अगर हमारा बच्चा इस तरफ बढ़ रहा है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है. आज बहुत आसान लगने लग गया है कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन खुद अपने मन में हम ये विश्वास रखें कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने बच्चे को वापस लौटा कर लाएंगे, तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें खत लिख सकते हैं, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर फोन भी कर सकते हैं.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी और हमारी ये मुलाकात यूं ही चलती रहेगी. आगे कुछ और बातें करेंगे कि किस तरह से जो आदतें हमारे लिए मजबूरी बन जाती हैं, उन्हें हम दूर भी कर सकते हैं. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये अद्भुत पंक्तियाँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है। इस महान राजनेता और कवि का जन्म भारत के जिस प्रदेश में हुआ, वहाँ का नवाबी अंदाज और प्राचीन इतिहास अपना व्याख्यान खुद ही करता है। चलिए आपको ले चलते हैं कृष्ण और राम की भूमि और काशी की पवित्र नगरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण नगर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर आदि हैं। इस राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर सन 2000 को इसमें से अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर राज्य को अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला था। उत्तर प्रदेश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ तथ्य जो यहाँ की इमारतों, कहानियों और गलियों में दबे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 कालों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईसा, मुस्लिम काल लगभग 1200 से 1775 ईसवी, ब्रिटिश काल लगभग 1775 से 1947 ईसवी तक, स्वतंत्रता पश्चात का काल 1947 से और वर्तमान आज तक। गंगा के मैदान के बीचों बीच की अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है। कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहाँ हुई है। भारत के दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा भी यहीं की है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 2 नए धर्म जैन और बौद्ध का विकास हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के कई नगर जैसे अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्या अध्ययन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्म के पास आने से एक नई मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास, रामानंद और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर के अतिरिक्त अन्य कई संत पुरुषों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। अब आर्य यहाँ आए और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलुज के मैदानी भागों में यमुना और गंगा के मैदानी भाग की ओर बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यव्रत अथवा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, जो कि आर्यों के एक चक्रवर्ती राजा थे।

वैदिक साहित्यों और दो महाकाव्यों रामायण व महाभारत से इस क्षेत्र के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जानकारी मिलती है, जिसमें गंगा के मैदानों का वर्णन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया गया है। महाभारत की पृष्ठभूमि राज्य के पश्चिमी हिस्से हस्तिनापुर के आसपास है, जबकि रामायण की पृष्ठभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है। राज्य में दो अन्य पौराणिक स्रोत हैं, वृंदावन व मथुरा। रामायण में हिंदुओं के भगवान राम का प्राचीन राज्य कौशल इसी क्षेत्र में था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर भी इसी प्रदेश में है। वाराणसी के समीप सारनाथ का स्तूप भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ साथ यह विशाल क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और गुप्त, मौर्य और कुषाण साम्राज्यों का भाग बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले देवरिया में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6 शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासन काल लगभग 330 से 380 ईस्वी तक रहा, वह मौर्य सम्राट अशोक, जिनका शासन काल लगभग 268 या 265 238 तक रहा, समुद्रगुप्त, जो लगभग 330 से 380 ईस्वी तक रहे, और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो लगभग 380 से 415 ईस्वी तक रहे। यहाँ के एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कान्यकुब्ज, जो अब आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित है, से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध और हिंदू संस्कृति दोनों का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासन काल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य, वास्तुशिल्प, प्रतीक अपने चरम पर पहुँचे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान हुआ। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ मानते हैं। इस क्षेत्र में हालांकि 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया। लगभग 600 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 200 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूने में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके महानतम प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था।
18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ।

0: लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधियों और 1816 में गोरखों से छीन गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, जो आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। यह बगावत लगभग एक साल तक चली और धीरे धीरे यह बगावत पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इसी बगावत को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। यह बगावत मेरठ शहर से शुरू हुई, जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस थे। इस बगावत की वजह लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह संग्राम मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ा गया। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, भक्त खान, नाना साहेब, तात्या टोपे आदि अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की बौद्धिक श्रेष्ठता ब्रिटिश शासन काल में भी बनी रही। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ बना दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ शाखा हाई कोर्ट बेंच स्थापित की गई। बाद में 1935 में इसका संक्षिप्त नाम संयुक्त प्रांत प्रचलित हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857 से 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया और 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चोरी चोरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश में जन्मे एक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने फांसी मिलने से पहले जेल में ही अपनी आत्मकथा लिख डाली थी। बिस्मिल की एक अमर रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, गाते हुए न जाने कितने देशभक्त फांसी के तख्ते पर झूल गए।
1: है

0: अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।
1: 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी कहलाई, व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड क्षेत्र जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र द्वारा निर्मित है उसमें समस्याएं उठ खड़ी हुई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और वृद्ध भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है। बेरोजगारी, गरीबों और सामान्य व्यवस्था व पीने के पानी

जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम विकास ने लोगों को एक अलग राज्य की मांग करने पर विवश कर दिया। शुरू शुरू में विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में इसने जोर पकड़ा। वह आंदोलन तब और भी उग्र हो गया जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के एक प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 40 लोग मारे गए। अंततः नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, गठन किया गया। सन 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, पूर्व उत्तर, उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पहाड़ी भाग, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक तत्व इस प्रकार से हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की भू आकृति की। उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जालोड़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाइयों में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमी उत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यह ऊंचाई कहीं कहीं 305 मीटर से भी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः उनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ व दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतली है तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल भी हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 3/4 यानी 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की मुख्य फसलें हैं। 1960 के दशक से गेहूँ व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। पशुधन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। हालांकि प्रति गाय दूध का उत्पादन कम है। इसके अलावा हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते, चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में प्रमुखता के साथ योगदान देते हैं। भदोही व मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। वाराणसी का रेशम व जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की खूबसूरत वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, नागुआ का अबनूस की लकड़ी का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं और सहारनपुर का नक्काशीदार लकड़ी का काम भी उल्लेखनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक है। देश के विकास में इस प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी राज्य के भविष्य की नींव है। उत्तर प्रदेश राज्य में 16 विश्वविद्यालय, 400 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय, कई चिकित्सा महाविद्यालय और विशिष्ट अध्ययनों व शोध के लिए कई संस्थान हैं। राज्य में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और काफी संख्या में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ की संस्कृति पूरे देश भर में मशहूर है। आइए कुछ जाने हम भी। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। यहाँ की संस्कृति पूरे देश भर में मशहूर है। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। वैदिक साहित्य महाकाव्य रामायण और महाभारत के उल्लेखनीय हिस्सों का मूल यहाँ के कई आश्रमों में है। बौद्ध हिंदू काल के ग्रंथों व वास्तुशिल्प ने भारतीय संस्कृति की विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 4 सिंह युक्त स्तंभ, जो वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, पर आधारित है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य कला और 2 भाषाएं, हिंदी व उर्दू, मुगल काल के दौरान यहाँ पर फली फूली। इस काल के चित्रों में सामान्यता धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण है। यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है और माना जाता है कि गुप्त काल में संगीत समृद्ध हुआ, संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शहनशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात है। भारतीय संगीत के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन व मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय गीत व नृत्य भी है। उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिंदी की जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए हैं। साहित्यिक हिंदी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप धारण नहीं किया था। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र उन अग्रणी लेखकों में से थे जिन्होंने हिंदी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य और भारतीय रक्षा सेवाएं 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश निवासी गर्व कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सोनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राही मासूम राजा, अज्ञेय जैसे इतने महान कवि और लेखक हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि पूरा पन्ना ही भर जाए। उर्दू साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर प्रदेश का फिराक, जोश, मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, नजीर, वसीम बरेलवी,
चकमस्त जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश की शान रहे हैं। हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है और लुगदी साहित्य भी यहाँ खूब पढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे नौशाद अली साहिब हिंदी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ को कुछ इस तरह अपनी पंक्तियों में सजोया। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पक्षी पेड़ों से, क्या जाने क्यों उड़ गए पक्षी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। अपने फिल्मी जीवन काल में उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया। इस महान कलाकार के बिना संगीत जगत का नाम अधूरा है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य कथक की। कथक उत्तर प्रदेश का एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। कथक नाम कथा शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य का आरंभ 6 या 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ही हुआ था। प्राचीन समय में यह एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था जिसमें नर्तक महाकाव्य गाते थे और अभिनय करते थे। 13वीं शताब्दी तक आते आते कथक सौंदर्य परक हो गया तथा नृत्य में सूक्ष्म अभिनय एवं मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। कथक में सूक्ष्म मुद्राओं के साथ ठुमरी गायन पर तबले और पखावज के साथ ताल मिलाते हुए नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज हैं।

फरी नृत्य, जांगिया नृत्य, पावरिया नृत्य, कहरवा, जोगिरा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चैता गायन उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति है। लोक रंग संस्कृति समिति इन संस्कृतियों संवर्धन संरक्षण के लिए कार्यरत है। बात करें त्योहारों की तो उत्तर प्रदेश में कई रंग दिखाई देते हैं। यहाँ समय समय पर सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में प्रत्येक 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इलाहाबाद में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में नहाते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन व अयोध्या में अनेक पर्वों के मेले और झूले मेले लगते हैं, जिनमें प्रभु की प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखकर झुलाया जाता है। ये झूला मेले लगभग 1 पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाना अत्यंत आस्था से परिपूर्ण है और बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारों को पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घूमने फिरने के लिए भी यहाँ कई सुंदर पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए आकर्षण की कई चीजें हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, यहाँ की प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नेमिशरण, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ आदि है। यहाँ फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिल्प और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने से भरा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मत्स्येंद्रनाथ पाटन नामक प्रसिद्ध देवपीठ भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कला संग्रहालय मौजूद है। उनमें प्रमुख है लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय, मथुरा स्थित पुरातात्विक संग्रहालय, बौद्ध पुरातात्विक संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित कला एवं हिंदुस्तानी संगीत के महाविद्यालय और इलाहाबाद स्थित प्रयाग संगीत समिति ने देश में कला व शास्त्रीय संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया है। नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदुस्तानी अकादमी हिंदी साहित्य के विकास में सहायक रही है। यहाँ अवलोकन के लिए और कई ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल मौजूद है, जैसे लखनऊ स्थित बड़ा और छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, जामा मस्जिद, वाराणसी का दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि यहाँ की नजाकत और नफाजत मशहूर है, तो साथ ही कई महान क्रांतिकारियों के हिम्मत की ताकत भी। यहाँ का शायराना

सभी की जुबान पर है तो भक्ति भावना दिल में भी। उत्तर प्रदेश की गलियों से होते हुए अब हम आ पहुँचे हैं इस सफर की समाप्ति की ओर। अलविदा लेते हैं आपसे 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात सम

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: स्वागत है ज्ञान चिंतन में. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं. इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं. हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना. तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें. ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्नेह और मोह, इनमें क्या अंतर है. मैं इस पर अपना चिंतन शेयर करूँगी. दोस्तों, ये स्नेह और मोह क्या एक हैं या इनमें कोई अंतर है? चलिए इस विषय को जानने. स्वार्थ होता है, इसमें व्यक्ति की भलाई की कामना होती है बिना किसी स्वार्थ या प्रतिबंध के. स्नेह स्थायी और शुभ भावना वाला होता है, जिसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलती है. माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह या सच्चे मित्र का दूसरे मित्र के प्रति स्नेह, ये सारे उदाहरण स्नेह के हैं. मोह माना अटैचमेंट और ऑब्सेशन. मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है, इसमें व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसे अपने अधिकार में रखना चाहता है. मोह अस्थाई होता है और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध या पीड़ा उत्पन्न होती है. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव होना मोह का उदाहरण है. जैसे माता पिता का अपने बच्चे को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध रोकना या किसी व्यक्ति का प्रेम में अंधा होकर सही गलत भूल जाना, ये मोह की कुछ परिभाषाएं हैं. आज इस चिंतन के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि स्नेह प्रेम का शुद्ध रूप है, जबकि मोह एक मानसिक बंधन है. यदि हम जीवन में स्नेह को अपनाएं और मोह से बचें, तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सुखद हो सकता है. तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही. हम फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ. बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर. धन्यवाद.
3: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही. प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा. ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे. तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें. फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ. धन्यवाद. नमस्कार.
5: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.

0: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं. लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट वॉट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग वेयरिंग. लाइफ स्टाइल इज अबाउट वॉट वी आर थिंकिंग स्पीकिंग बिहेविंग. दैट्स माई लाइफ स्टाइल.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

खास 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर शिवानी।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
1: थैंक यू सो मच
0: सिस्टर। लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे अबाउट विक्टिम कौन है और
1: मास्टर कौन है।
0: अभी आपने जिस चीज को मैं अभी तक मास्टर समझता आ रहा था उसको विक्टिम बोल दिया। अब 360 डिग्री का चेंज है मेरी थिंकिंग और आपने जो सिखाया उसमें।
1: विक्टिम मींस कौन, स्लेव मींस कौन, जो गुलाम है, जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का, और एक है जो अपने मन का गुलाम है, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जिस तरह चलाए वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है। जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने के बजाय, अपने पे रूल करने के बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है। सी, वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक,
1: चलो ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ।
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते, एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड एट दैट टाइम आई से यू इरिटेट मी, राइट, यू इरिटेट मी एंड देन आई गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग यू आर वेरी इरिटेटिंग। वी से दिस, ये हमारी वोकैबुलरी है, ये हमारी रोज की भाषा है, ये बहुत इरिटेटिंग है, ये बहुत इरिटेटिंग है, या ये मुझे इरिटेट कर रहा है, मीन्स कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है, राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर, या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं, मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन, ठीक है, दो चीजें हो रही है, ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड, वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से, ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना। दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं। तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए, या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है।
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा,
1: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा,
0: मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा, मुझे लग रहा है कि माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, खर खर खर खर खर खर, अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं।
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं
0: वो राइट है,
1: वो राइट है या रॉन्ग है। अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है तो किसी का मोबाइल बज जाता है, अभी वी कैन से इट्स वेरी इजी टू से इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए, ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में है, मेडिटेशन में है, मंदिर में है, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे, ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड। अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं, तो एंड रिजल्ट क्या चाहिए, मन शांत हो जाए। दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग, आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस,
0: आई वांट
1: पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम। अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
0: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
1: हाँ, ये सब चीजें, हाँ, ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
0: कि थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें.
1: राइट, कितनी सारी थॉट्स. सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की. इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना. आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की. व्हाट इज द इरिटेशन? योर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. लेट अस चेक. व्हाट इज द इरिटेशन? द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स व्हिच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज.
0: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप मुझे वो चीज मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहा है.
1: वो
0: मैं नहीं कर रहा हूँ.
1: एक प्लास्टिक का पैकेट. हाँ. एक बॉल पेन का टिक टिक.
0: डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी.
1: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी. थॉट कहाँ क्रिएट होती है?
0: मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसके इरिटेशन.
1: यहाँ क्रिएट हो रही है ना.
0: हाँ, मेरे मन
1: मेरा
0: में.
1: मन कहाँ पे? यहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. बॉल पेन टिक टिक हो रहा है
0: वहाँ.
1: मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. किसने क्रिएट की?
0: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने.
1: बट उस बॉल पेन
0: इनके बिहेवियर ने.
1: इनके बिहेवियर यहाँ है. आपका बिहेवियर यहाँ है.
0: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना.
1: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना. अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कम्प्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है. यहाँ वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा.
0: उसकी वजह से हो रहा है.
1: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है?
0: कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की? आपने बोला कि आई क्रिएट, आई चूज, आई एम थिंकिंग.
1: आस्क आवर सेल्फ एंड लेट्स चेक इट इमीडिएटली. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में. बीच में सेंटर में कोई फोन बजा या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे.
0: कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है.
1: राइट.
0: तो
1: अलग अलग थॉट्स ना.
0: हाँ.
1: तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया.
0: जी.
1: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट?
0: सब अलग अलग आदमी ने.
1: क्रिएटर कौन है वो फाइनल?
0: मैं क्रिएटर हूँ.
1: प्लास्टिक
0: मुझमें क्रिएट हो रही है.
1: ये पक्का?
0: हाँ.
1: ये नहीं ना कि वो प्लास्टिक
0: और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ.
1: वो भी कोई बात नहीं. इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चुरचुर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है. वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग. दैट इज इरिटेटिंग.
0: दैट
1: पर्सन इज ऑल्सो इरिटेटिंग बिकॉज दैट पर्सन्स बिहेवियर कॉज्ड मी टू क्रिएट दिस. लेट अस एटलीस्ट नाउ रिमेम्बर, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कम्प्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन. ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है. उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है. यहाँ तक सीमित है. कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा. यू नो लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल से. दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ.
0: सेकंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली.

0: हैं और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन.
1: करेक्ट.
0: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट इज कॉजिंग मी पेन. आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन लाइफ, प्लीज चेंज. ये इक्वेशन हमने बना ली जीवन की. आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए. प्लीज चेंज. सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं,
1: यही
0: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना.
1: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है.
0: वो भी ठीक है, अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है
1: बट इरिटेटेड नहीं होना है. ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको. लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराना, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
0: वो भी इरिटेशन.
1: देखो
0: सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो भी
1: तो लिफ्ट दूं.
0: नहीं नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं.
1: अब ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
0: ब्लेम
1: किया.
0: उसको किया,
1: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा.
0: नहीं नहीं, परफेक्ट. सी ऑल दीज लाइंस आर सो ब्यूटीफुल. उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
1: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
0: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
1: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया.
0: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया. सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स. लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल. मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल?
1: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना.
0: मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है.
1: प्रैक्टिकल में देखो आप,
0: प्रैक्टिकल में
1: आप यहाँ बैठे हैं,
0: हाँ,
1: धूप लग रही है,
0: राइट,
1: तो आप बोलेगे यार बहुत धूप लग रही है,
0: परफेक्ट,
1: और छांव में जाओगे बोलेंगे कितना ठंडा, अच्छा है,
0: परफेक्ट
1: बोलेंगे. इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोलूंगा सब कुछ बुरा लगा.
0: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं. उतनी देर में
1: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए.
0: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस. अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रहे हैं. उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई, शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है. अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना?
1: नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी.
0: अब वो बात गई,
1: वो गई,
0: अब वो थॉट गई. अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर. हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की. जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्युलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए. अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडेज स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड आई केप थिंकिंग, एंड मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल? द मार्केट. मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है. उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर. अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई. अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात, फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया, लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी उसमें इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने

0: अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
1: सब हिला दिया था,
0: हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया। ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
1: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो।
0: यस,
1: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ
0: right.
1: तो वो मेरा 1-0 से शुरू होगा।
0: एब्सोल्युटली,
1: 61-62 शुरू होगा।
0: एब्सोल्युटली,
1: 0-10 नहीं होगा,
0: नहीं होगा, क्योंकि
1: अगर
0: मैं
1: और 75 आना है तो 60+75 होगा।
0: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट, एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है। उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है, अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे,
1: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक
0: और प्रॉब्लम, गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट। अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट्स से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए,
1: सिर्फ की फैमिली में,
0: फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन। तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस। लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड केओस। व्हाई टुडे वी सेड दैट देयर इज केओस इन आवर माइंड, क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, ये कभी कभी आता है जीवन में, सिर्फ ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार।
1: लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का,
0: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी, दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योरसेल्फ इन बिग सिचुएशंस। हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। लेट अस ओनली
1: शुरुआत कैसे करें,
0: छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें में
1: चिप्स वाली बात, चिवड़े वाली बात, वो
0: कुरकुर वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रख दी या जोर से दरवाजा,
1: किस भाग के दूसरी को सीट ले लें, भाग जाए, क्या करें,
0: वही बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट, लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता, अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन, मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो। शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम, स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर, रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर 2 थॉट्स क्रिएट कर लेना, दैट्स ऑल दैट वॉज नीडेड, 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने वो, ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज।
1: चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही तो आवाज बंद हो जाएगी,
0: नहीं
1: 10 भी
0: आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
1: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
0: यस, तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट, जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूँ गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी है, अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता, कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया, चूज कैसे करना है, दैट्स अ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली who is the creator of my thought, and for that very important, never ever are now we going to say they are irritating, they irritate me, no, get irritated, but now the language will have to be I create irritation in response to their behavior. So ye ab interesting game hame sara din khelne hai, कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, दो एंटिटीज है।
1: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
0: गेम है ना, दो चीजें हैं।
1: मेरे कान में दर्द होता है वो देख के, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है।
0: चलो इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट राइट। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माय माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब।
1: इसको एक बार बोलूंगा, पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहे, मेरी भी कुर्सी।
0: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे। ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं। व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे। आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस को हर समय, अब सारा दिन आज रखना है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे। एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन कट कर रहा है, कोई लेट आ रहा है।
1: तो छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं है।
0: ठीक है,
1: अब उसको कैसे बोलूं कि भाई मत डाल, पूछ तो लो।
0: कैसे बोल सकते हैं?
1: एक बार बोला, नहीं नहीं नहीं, आपको खाना बहुत मजे की, तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई। मुझे चावल खाने, रोटी दो, अब घी वाली खा लो एक रोटी।
0: ठीक है,
1: आप ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे, आप पता नहीं क्या, आप आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं? नहीं, बट मैं बोल रहा हूं कि इसका कोई सोल्यूशन मुझ में है।
0: नो नो, वी हैव टू, वेरी फाइन, व्हाट्स द सोल्यूशन? लेट्स आस्क मी, आई आस्क माय सेल्फ, व्हाट्स द सोल्यूशन?
1: सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, बर्दाश्त करते रहो।
0: नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो। सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ।
1: लेट्स से
0: आप यहाँ है, ओके, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ। सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू, इवन इफ आई फील दिस इज
1: इजियर। चलिए, पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ
0: में। मैंने नहीं कहा कि आप इरिटेट हो रहे थे। हाँ, तो आप इरिटेट नहीं कर रहे थे,
1: और आप इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। मैं पहले तीन एपिसोड्स में चिल्लाया तो रहा था,
0: अब
1: तब आप कैसे शांत थे, ये मुझे समझाइए ताकि मैं भी सीख लूं आपसे।
0: आपने
1: वही प्यार से ऐसे ऐसे ऐसे मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जी जी होती है, सब क्या जादू है ये?
0: क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था,
1: जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे।
0: जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में, पहले हम सिचुएशन में देख लें। सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं
1: बात। बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा
0: था। ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है, या तो एक आपको कंट्रोल करो, आपको कंट्रोल करो मीन्स आपको बोलो डोंट टॉक लाइक दिस टू मी,
1: डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल
0: आई एम स्पीकिंग, डोंट डिस्टर्ब,
1: ताकि मेरा फ्लो टूटता है। आप इतना तो बोल सकते थे, वो भी नहीं बोला आपने।
0: आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं, दो ऑप्शन, एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है, अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो मैं आपको बोलूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब, फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए।
1: लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं, और मैं बोल देता हूँ कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है, रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं कुछ नहीं बोलूँ ना।
0: राइट, अब इसका मतलब नहीं, बट इसका मतलब ये
1: भी कभी दो दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया।
0: दैट्स बिकॉज़ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है, अवेयरनेस नहीं होगी, इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया, अवेयरनेस नहीं है, 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है। अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे, तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है। तो ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें, दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर देन आई विल गिव इंस्ट्रक्शन देयर, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमें
1: instruction... क्या ये हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दूं फिर उसको जरूरत ही ना पड़े वहां देने की?
0: नहीं, अगर आपका रोल है एज अ पेरेंट सपोज, एज अ टीम लीडर सपोज, सपोज आपकी गाड़ी में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है एंड इट डजंट गो वेल फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन अ सिंपल थिंग लाइक इट्स नॉट नाइस फॉर मी,
1: तो आई वॉन्ट टू से इट,
0: आई वॉन्ट टू से इट टू द अदर पर्सन, लेकिन गेट इरिटेटेड एंड देन से इट, तो फिर बात यह हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी चीज ये है मैं ठीक हूं, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए
1: वातावरण खराब होता है मेरे,
0: टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये चीज सारा दिन देखनी है, कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
1: वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको
0: इंस्ट्रक्शन भी देना है। हाँ,
1: तो भी आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: एब्सोल्युटली, एंड व्हाई यू गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर, दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर योर पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी पीसफुल, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: हम इजंट इट फॉर माय पीस?
0: नो, यू आर ऑलरेडी पीसफुल बिकॉज यू डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड।
1: अच्छा, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा
0: दिया। कंट्रोल मतलब आई डिड नॉट गेट फ्लक्चुएट, आप मुझे नहीं फ्लक्चुएट कर पाए,
1: तो मैं इस वक्त काम और पीसफुल और स्टेबल हूँ।
0: हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है, तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माय पीस ऑफ माइंड। माय पीस ऑफ माइंड नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनूं। जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं, पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो, तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई? दैट्स अ स्लेव, स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर।
1: पहले स्लेव टू योरसेल्फ भी तो हो गए।
0: जो स्लेव टू योरसेल्फ है वही तो फिर स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर। तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक।
1: वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर। मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है, तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड।
0: थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आपका हम सफर सनी लेकर आया हूँ रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं वो गाने जो शुरू होता है अ अक्षर से। जी हाँ, इस शो में आ अक्षर से शुरू होने वाले खूबसूरत गीतों का आनंद आप लेंगे, और वो भी 50s और 60s के सुपरहिट गाने। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। सुना है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम बुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। दोस्तों, सफर में प्यार में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जहां मौत और जीवन के बीच लड़ना होता है। एक तरफ मौत तो दूसरी तरफ जिंदगी। अब कोई कैसे चुने अपना रास्ता, ऐसे में दिल से सिर्फ आह निकलती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। खुश रहो और खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: जी हाँ साथियों, हसरत जयपुरी का लिखा लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ शंकर, जय किशन का संगीत बद किया हुआ ये गीत 1953 आह फिल्म का आपने सुना। ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में मैं आपका हम सफर सनी। जीवन के सफर में कुछ ऐसे मुकाम भी आते हैं जहाँ शब्द नहीं बस दिल के एहसास होते हैं। मिल भी ना पाए और बिछड़ना भी ना जाने, और नैन तो रो रो हारे हैं। 1966 का एक गाना आपको सुनाते हैं जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और सोनिक ओमी ने संगीत से सवारा है, जिसे जीएल रावल ने लिखा था, दिल ने फिर याद किया इस एल्बम के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम और मैं हूं आपका हम सफर सनी। इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं पुनेरी की आवाज 107.8 एफएम। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम खाबो का सफर। और आप आज के शो में अ अक्षर से शुरू होने वाले खूबसूरत गीतों का आनंद ले रहे हो, और वो भी 50s और 60s के सुपरहिट गाने। 1960 में कुछ ऐसे गाने बने जो आज भी आपको उतना ही ताजगी देती है जितना उस समय देती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, डिस्को हो या मोटिवेशनल हो। जी हाँ भाई और बहनों, लता जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और कलम हो राजेंद्र कृष्ण का, तो बात किस तरह बनती है। ये आपके दिलो दिमाग को एक ऐसा ब्रेक लगा देगा कि आप इसमें खो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंतकाम फिल्म का, जो 1962 में रिलीज हुई थी, और उसका ये गाना जो शुरू होता है अक्षर अ से, उस समय की मशहूर डांसर हेलन पर पिक्चराइज किया गया था। पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो और खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं पुनेरी की आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात 1950 की है, जब राज कपूर नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और उन्हें इंडियन फिल्मों का चार्ली चैंपियन भी कहा जाता है। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था। इसीलिए वो कहते हैं ना दोस्तों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और जहां घबरा कर नजर भी हार गई, सुना है तकदीर को भी नींद आने लगी है, क्योंकि अब रात गुजरने वाली है। आप सुन रहे हैं पुनेरी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो और खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर में। अभी आप सुन रहे थे वो गाना जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और लता जी ने आवाज दी। फिल्म आवारा जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। इस फिल्म के बाद ही राज कपूर ने श्री 420 फिल्म बनाया, जिससे उनको इंडियन चार्ली चैंपियन नाम मिला। ख्वाबों का सफर में मैं हूं आपका हम सफर। जीवन के इस राह में कभी इस तरह भी मोड़ आता है, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े, और दर्द छुपाने लगे थे मगर रो पड़े। हम इंसान है इस बहाने से, मुस्कुराने लगे थे लेकिन रो पड़े। आज दिल पर कोई जोर चलता नहीं। रेडियो पुनेरी की आवाज 107.8 FM पर मैं हूँ आपका हम सफर सनी। इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।

जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, गीतकार आनंद बख्शी लता मंगेशकर का गाया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म मिलन का 1967 का ये सुपरहिट गाना आप अभी सुन रहे थे। रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर आप सुन रहे हो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। वो गाने जो शुरू होते हैं अक्षर आ से, और वो भी 50s और 60s के सुपरहिट। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, और एक बात बताना चाहूंगा, 1963 में फिल्म बनी जिसका नाम था भरोसा, आशा पारेख और गुरुदत्त पर पिक्चराइज किया गया था, जिसका कहानी इस तरह का था, एक धनवान व्यक्ति को टीबी हो जाता है और वो अपने नौकर को बहुत पैसा देता है और कहता है मेरे लड़के को अपने साथ रखना और उसे पढ़ाना लिखाना, लेकिन नौकर रौनक लाल सेठ के बेटे के बजाय अपने बेटे को पढ़ाता है और सेठ के बेटे को अनपढ़ रखता है। फिल्म के अंत में कहानी इस तरह से पलट खाती है, अंत में रौनक लाल का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी तो बनता है, लेकिन वो रौनक लाल को छोड़कर ससुराल में रहने लगता है। इसको कहते हैं जैसे को तैसा मिल गया, और रौनक लाल पूरी तरह से सेठ के बेटे पर निर्भर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरोसा फिल्म का एक खूबसूरत गीत वो आ से शुरू होता है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। रवि साहब का संगीत और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।

नमस्कार, आज की मुलाकात बस इतनी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं पुनेरी की आवाज 107.8 FM। खाबों का सफर के आखिरी मोड में एक बहुत ही खूबसूरत गजल आपको सुनाना चाहूंगा, जगदीश सिंह का। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। इसी के साथ मुझे यानी अपने हम सफर सनी को दीजिए इजाजत, और फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में खाबों का सफर में। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। आपका हम सफर सनी, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM। आणि तुम्ही आता आरजे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बहारदार कार्यक्रमात अलगची झलक मध्ये अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, आतापर्यंत एकापेक्षा एक सुंदर बहारदार अशा अलग प्रयोग क्रमांक 167 मध्ये अर्थात 3 ऑगस्ट 2025 च्या कार्यक्रमात तुम्ही ऐकल्यात। आरजे जगदीश वळतोय

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं MP बजोड़ से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: 5th।
0: और उसके बाद युग, आप बताओ।
2: मैं सूरत ओराछा से आया हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत ओराछा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9 में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: 2nd।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखिए, नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी, एक बार
0: देखी थी। तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए?
0: नींद से जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
10: मैं डॉक्टर बनूं।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
10: दीदी, मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
8: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
11: टीचर।
0: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
11: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके, क्या बनोगे?
12: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगी कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के कुछ भी नहीं? ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है।
9: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
9: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के। कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
9: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो के।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
13: बड़ा होकर CID बनना चाहते।
0: CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है, मैं बताओ तो?
13: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे CID बनके?
13: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है, और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी न किसी की सेवा होती है, है? और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी, आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं, अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा, स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी? क्या सोचते हो बता?
14: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा, मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई, सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
6: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
9: किसी को लगता है पर हमें से नहीं
0: लगता। आप में से किसी को भी नहीं लगता?
5: नहीं।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो?
4: घुमाऊंगी।
0: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
9: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, मेरे पास। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपनी मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
6: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे?
5: आप क्या करोगे? दीदी हम
0: आप भी सेवा करोगे। ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी पापा, दादी, दादाजी, चाची, चाची।
0: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
5: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ यू?
9: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
0: इसलिए वो फेवरेट।
9: मैंने कैसियो मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
9: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो उनसे
9: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
0: दादी दादा, अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मम्मी पापा, दादा, दादी।
0: और सबसे अच्छा
5: दी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
5: मम्मी
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
4: दीदी, अग्रजा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
4: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
4: तो मुझे कल ही चप्पल मांगी थी पर आज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
6: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाचा।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
6: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
6: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
9: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
4: दीदी हमको भी
9: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
9: कभी कभी होती है।
0: होते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
9: जब एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो? मुस्कान क्या करते हो आप? ऐसे शरारत करते हो? बताओ। ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हैं मुस्कान बताओ?
6: कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? आयुक बोल।
9: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
9: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो?
9: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
9: हमारे घर में तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
9: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वरी, आप कभी गुस्सा होते?
4: नहीं।
0: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
4: हाँ।
3: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
3: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
3: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा हो जाता है आप टीवी बंद कर देते हो, और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
3: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
4: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती तो हम झगड़ते, तो दीदी फिर कुछ नहीं करते चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
3: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
9: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करके लेने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
9: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
9: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
9: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हैं
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की, उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड्स मुझे धक्का देते फिर मैं भी फिर हम फ्रेंड्स बन जाते
0: हैं। अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ,
1: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए
0: झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब कोपड़े कोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: अच्छा, उसकी भी जगह बता देते हो।
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी हमारे शांति।
0: क्या होता है?
4: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है, उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और युग?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मैं ही ताकतवर, सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी झूठ नहीं बोलते, ले जाते ही है।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएसटी में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता है उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरे वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो आप?
1: पीछे मैं एडवेंचर सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
7: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
7: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
7: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको?
7: नहीं।
0: क्या करते हो बर्थडे पे?
7: सब लोग केक खिलाते हैं मुझे।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं इसलिए मजा आता है? और आप सबको केक नहीं खिलाते?
7: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
8: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आता है? आप किस गाने पे डांस करते हो?
8: दीदी सारे गाने पे करते हैं, बहुत सारे गाने।
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
8: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
9: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता है?
10: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता है तो मजा आता ही है?
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना, हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
7: नहीं।
0: नहीं?
7: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
7: नहीं।
0: कभी नहीं लगा? युग?
11: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
11: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको? और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
11: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
11: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
7: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
10: नहीं लगता।
0: और आपको?
10: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
7: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। बाय बाय बच्चों।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए

बल्कि एक जीवन दर्शन है। कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये पंक्ति शिक्षक के महत्व को सदियों से रेखांकित करती आई है। जब कोई बच्चा पहली बार अक्षर लिखना सीखता है, जीवन के मूल्य समझता है, अपने सपनों को पहचानता है, वहां एक शिक्षक होता है। आज के बदलते युग में जहां तकनीक प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ रहा है, वहां शिक्षक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें सम्मान हो, आत्मसंतोष हो, समाज सेवा का भाव हो और स्थिर भविष्य हो, तो शिक्षक या अध्यापक बनना एक अत्यंत श्रेष्ठ विकल्प है साथियों। तो आइए आज हम लोग इसी विषय को लेकर बातें करेंगे, अध्यापक या शिक्षक कैसे बने और कौन होता है। तो साथियों, शिक्षक कौन होता है, अगर इस बात पे मैं जोर दूं, तो यहाँ पर शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि सोचने की शक्ति, नैतिक मूल्य, आत्मविश्वास, जीवन कौशल का निर्माण करता है। एक अच्छा शिक्षक वो है जो छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानता है, उसे सही दिशा देता है और जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा बनता है। तो ये है शिक्षक। तो आइए विस्तार से जानते हैं थोड़ी देर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, बातें कर रहे हैं हम लोग शिक्षक या अध्यापक के बारे में, कैसे बने। शिक्षण क्षेत्र का महत्व भारत जैसे देश में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव माना गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 ने शिक्षक को ज्ञानदाता से आगे बढ़कर मार्गदर्शक मेंटोर की भूमिका दी है। साथियों, आज शिक्षक कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, ई लर्निंग का हिस्सा भी बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर ज्ञान बांटा जा रहा है। साथियों, शिक्षक बनने के लिए मुख्य प्रकार है। शिक्षक क्षेत्र में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक। बच्चों की नींव मजबूत करते हैं आप। धैर्य, प्रेम और समझ बहुत जरूरी है इस कार्य में। तो ये हो गया एक प्राथमिक शिक्षक की बातें। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक, सेकेंडरी टीचर, कक्षा 6 से 10 तक। विषय विशेषज्ञता आवश्यक है। यहाँ पर छात्रों की सोच विकसित करना जरूरी है। तो ये हो गया सेकेंडरी टीचर, माध्यमिक शिक्षक। और फिर आता है तीसरा स्तर, जहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक, सीनियर सेकेंडरी टीचर, जो कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाती है। विषय की गहराई से जानकारी और करियर मार्गदर्शन की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद एक और स्तर आता है जो 14 नंबर का है, कॉलेज विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट शोध स्तर पर काम होता है, एकेडमिक प्रतिष्ठा यहाँ पर बहुत जरूरी है। शोध लेखन और नवाचार की बातें यहाँ पर बच्चों को बताई जाती है। पांचवा स्तर है कोचिंग प्रतियोगी परीक्षा शिक्षक। यहाँ पर आपको आती है बातें, जैसे कि हम लोग बच्चे UPSC, SSC, बैंकिंग, NET, नीट या फिर जी, इन सभी शिक्षा को या यहाँ पर कोचिंग करने वाले का उपयोग होता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा शिक्षक बोला जाता है या कोचिंग शिक्षक भी कहा जाता है। उच्च आय की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती है और प्रदर्शन आधारित पहचान बनती है। इसके बाद एक और स्तर आता है, जहां पर ऑनलाइन शिक्षक, जो अभी के समय की जरूरत है। ये डिजिटल ट्रेनर के रूप में, एडुटेक ट्रेनर के रूप में पहचान मिलती है। तो ये स्तर में डिजिटल युग का उभरता विकल्प है। ये घर बैठे पढ़ाने का अवसर और वैश्विक पहुंच भी है। देखिए, घर बैठे भी अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपको विश्व भर के बच्चे जुड़ जाते हैं। तो आप देखेंगे आज ये जो ट्रेंड है वो बहुत पॉपुलर भी है, और इसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे खान सर, है ना, खान सर है, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाकर बच्चों के जीवन को संवारा है। अब खान सर की बात ले लें आप, उनका नाम सिर्फ डालने से कितने सारे वीडियोस, और उनके वीडियो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि आप और हम भी जरूर देखते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बांटने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही ग्राउंड रूट से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और उन्होंने आज इतना नाम कमाया, एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं, और वो समाज सेवा के लिए भी अभी कदम बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक सुंदर हॉस्पिटल बनाकर लोगों की सेवा अर्थ वहां पर बनाया है, जिसमें सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध भी की है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो पॉपुलर नाम है वो बताया है। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षक बनने का, ट्रेनर बनने का एक बहुत ही सुंदर जो है विकल्प आज के इस जमाने में हम सभी को मिलता है। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे शिक्षक बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, शिक्षा और स्किल कौन से लगते हैं। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं एक शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। एक शिक्षक सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि एक सम्मान है, एक प्रतिभा है और एक प्रतिष्ठा है साथियों। तो आइए, शिक्षक बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरतें होती है, तो साथियों नोट कीजिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए 12वीं पास होकर डी ए या बी ए या बी टी सी करना बहुत जरूरी है। सी टी ई टी भी और स्टेट टी ई टी कर सकते हैं। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक, अगर आपको बनना है तो बी ए बी एस सी बी कॉम पढ़ाई हो, आपकी डिग्री हो आपके पास, और उसके बाद आप बी एड लेकर आप अपनी शिक्षक बनने की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी टी ई टी स्टेट एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तीसरा विकल्प है लेक्चरर, पीजीटी जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको जरूरी है इसमें, और बीएड से ही आप आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ में एनईटी एसईटी कॉलेज के लिए आपको जरूर करना होता है। उसके बाद आता है प्रोफेसर, और प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक पीएचडी का डिग्री आपके पास हो, शोध अनुभव आपके पास हो, रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड हो, प्रकाशन आपने किया हो, तो आप इस प्रोफेसर के करियर को क्रैक कर सकते हैं। साथियों इन सारी डिग्रियों के अलावा भी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है विषय का चयन हो, आवश्यक डिग्री प्राप्त करना। तीसरा है पात्रता परीक्षा, सीटीईटी एनईटी आदि ये जरूरी है। सरकारी निजी संस्था में आवेदन कर सकते हैं, और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा भी होती है और मुख्य इंटरव्यू भी होता है, तो इन दोनों की प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन होता है। साथियों इसके अलावा एक शिक्षक को शिक्षक के लिए आवश्यक कौशल्स भी है, जैसे कि स्किल्स की बात। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आपको संवाद कौशल कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। दूसरा है धैर्य और सहानुभूति, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा नेतृत्व क्षमता, नवाचार और संरचनात्मकता आपके अंदर हो, डिजिटल साक्षरता हो, निरंतर सीखने की भावना भी आपके अंदर हो। तो ये सारी चीजें आपके शिक्षक बनने की स्किल्स है जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो साथियों थोड़ी देर में बातें करते हैं आपके पास कैसी जिम्मेवारियां होती हैं और शिक्षक बनने के फायदे भी क्या है। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और बात कर रहे थे हम लोग शिक्षक या अध्यापक बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। पढ़ाई और स्किल्स, दोनों चीजें मैंने बता दी है। और आप किस तरह का टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या फिर कॉलेज के लेक्चरर, या फिर आप ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब बात करते हैं जिम्मेवारी की, क्योंकि किसी औहदे पर आप पहुंचते तो आपकी जिम्मेवारी होती है। एक शिक्षक बनते हो तो आपके पास जिम्मेवारी होती है पाठ योजना बनाना, छात्रों को पढ़ाना, मूल्यांकन और परीक्षा, अभिभावकों से संवाद, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, छात्रों का करियर मार्गदर्शन करना। तो ये सारी चीजें जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो आप इन चीजों को अगर करते हैं तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। साथियों, शिक्षक बनने के फायदे क्या क्या है उस पर बात करते हैं एक नजर। सम्मान और प्रतिष्ठा आपको मिलता है, समाज में शिक्षक को हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, आत्मिक संतोष यहाँ पर मिलता है। जब कोई छात्र सफल होता है तो शिक्षक को गर्व महसूस होता है। तीसरा है नौकरी की स्थिरता, विशेषकर सरकारी शिक्षक के लिए। काम जीवन संतुलन, यानी अन्य प्रोफेशन की तुलना में यह बहुत बेहतर है, जहां पर एक सीमित समय आप बच्चों को देते हैं और उसके बाद आप फ्री भी होते हैं। और आखिरी बात होती है लगातार सीखने का अवसर मिलता है, ज्ञान कभी रुकता नहीं है, ज्ञान सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है ना, ज्ञान सुना जाता है और ज्ञान लिखा जाता है। तो ये लगातार सीखने का अवसर आपके मन में बनी रहे। शिक्षक बनने के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं साथियों, जैसे कि सीमित संसाधन। कई बार आप अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो वहां पर सीमित संसाधन होते हैं, छात्रों की विविध पृष्ठभूमि होती है, कई छात्र अच्छे होते हैं, कई छात्र गरीब होते हैं, तो ये सारी चीजें भी चैलेंजेस में आते हैं। प्रशासनिक दबाव भी रहता है कि आप बच्चों का एडमिशन कराओ और पढ़ाओ। आरंभिक वेतन कम हो सकता है, बदलती तकनीक के साथ तालमेल रखना होता है। कई बार आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं जहां पर टेक्निक ही नहीं है, फिर भी आपको उन चीजों को करना है, तो थोड़ी सी सूझबूझ के साथ चुनौतियों को सामना करते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है। लेकिन समर्पण और सीखने की इच्छा से चुनौतियां अवसर में तब्दील होती हैं, इसलिए बिना डरे चुनौतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़े। शिक्षकों के लिए वेतन और राय, इस पर बात करते हैं साथियों। सरकारी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में अगर पढ़ाते हैं 25,000 से 40,000 पे मिलता है, माध्यमिक स्तर पर आप अगर पढ़ाते हैं तो 35,000 से 50,000 है, और आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो 60 से 1.5 लाख तक का आपका पैकेज बनता है। निजी कोचिंग का अगर बात करें तो अनुभव और प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और ऑनलाइन शिक्षक से असीम संभावनाएं भी हैं। जैसे मैंने बताया आपको, खान सर जैसे लोग काफी पैसे कमाते भी हैं, लेकिन उनकी खान सर की एक बात बहुत अच्छी है कि वो बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं, इसके वजह से दूसरे शिक्षकों के लिए वो बड़ी जो है एक मुश्किल का काम बन जाता है। कई बार उनके इसके लिए भी दबाव बना रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रख के इन चीजों को किया है, और जो बहुत दूर दराज के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते उनके लिए भी वो काम करते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे, शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं क्या है। साथियों, नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा, AI के साथ हाइब्रिड टीचिंग, शिक्षा का भविष्य उज्जवल और बहुत ही विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में इस तरह की चीजें हमको आज भी देखने को मिलता है, और आगे और बढ़िया तरीके से ये चीजें हमारे बीच में आएगी। शिक्षक बनना क्यों चुने, ये भी अगर आपके मन में सवाल है और ये सवाल का जवाब हो तभी आप टीचर बने, अदरवाइज आप दूसरा करियर चुन सकते हैं। साथियों, शिक्षक बनना क्यों है इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, सम्मानजनक और स्थायी करियर चाहते हैं, तो शिक्षक बनना आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है। साथियों, निष्कर्ष यही है कि शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ये करियर केवल आज की नौकरी नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। एक अच्छा शिक्षक राष्ट्र का सच्चा निर्माता होता है। तो साथियों, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक अच्छे टीचर बने। टीचर में अलग अलग प्रोफेशन है, वो भी मैंने बताया आपको। आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ाने के लिए प्रोफेसर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं और फिर रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो बिना सोचे लेकिन अपने आप से जरूर बात कीजिए, अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, आपने अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, सम्मानजनक और स्थायी करियर चाहते हैं, तो आप शिक्षक जरूर बने। इन सभी सवालों का जवाब हाँ में आता है आपके मन से तो आपके लिए ये करियर है। तो फिर आप पीछे मुड़ के मत देखिए, इनके योग्यताओं को अपने अंदर समाइए और एक अच्छा टीचर बनकर समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए करियर के लिए। तब तक आप बने रहिए, अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए ट्रेड के साथ। आप सुन रहे हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। आइए आज के इस ख्वाबों को सफर यादगार बनाते हैं आपके साथ मिलकर। और हमारे साथ खास मेहमान विभा जी भी है जो आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गीतों का कलेक्शन। तो आइए विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में आज के इस एपिसोड में।
2: थैंक यू सनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरा साथ देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगी और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा, मैं आज अक्षर पे फिर से पुराने गाने और बड़े बड़े खूबसूरत दिल लुभाने वाले गाने लेके आई हूँ। और जो सबसे पहला गाना मेरे पास है वो मस्ती भरा है और थोड़ी पंजाबी टोन वाला है गाना। रेशमी सलवार कुर्ता जाए रूप कहा ना जाए नखरे वाले, तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसमें नाच है, मस्ती है और पंजाबी पूरा सेट एटमॉस्फेयर ऐसा पंजाबी सेट बनाया गया है इसको फिल्माते हुए। पंजाबी ड्रेस है और नजाकत और नखरों का जिक्र हो रहा है इस गाने में।
1: जी जी,
2: कुल मिला के आपको बहुत मजा आने वाला है इसको सुनते।
1: वाह क्या बात है, चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद करा। नया दौर इस एल्बम का जो 1957 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है उस समय बहुत ही कमाल का पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन और अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए, इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल बताई गई है। उस जमाने में किसानों का दौर हुआ करता था और फिर नई टेक्नोलॉजी आई, गाड़ियां बसेस वगैरह शुरू हो गए, तो फिर किसान जो तांगे वगैरह चलाते थे उनकी रोजी रोटी में खतरा होने लगता है बस की आने से। तो यहाँ पर ये जो है चीजें बताई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है इस फिल्म का ये जो मस्ती भरा है, जैसे विभा जी ने बताया है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे इस गाने को। अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, हम लोग ख्वाबों के सफर में। कभी कभी रिश्तों में जो है आंसू भी आते हैं तो मुस्कुराहट भी होती है, और इसके लिए कहते हैं कि जीवन में आंसू और मुस्कुराहटों का बड़ा अच्छा कनेक्शन भी है। कई बार आंसू जो है खुशी के भी निकलते हैं तो दुख के भी निकलते हैं, इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है आपको तो आंखों से जो प्रेम के आंसू झरते हैं वो भी हमें कुछ जो है यादें बना के रखती हैं, और बहुत दिनों के बाद एक खुशी की जो एहसास है वो हम कर पाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, आंसू जानते हैं कौन अपना है तभी अपनों के आगे निकलते हैं, और मुस्कुराहट का क्या है, गैरों से भी वफा कर लेती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खाबू के सफर को आप सुनाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: रिम जिम के गीत सावन गाए,
1: हाँ हाँ,
2: मुर्गे भी दिन रातों में, ये मेरा अगला गाना है।
1: बहुत ही खूबसूरत
2: रोमांटिक गाना है और बहुत ही खूबसूरती से फरमाया गया। राजेंद्र कुमार और बबीता का गाना है। इसमें शौकी है, जैसा कि इसको आप गाते ही आपके अंदर से एक ऐसा भाव उठने लगता है कि जैसे आप आंखें बंद करेंगे और ऐसे रिमझिम की बरसात और आपको ऐसा एटमोस्फेयर आपके अंदर से ही तो आप एक पिक्चराइज कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना है।
1: जी जी जी, अनजाना इस एल्बम का ये गाना आपने याद करा, 1969 का, बबीता, राजेंद्र कुमार, प्राण, प्रेम चोपड़ा, निरुपमा और रॉय पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये, और इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने याद कराया है जो मोहन कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना है। तो आइए सीधे चलते हैं गाने की तरफ, फिर इसके बाद बात करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अनजान, इस फिल्म का जो एक गैरेज मैकेनिक पर पिक्चराइज किया गया था। इसमें जो कलाकार है राजेंद्र कुमार, वो एक गैरेज के मैकेनिक है और वो किसी अमीर लड़की से प्यार करता है, लेकिन अमीर लड़की के माता पिता उससे प्यार करने नहीं देते, उससे शादी करने से इनकार करते। तो वहां पर जो है क्लाइमेक्स बताया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को हम लोग पूरी तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुनाया आपको। और कई बार स्वच्छता की बात चलती है तो स्वच्छता पर किसी ने एक मैसेज लिख के भेजा है 7219190055 पे, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। अभिभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
2: अगला गाना जैसे मेरे पास है रिमझिम के तरह लेके आई बरसात, इसमें भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप बरसात का रियल मजा लेने चाहते हैं तो महलों में घरों के अंदर ना बैठे, अगर आप बाहर आके सड़क पे निकल जाएं या अपनी छत पे खड़े हो जाएं तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसमें टिपटिपाने की आवाज और जो बारिश के बरसती जो बूंदे हैं उसकी आवाज, उसमें आप कितना एंजॉय करते हैं ये आप गाने में महसूस करते हैं, रिमझिम के तरह आने लेके आई बरसात।
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये काला बाजार जो 1960 में फिल्म आई थी, इसे देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था और देवानंद के भाई साहब जो विजय आनंद साहब है उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और देवानंद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो इस फिल्म के कलाकार देवानंद तो थे ही और साथ में वहीदा रहमान, मोहम्मद रफी, चेतन आनंद ने भी इसमें कुछ झलकियां इनके देखने को मिलती है। तो आइए, इस फिल्म का ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत गाना है, भी आप सुनने वाले हैं। शैलेंद्र साहब का लिखा, गीता दत्त, मोहम्मद रफी साहब का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा। अगला गाना आपके लिए काला बाजार से, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जिम जिम के तराने लेके आई बरसात, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गाना विभा जी आपने सुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही क्या कहते हैं उत्साह और उमंग के साथ उस गाने को सुनकर जो है एक नई खुशी फील कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अभी तो जो पिछला गाना ही सुन के मेरे को मुंह में पानी आ रहा है कि इसको ये मालपुड़े और पकोड़े खाने का मन होता है जब रिमझिम की बरसात होती है और इंसान भावुक होते हैं ऐसे
1: मौसम में और
2: इसमें उमंग पैदा होती है। तो अगला गाना उमंग से भरा है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। तो ये भी बहुत अच्छा गाना है और प्यार का इजहार किया जा रहा है इस गाने में और नेचर को इसमें महसूस किया जा रहा है और बोलों के साथ खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। आप बहुत एंजॉय करेंगे इस गाने को।
1: जी जी जी, मेरे सनम इस एल्बम का ये गीत है, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ओपी नैयर का संगीत से सजा ये गाना है और बहुत ही भावुक गाना है और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए दिल से इस गाने को सुनिए, फिर मिलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मेरे सनम इस एल्बम का आपने गाना सुना, आशा पारेख, विश्वजीत, मुमताज, प्राण, राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज किया गया था। मेरे सनम का गाना आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और गाना भी उतना ही खूबसूरत था जिसे आपने अभी सुना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास ये भक्ति गीत है, रोम रोम में बसने वाले राम। जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। ये पूरी भक्ति भाव से गाया गया गाना है। इस गाने में पूरी श्रद्धा है, आप इस गाने को इस भक्ति के गीत में आप जैसे पूरे उसमें बह जाते हैं। तेरे चरणों की धूल जो पाए वो कंकर हीरा बन जाए। इसके बोल बहुत मीठे और प्यारे हैं, आप इसको हमारे श्रोता इसको बहुत
1: एंजॉय करें। जी जी जो है, ये एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आई थी 1968 में, राम महेश्वरी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इसका नाम था नील कमल। और ये जो फिल्म है इसमें एक कहानी जो है थोड़ी सी अलग बताई गई है। सीता नाम की एक लड़की होती है जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है और फिर इसका कारण जब पूछा जाता है उन्हें तो बहुत जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है वो उसे पिछले जन्म की याद आती रहती है और पिछले जन्म में उसकी जो प्रेमी होते हैं उसकी याद में वो रात में चलने लगती है। तो इस तरह की कहानी इसमें बताया गया है, नील कमल। शायद आपने देखी होगी तो आपको कहानी पूरी याद आ गई होगी। तो चलिए, इस फिल्म का जो आपने गीत याद कराया विभा जी, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं इस गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो पर मेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। वैसे इंसान के जीवन में काफी चीजें जो है, अगर हम लोग कहते हैं कि जितना सोचो जितना समझो उतनी नई बातें इसमें आ जाती हैं। इंसान को पूरी तरह से अगर एक दुकान की तरह देखे तो उसमें जुबान उसका ताला है, और जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ साथियों, जब भी हम लोग बोलते हैं हमारे बोल लोगों को बता देता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरह का है। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है बोलो तो तोल के बोलो, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बोलो तो बस मीठे बोल ही बोलो। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
2: जी मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से सुन रही हूँ। जैसा आपने कहा बोलो तो मीठे बोलो, बड़े सोच के बोलो, और ये इसमें बहुत सच्चाई है। ये बोल ही है जो हमारा दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं, और बोल ही है जो हमेशा याद रह जाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, पर्सनालिटी बदल जाती है, जो हमारे बोल है ये कहीं ना कहीं जाके अंदर छू जाते हैं कहीं। तो अगला गाना में मस्ती भरा थोड़ा रोमांटिक गाना है, थोड़ा नहीं खूब रोमांस से भरा हुआ ये गाना इसी से फिल्माया गया है। रुख तेरा मस्ताना प्यार मेरा ना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
1: चलिए रूप मस्ताना तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया हुआ बहुत ही पॉपुलर गाना है आराधना, इस एल्बम का है। और इस फिल्म की कहानी बड़ी ट्रेजेडी वाली बताई गई है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी को बताया गया है, और राजेश खन्ना हवाई जहाज चलाते हैं, आर्मी ऑफिसर है, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो शर्मिला टैगोर अकेली रह जाती है, और फिर उसके साथ जो कहानी बनती है अपने बेटे को बड़ा करने का और उसे आर्मी ऑफिसर बनाने का जो सपना उन लोगों ने देखा था प्रेम कहानी में, तो उसे सच बनाने में उनकी पूरी तपस्या लग जाती है। कई मुश्किलें आती हैं, सारी मुश्किलें, इवन उन्हें दो बार जेल जाना पड़ता है, और दो बार जेल जाकर भी वो अपने बेटे को बनाती है आर्मी ऑफिसर, और बाद में उसकी आराधना जो है सफल हो जाती है। और उसके कहानी में लास्ट में एंडिंग बहुत अच्छी तरह से बताई गई, शर्मिला टैगोर जो है अपने बेटे को खुद अपने हाथों से मेडल पहनाती है उसके आर्मी में अचीवमेंट के लिए। तो कहानी को बड़ा ही सुंदर ढंग से फिरोया गया है। पूरी जो फिल्म है शर्मिला टैगोर पर ही पिक्चराइज, आइकॉन सेंटर उन पे ही ये फिल्म बनी है। तो आइए इस फिल्म का जो गीत आपने याद कराया है इस गाने को सुनते हैं। बहुत ही मस्ती भरा गीत है, जैसे विभा जी ने कहा। आप सुना है वीडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभा जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और ख्वाबों के सफर में मस्ती भरा गीत आपने सुना। और कहते हैं ये वो चीज है जो हमने मुफ्त में मिलती है, वक्त, दोस्त और रिश्ते, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: अगला गाना मेरे पास है, जैसे कि आपने कहा कि जब ये खो जाते हैं ये रिश्ते या दोस्त, तो हम उनको ढूंढते हैं और ये भी अपने रूठे हुए दोस्त को ही मना रहे हैं। राज कपूर कह रहे हैं, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, नजरों में तेरे में बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मदद का। तो ये नशे में चूर है, हाथ में शराब की बॉटल है और साथ में मूतन को मनाते हुए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, आ प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा।
1: जी जी जी, ये गीत आपने याद कराया है, कन्हैया इस एल्बम से है जो 1957 में या 59 में रिलीज हुई थी। और कहानी बड़ी सुंदर है, कन्हैया नाम का व्यक्ति जो है एक फेमस व्यक्ति है और बहुत ही मनचला व्यक्ति है, लेकिन इस नाम के प्यार में एक हीरोइन पड़ जाती है और जब प्यार करने लगती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है, उसके पहले उन्हें पता चल जाता है कि व्यक्ति नशे में है और नशा करता है, तब उसकी जो प्यार की कहानी है पूरी तरह से हवे की तरह खत्म हो जाती है, हवे में उड़ता हुआ प्यार नजर आता है। तो ऐसी कहानी यहाँ पर बताई गई है, फिर बाद में एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। तो चले, इस फिल्म की जो कलाकार है वो है राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मदन पुरी इस फिल्म में काम किया है। तो आशा करता हूँ आपने फिल्म देखा हो तो बहुत ही एंजॉय करेंगे। लेकिन अब इस गाने की तरफ चलते हैं, ये मस्ती भरा गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है जो रुक जाओ जाने वाली रुक जा, इस तरह के बोल है। शैलेंद्र साहब ने इसे लिखा है, मुकेश साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं विभा जी, थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं। और कहते हैं सबको पता है कि मौत आनी है एक दिन, फिर भी बेखबर सब यूं ही जिए जा रहे हैं। औरों को तो नसीहत देते हैं खुश रहने की, और खुद है कि लहू के घूंट पिए जा रहे हैं। जी,
2: मेरा ये अगला जो गाना है ये भी जिंदगी की सच्चाइयों पे ही है। रिश्तों के सारे मंजिल चुपचाप देखता, ये जिंदगी की सच्चाई पे ये गीत है। कहीं बहुत प्यार है तो कहीं खंजर भी है, बस इसी सच्चाई का रूप को बयान करते हुए ये गीत गाया गया है। वो रह गुजर जो मंजिल की इब्तिदा थी, उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हूँ।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद कराया है। और ये गजल जो है कुछ दिन ने कहा इस एल्बम से है। और विभा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर, बहुत ही खूबसूरत गाने आपने आज के इस एपिसोड में सुनाए। और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही एंजॉय किया होगा उन्होंने आज के इस एपिसोड को। और कहते हैं कि रूठे हुए अपनों को मना लूंगा एक दिन, रूठे हुए अपनों को मना लूंगा एक दिन, दिल का घर फिर से बसा लूंगा एक दिन। लगने लगे जहां से हर मंजर मेरा मुझे, ख्वाबों का वो जहां बना लूंगा एक दिन। अभी तो शुरुआत हुई है इस सफर के, बेरंग जिंदगी में रंग सजा लूंगा एक दिन। तो थैंक यू सो मच विभा जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत खूबसूरत गाने सुनाने के लिए। और हमारे सभी श्रोताओं को जाते जाते हम लोग रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ मैं, ये गजल आप सबको सुना रहे हैं, आप सबके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमागनी, खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहेत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जीवन के रंग अनेक,
1: जिसमें होगी बातें
2: कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर,
1: और कभी कभी बातें होगी
2: छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर।

0: रेडियो पुडेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ।

0: हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स की इन दिनों हम बात कर रहे हैं। देख रहे थे कि किस तरह से खुशी कभी भी छूमंतर हो जाती थी, लेकिन अब जब अपने पर काम करना शुरू किया और बहुत सारे एस्पेक्ट समझे, अब समझ में आया कि वो खुशी जो मेरे अपने ही अंदर है, ना मुझे उसे कहीं खोजना है, ना कहीं तलाशना है, ना बाहर ढूंढना है, ना अंदर ढूंढना है, बल्कि वो है। वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं हमेशा रह सकती हूँ। हैप्पीनेस, पीस, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में रहना, इस सिचुएशन में, इस स्टेबिलिटी में रहना कैसे संभव है, ये हमने समझा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा राजयोग का, मेडिटेशन का। आज अपनी पहचान के बाद कुछ और बातें जानते हैं कि किस तरह से उस पहचान को लगातार अपने साथ, उस याद को लगातार अपने साथ कायम रख सकते हैं कि मैं कौन हूँ। इस बात को हम हमेशा याद रख पाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ ये बात पता चले कि मैं कौन हूँ, वो चैतन्य शक्ति जो कि मास्टर हूँ इस पूरे शरीर की, अमेजिंग ना? इट एक्चुअली जस्ट गिव्स मी अ वेरी डिफरेंट फील अबाउट माई सेल्फ
1: एंड दिस इज पावर। You know, that's why we call it self-empowerment, self-motivation, self-confidence. बहुत सारे हमारे यूथ बच्चे बार बार ये कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये पतेगा सेल्फ कौन है। सेल्फ का आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्डअप हो जाता। इसलिए जहां भी सेल्फ वर्ड आता तो सबसे पहले मैं कौन हूँ वो पहचानना, और ये जब मैं की पहचान मिली तो मैं से रिश्ता भी जुड़ना लग गया। यू नो, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई इट्स मेडिटेशन इज फर्स्ट रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। अपना ध्यान रखना, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, आई एम अ प्योर बींग, पीसफुल बींग, सी हाउ इट फील्स। और ये एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में होने वाली चीज नहीं है। दिस टेक्स टाइम। जब हम सेंटर पर आते तो हमें रोज वो प्रोसेस होता है याद दिलाने का,
0: जो आपने कहा था कि याददाश्त कहीं गुमी हुई है।
1: अब बिना यहाँ आए और बिना रोज स्टडी किए मुझे दो चार दिन में वो बात भूल जाती है, क्योंकि फिर वही एनवायरमेंट में जहाँ सब लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, मेरा अपना संस्कार तो है ही बहुत पक्का, तो अगेन आई गो इनटू दैट। लेकिन रोज आना सेंटर पे वो याद दिलाने का प्रोसेस बनता है, फिर वो याद धीरे धीरे नेचुरल होती जाती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एवरी डे। इसीलिए रोज हम जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बातें रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं, उसका फोकस ये होता है रोज मैं कौन वो याद रखना और मेरी क्वालिटीज क्या। और फिर जब ये याद आ जाता तो मैं किसका, हु इज ही हुम आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। क्योंकि इट्स लाइक मैं बैटरी हूँ लेकिन मेरी पावर आज थोड़ी कम हो चुकी है, देन आई कनेक्ट टू द पावर हाउस। देखो, जो हमने पहले मेडिटेशंस की बात की, या तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है, मंत्र जाप है, थॉटलेसनेस है सारा, या जो कुछ चक्र पर भी फोकस करते, सब लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? मैं खुद पर फोकस कर रही हूँ। तो इट इज लाइक अ डिस्चार्ज्ड बैटरी ट्राइंग टू चार्ज इट्सेल्फ, जो कि वो अचीव करते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा और रिजल्ट उतनी नहीं। तो फिर इसलिए कहते हैं हमें एक घंटा रोज करना, दो घंटा रोज करना, क्योंकि डिस्चार्ज स्थिति में खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक डिस्चार्ज बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो बैटरी डजंट हैव टू डू मच, सिर्फ बैटरी को जोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि कनेक्शन
0: स्ट्रांग हो,
1: ठीक है। लेकिन लगे कि जुड़ा हुआ है लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो सालों साल भी ऐसे रखेंगे तो वो चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन कनेक्शन राइट है, चार्जिंग होनी ही होनी है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए अपनी पहचान के बाद हम उनकी पहचान लेते कि परमात्मा कौन है, क्योंकि आज परमात्मा के बारे में भी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इतने सारे डाउट्स हैं कि कई बार फिर लगता है कि पता नहीं
0: है भी कि नहीं है,
1: है भी कि नहीं। तो जिनके एग्जिस्टेंस पर ही डाउट है तो उनके साथ कनेक्शन जुड़ना बहुत मुश्किल है। अब जब हमने अपने को बॉडी समझा, फिजिकल मैटर समझा, तब हमने समझा मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल ही होगा। यू नो, ये एक गलती से फिर अगली गलती हुई कि मैं फिजिकल तो मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल। तब हमने परमात्मा को कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब समझ में आया कि आई एम जस्ट एनर्जी, प्योर कॉन्शियंट बींग, तो मेरा पिता कौन, तो देन ही इज ऑल्सो अनदर कॉन्शियंट बींग। और इसलिए हम कहते हैं आई एम अ सोल, चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल एनर्जी एंड ही इज द सुपर एनर्जी. अब सुपर किस फॉर्म में, कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो ही इज द ओशन ऑफ दैट पीस. ना के कि मैं छोटी सी आत्मा हूँ और वो बड़ी आत्मा है
0: और मैंने उसमें समा जाना है. यू नो अगेन दिस इज अ मेजर बिलीफ सिस्टम विच वी एक्चुअली नीड टू सी कि मैं अल्टीमेटली उसी में समा जाऊंगी.
1: ये बहुत सारी हैं, पर वो हमें धीरे धीरे और क्लैरिफिकेशन इस पर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन शायद उन पर कभी
0: रिफ्लेक्शन
1: नहीं किया. यू नो सुन लिया और तुरंत ऐसे स्वीकार किया, और जो भी हमने सुना उसके पीछे एक एसेंस था, उसके पीछे एक मीनिंग था, लेकिन मीनिंग नहीं पकड़ा. जैसे मैं परमात्मा में समा जाऊं, एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि मैं इतना याद करूं उनको, इतने उनके वो प्यार में लीन हो जाऊं कि जैसे कि मैं उनकी याद में समा जाऊं. लेकिन हमने हर चीज फिजिकल देखनी थी ना, तो मैं उनमें समा जाऊं मतलब क्या कि मैं उनमें समा जाऊं,
0: फिजिकली मैं उनमें समर्ज हो जाऊं.
1: यस, बिकॉज एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस. जैसे ही आप सोल कॉन्शियस है और आप ये महावाक्य सुनेंगे कि आप मैं परमात्मा में समा जाऊं, तो विल बी वेरी क्लियर कि समा जाना मतलब प्यार में समा जाना, याद में समा जाना. लेकिन बॉडी कॉन्शियस है तो मैं समा जाऊं मतलब मेरी एंटिटी ही. आप देखो अगर मैं समा जाऊं, वी आर सेइंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जहां मैं किसी चीज के अंदर समा गई तो मेरी एंटिटी, मेरी एग्जिस्टेंस फिनिश हो गई. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इसको जो कुछ भी आज दिन तक पढ़ा है सब में मीनिंग है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर उसके मीनिंग को समझना है. जैसे हम किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं तो कहते हैं ये तो उन्हीं में खोए हुए हैं. नहीं कहते. जैसे इफ आई सी यू कि आप किसी की याद में बैठे, मैंने कहा ये ना उन्हीं के उसमें खोई हुई है. लेकिन आप थोड़ी उसके अंदर समा गए.
0: इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ, कि प्रेम की भी पराकाष्ठा यही कही जाती है कि खुद को हम समर्पित कर दें, खुद को भूल जाएं और उसको. हाँ,
1: लेकिन विद व्हाट, विद थॉट्स एंड फीलिंग्स ना, नॉट के एंटिटी ही फिनिश हो जाए. तो इसलिए परमात्मा के बारे में हमने जितना भी आज दिन तक पढ़ा था उसके पीछे एक एसेंस है, लेकिन शायद उसको हमने उतना क्लैरिटी से नहीं स्टडी किया. तो अगली बार जो भी सुने या पढ़े उसको थोड़ा गहराई से मनन भी करे. तो राजयोग में परमात्मा ही डायरेक्ट आकर जब हमें खुद अपना परिचय देते हैं, क्योंकि आज दिन तक हमने सुना कि एक वो समय आएगा व्हेन ही विल हैव टू कम हिमसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. इनफ वीव हैड दैट everyone else has introduced him. So when everyone else introduced him, they were right, but yet they were little different. And kyun wo thode thode alag the? Kyunki wo har ek apne perspective se, apne rishte ke anubhav se suna rahe the. Lekin uska direct aur accurate parichay kaun dega? Jab Parmatma khud aakar wo denge. And har scripture mein, chahe wo Shrimad Bhagavad Gita hai, Bible, Quran, every scripture we have read and heard, कि एक ऐसा समय आएगा when he himself will have to come. And वो समय होगा जब unrighteousness, irreligiousness is at its peak. तो we need to ask ourselves, क्या ये वो समय हो सकता है?
0: धर्म की पुनर्स्थापना की जो बात की है.
1: Yes, क्योंकि जब इतनी ग्लानी हो चुकी है, धर्म की ग्लानी पर उस सृष्टि पर आते हैं, तो शायद ये वही समय है. आई नीड टू आस्क माई सेल्फ. तो परमात्मा इस समय आकर अपना परिचय देते कि जैसे मैं आत्मा हूं तो वो भी आत्मा है, लेकिन परम आत्मा है क्योंकि वो उन क्वालिटीज में परम है, सुप्रीम है. वो परम धाम का रहने वाला है. परम धाम अर्थात इस सृष्टि से पार, स्पेस, यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड रीच, उसके बियॉन्ड जो हम आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं. आज भी देखो जब हम दर्द में होते हैं, दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं तो नजर कहाँ जाती है? ऊपर. क्लैरिटी नहीं है क्या है, लेकिन कुछ तो है, वो स्मृति है, तो उधर ध्यान जाता. तो परमात्मा हम सबको आकर पहले अपना परिचय देते कि मैं कौन आत्मा, फिर अपना परिचय देते कि परमात्मा कौन, घर का परिचय देते परम धाम का मैं रहवासी हूँ. उससे और भी बहुत सारी फिर क्लैरिटी आती, क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें? यू नो हम तो इतना कंफ्यूजन है. हमने कहा कि परमात्मा तो हर जगह है, हर एक के अंदर है. देखो इतना जब कंफ्यूजन हो जाएगा तो परमात्मा को याद करना बहुत डिफिकल्ट है. सो परमात्मा निराकार, इनकॉर्पोरियल, पॉइंट ऑफ लाइट, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आकर अपना नाम बताया कि उनका नाम है शिव. और जब शिव कहते, इट मीन्स पॉइंट, एंड शिव मीन्स पीस, एंड ही इज आवर फादर, सो हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं. तो शिव बाबा आकर खुद अपना परिचय देते, वो शांति के सागर हैं, प्योरिटी के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं. और हम में और उनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम सब आत्माएं शरीर लेते हैं और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते तो हमारी बैटरी डिप्लीट हो जाती, लेकिन वो परम आत्मा इस सृष्टि चक्र पर, इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, तो उनकी जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. और इसीलिए वो ही एक है जो हमें इस चक्र से फिर
0: बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो चक्र में नहीं होगा
1: वो ही
0: उसे ही सोल्यूशन भी पता होगा.
1: एब्सोल्युटली,
0: वी आर प्लेइंग अ गेम आल्सो,
1: या जो नहीं है उस गेम में
0: उसको उसको सब कुछ पता है कि कैसे है.
1: तो वो हमें चक्र का, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान समझाते और हमें इस साइकिल से फॉर कैसे हमने अपना पाठ बजाना है ये भी सिखाते. तो परमात्मा को जब हम पहचान लेते कि वो कौन है और उनका रोल क्या है, आज दिन तक परमात्मा के रोल पर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है. जब भी तकलीफ में है तो कहते भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर.
0: अच्छा, इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी से कि तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया. यू नो, कितनी बार हम अपने मतलब इस तरह से करते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए.
1: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिचुएशंस है मेरी, परमात्मा का रोल ये नहीं है कि आकर मेरी सिचुएशन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे सामने जो सिचुएशंस आई है वो तो मेरे ही एक्शंस का रिजल्ट है, जिसको हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट. लेकिन परमात्मा का रोल क्या है कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करूं, पावर हाउस से वो पावर लूं, अपने अंदर वो शक्ति भरूं और उस शक्ति से अपनी परिस्थिति को फेस करो. तो जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े तो इसलिए नहीं कि हे भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दे, लेकिन परमात्मा से वो शक्ति ले, वो भी मांगना नहीं कि हे भगवान मुझे शांति दे दे. पिता है तो पिता से बच्चे को मांगना थोड़ी पड़ता है, जो पिता का है वो बच्चे का है. अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी विल नॉट से ओ गॉड गिव मी पीस, ओ गॉड गिव मी लव. नो, आई द सोल एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ पीस. ये थॉट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली
0: यू विल फील दैट.
1: मैं कौन हूँ ये आंसर चाहिए था. तो मैं कौन हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस एंड रेजिडेंट ऑफ लैंड ऑफ पीस. मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर का बच्चा, शांति धाम का रहवासी. अब गुस्सा गुस्सा कहाँ से, क्योंकि हमारी सारा दिन जो पर्सनालिटी है वो किस बेसिस पर है. मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है. यू नो, कोई बहुत
0: रॉयल, बहुत बार हमारा बिहेवियर होता है. यस, यू नो,
1: आप कौन है. यू नो, जब कोई गलती भी हो जाए,
0: कितनी बार हम बोलते हैं आपको पता है कि मैं किसका बेटा हूँ.
1: और पेरेंट्स भी जैसे बच्चों को कहते ऐसे नहीं करना, आपको पता है आप किस खानदान के हो, आप किसके बेटे हो. तो आप किसके बच्चे हो ये जब स्मृति में आएगा तो पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाती. तो आज से ये स्मृति में रखना है, मैं कौन हूँ, आई एम अ प्योर सोल एंड चाइल्ड ऑफ दैट ओशन ऑफ प्योरिटी, चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम बीइंग. सारी दुनिया उनको याद करती है, क्यों, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है. मैं जो अपवित्र बन चुकी हूँ, डिप्लीट हो चुकी ना, आज दिन तक हम कहते आए कि पतित को पावन बनाने वाला, समझ में नहीं आया लेकिन कि पतित को पावन बनाना मतलब क्या, कि मैं आत्मा जो डिस्चार्ज हो चुकी हूँ, इम्प्योरिटीज जो मेरे अंदर आ चुके हैं, उस पावर हाउस से कनेक्ट होने से वो प्योरिटी मेरे अंदर फिर आ.
0: अच्छा, कितनी बार पता है हम अपने आप को जब समझ भी रहे होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, you know, मतलब कई बार चीजें हमें दिख रही होती हैं कि हमसे अच्छा नहीं हुआ, ये हमसे गलत हो गया है. अब पता तो चल नहीं रहा कि ठीक कैसे करना है, तो वी से कि ओके आई एम लाइक दिस, देयर इज नोबडी, यू नो, तो मेरे को कुछ मतलब मैं ऐसा ही रहूंगा. क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने उसको ठीक
1: करना कैसे है, वो नहीं पता. तो इसलिए राजयोग से जब हम ये बेसिक चीजें भी सीख लेते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना मुश्किल नहीं है. अब इस कनेक्शन को, अब एक रिलेशनशिप जुड़ गया है, अब इस रिलेशनशिप को क्या करना है, रोज यूज करना है. यूज करना इन द सेंस, जैसे ही उसको याद किया तो उसकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली मेरे. आप अभी भी देखो, आप किसी को याद करो, आप यहाँ बैठे अपने बच्चे को याद करो, तो वो प्यार, उसका एक्सपीरियंस आपको अभी हो जाएगा. आप किसी को याद करो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं है, अभी बैठे बैठे दर्द एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो यहाँ नहीं है, लेकिन सिर्फ याद, इसका मतलब याद के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस अनुभव को अभी क्रिएट करती, और अनुभव क्रिएट हुआ मतलब आपका संस्कार बनना शुरू हुआ। अभी आपने प्यार का अनुभव किया, आपका प्यार का संस्कार क्रिएट हुआ, आपने दर्द का अनुभव किया, आपने दर्द का संस्कार क्रिएट किया, अब आप पवित्रता के सागर को याद करते हैं, तो आपका संस्कार कौन सा क्रिएट होगा? प्योरिटी का। आप शांति के सागर को याद करते हैं, संस्कार क्रिएट हुआ शांति का। दिस इज मेडिटेशन, इट्स वेरी सिंपल,
0: बट वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट, यू नो, लाइक ये क्यों नहीं हो पाता? आई जस्ट, यू नो, अब मैंने एकदम से सडनली आपसे बात करते करते ये किया, कोशिश की, तो बच्चे को याद करना है तो वो एकदम से आ जाती है विजन, या जिसने मुझे थोड़ी पेन दी हो उसकी विजन भी एकदम से आके आप कर सकते हैं। जब आपने कहा कि हम शांति के उस सागर को, जिसको हम अभी तक ढूंढ रहे थे, हमारा पिता, आज पहचान मिली, उसको याद करने की कोशिश करो, इवन इफ परमधाम की भी बात करते, वो सस्टेन नहीं होता, वो ट्रांजिएंट हो जाता,
1: क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। अभी सोल कॉन्शियसनेस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। सी, इट्स अ टू वे थिंग, एक है कि ये कनेक्शन तब स्ट्रांग बनता जाएगा जब हम सोल कॉन्शियस है, लेकिन दूसरा है कनेक्शन जोड़ते जाएंगे तो सोल कॉन्शियस होना इजी होता जाएगा। सो वी स्टार्ट डूइंग बोथ द थिंग्स, कि सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें सारा दिन में, और समय निकालकर उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन,
0: और इसके साथ जो अटैचमेंट है उसे छोड़ते जाएंगे।
1: एक्चुअली छोड़ना नहीं पड़ेगा,
0: वो अपने आप हो जाएगा। ये
1: अपने आप, देखो मुझे ये नहीं याद करना है आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, ये नहीं याद रखना है, हाँ ये याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल। तो फिर ऑटोमेटिकली, अब डिटैचमेंट की भी जो हमने बात की, तो डिटैचमेंट क्या था? कुछ छोड़ नहीं देना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये मैं नहीं हूं। अटैचमेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज के साथ इतना जुड़ जाते कि उसी में मेरा अस्तित्व चला जाता एंड मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म, अब मैं आत्मा हूं, दिस इज डिटैचमेंट, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का रोल है, ये रिस्पॉन्स, ना दिस इज डिटैचमेंट। अब ये स्थिति में रहकर अगर यहाँ कोई हर्ट भी होता, जब मैं माँ हूं, सी, तो अगर बच्चा हर्ट होगा तो माँ हर्ट होगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ, दिस इज डिटैचमेंट। अब बच्चा अगर हर्ट होगा तो मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं हर्ट नहीं होंगी, और क्योंकि मैं नहीं होंगी
0: बच्चे को ऊपर लेकर जा
1: सकते हैं। इसलिए डिटैचमेंट फोर्सफुली करने जैसी चीज नहीं है, अगर यू नो कई बार
0: जबरदस्ती, जब ऐसे है तो उसको ऐसे खींचने की जरूरत नहीं,
1: वो डिटैचमेंट नहीं होगा, वो इनसेंसिटिविटी हो जाती है, वो जबरदस्ती का विड्रॉवल हो जाता है, वो नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स सोल कॉन्शियसनेस, हम सोल कॉन्शियस होते जाए, हम ईगो जो हमारा है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि ईगो क्या है? अटैचमेंट टू ऑल दीज इमेजेस। अब सोल कॉन्शियस इज ऑपोजिट ऑफ ईगो, यू नो, सेल्फ एस्टीम ऑपोजिट ऑफ ईगो। तो जितना सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे, ईगो खत्म होगा, ईगो खत्म हुआ तो सारे वाइसेस वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
0: सिस्टर शिवानी, एक मैं यहाँ बात पूछना चाहूंगी कि जब आपने कहा कि अटैचमेंट किसी भी पर्टिकुलर चीज से ना करके, तो अटैचमेंट कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर मैं सुप्रीम के साथ अटैचमेंट करती हूँ, वही वाली अटैचमेंट जिसकी मैं आदि हूँ, सो इज दैट ऑल्सो राइट?
1: या बिकॉज इन दैट देयर विल बी नो पेन। सी, अटैचमेंट वर्ड तब आ रहा था जहां हमने पहले भी देखा कि अटैचमेंट अगर किसी के साथ है तो प्यार है लेकिन हर्ट भी है, यू नो, क्योंकि उस आइडेंटिटी अपनी खो दी। लेकिन जब परमात्मा के साथ जो रिश्ता जुड़ता उसमें प्यार जुड़ता है। अटैचमेंट वर्ड हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ते में या कोई भी इंटरेक्शन में आपको हर्ट की अनुभूति नहीं होने
0: लेकिन वाली। मैं अपनी आइडेंटिटी उसमें भी खोता हूँ?
1: मैं खोऊंगी नहीं क्योंकि अटैचमेंट नहीं होने वाली है। सी, अटैचमेंट जब हो जाती है, वेयर यू लूज योर आइडेंटिटी इन टू समथिंग, तब आपको हर्ट होने, सी, एक्सपेक्टेशंस होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तब हर्ट होगा, लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ते में ना एक्सपेक्टेशंस जो आप रखेंगे, बट प्रोवाइडेड यू कीप द राइट अंडरस्टैंडिंग कि परमात्मा का रोल क्या है। हम ये कहें कि परमात्मा मुझे नौकरी दे दे, परमात्मा मेरे बिजनेस में प्रॉफिट करा दे, नो, विद नॉलेज कि परमात्मा का रोल है मुझे एम्पावर करना, फिर मेरा रोल है उस पावर के साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स को हैंडल करना,
0: यस, यू नो, एंड कहीं ना कहीं मुझे विजन, मेरी विजन को क्लियर करते जाना, विजडम लेकर मेरे को आगे बढ़ना है,
1: एंड आई विल बिकम वेरी क्लीन हियर, क्योंकि चार्जिंग होती जा रही है। फिर जो हमने बात की कि वैल्यूज पर चलने की ताकत चाहिए, आज वैल्यूज पता है लेकिन चलने की ताकत नहीं है, क्यों? पावर नहीं है, लेकिन परमात्मा से वो कनेक्शन जुड़ा, आत्मा शक्तिशाली बनी। आत्मा शक्तिशाली बनी, उसको किसी बात का डर नहीं लगता। डर नहीं लगता तो वैल्यूज पे चलना
0: आसान हो जाता, नेचुरल हो जाता है, बिकॉज दैट्स द राइट वे वी नीड टू डू, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट इट,
1: यू नो,
0: हम हमेशा चाहते थे ऐसे करना, लेकिन अब वो संभव हो पा रहा है। तो सचिवानी, हमने राजयोग की बात की, हमने इस पूरी श्रृंखला में खुशी की बात की है, जो कि हम हर बार कई बार सोचते भी हैं, लोग बोलते हैं कि जन्म से अधिकार है हमारा, लेकिन डेफिनेटली
1: जन्म से अधिकार है, क्योंकि हम आनंद के सागर के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट ओशन ऑफ ब्लिस। तो फिर जिसके बच्चे हैं तो जन्म से अधिकार
0: तो
1: है, खुशी है,
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो अब हमें इस पूरी श्रृंखला में चलते चलते ये भी समझ में आया कि वो है ही हमारे पास, हमारा अपना अपनी वैल्यू है, अपना संस्कार, अपना अनुभव है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट शिवानी कि हम किस तरह से परमात्मा को याद करके कैसे उनकी याद में बैठे और कैसे वो ताकत लें उनसे, कैसे
1: परमात्मा को याद करना वैसे ही होता जैसे किसी और को भी याद करते, सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये कि जब भी किसी और को याद करते तो फिजिकल फॉर्म में याद करते, अब हम उस परम आत्मा को याद कर रहे हैं। तो पहले मुझे किस स्थिति में बैठना पड़ेगा? आत्मा हूँ, जब तक मैं आत्मा हूँ उस स्थिति में नहीं बैठे तो परमात्मा नहीं याद आएगा। आज दिन तक परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल हो रहा था? याद करने बैठा कौन था?
0: मैं,
1: माँ बैठी थी, तो माँ को कौन याद आएगा? बच्चा याद आएगा, परमात्मा नहीं याद आएगा। लेकिन आत्मा जब बैठेगी याद करने कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को परमात्मा याद आएगा।
0: आई थिंक सिर्फ परमात्मा ही फिर याद आएगा।
1: एब्सोल्युटली,
0: है ना? अब एक्चुअली ऐसा हो पाएगा कि हम सिर्फ परमात्मा,
1: जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हो गए, आपको परमात्मा ही याद आएगा। और याद करना मतलब मैं किसका बच्चा हूँ, और उस घर में जाना, यू नो, विद द पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे अगर आप यहाँ बैठे अपने बच्चों को याद करो तो कहाँ याद करोगे? वो घर में बैठे हैं, तो तुरंत आपके सामने क्या आता जाएगा? वो घर में है, ये कर रहे हैं, आप उनको वहां देखेंगे तो वहीं याद करोगे ना। अगर मॉर्निंग में याद करते तो कहाँ याद करते? वो स्कूल में है, ऑटोमेटिक है। तो अब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें? वो कहाँ है? उस घर में है। और फिर हम भी बुद्धि से उस घर चलते, जैसे हम यहाँ बैठकर इस घर जा सकते, अब हम यहाँ बैठकर वो घर चल सकते। और जैसे ही हम ये थॉट्स क्रिएट करेंगे, परमात्मा की याद आएगी, तो उनकी पावर प्योरिटी हमारे अंदर आ जाएगी। करके देखे,
0: बिल्कुल करते हैं।
1: जस्ट लेट सिट बैक, कंफर्टेबल होकर बैठे। हम कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पिता को याद करने बैठे हैं, उनसे वो कनेक्शन जोड़ने बैठे हैं जो शायद काफी समय से टूट गया था। अपने आप को देखें इस शरीर में, शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर पीसफुल बींग, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। आई टेक दिस मोमेंट टू गो होम। अपने आप को देखें, ऊपर अपने घर की तरफ चलते हुए देखें उस सितारे को, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रॉसिंग the sun, moon and the stars, I'm going home, my home, mujh atma ka ghar, the land of silence, peace and purity, charo taraf golden red light, aaj din tak is ghar ko yaad kiya tha, आज मैं उस घर में आकर पहुंची हूं, अपने पिता के पास आकर पहुंची हूं। मेरे पिता जस्ट लाइक मी, पॉइंट ऑफ लाइट, आज दिन तक ढूंढ रहे थे, वेरी वेरी पावरफुल, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। मन पे कोई भी बोझ, कोई क्वेश्चन है, अपने पिता से करें, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूं. As I fill myself with the power of purity and peace, धीरे धीरे मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचते. Coming back to the center of the forehead. With this consciousness, I am a peaceful soul, child of that ocean of peace. Peace is my nature. It's my personality. Happiness, जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, this is my original nature. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: अगर आपको याद हो, जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, हमने आपसे कहा था कि आप खुश हैं, और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम सामने आया था, आज के इस वक्त में कौन खुश रह सकता है. ऐसे ही बहुत से संस्कारों और बिलीफ सिस्टम्स पर हमने अपनी ज़िंदगी की वो खूबसूरत खुशियाँ और वो शांति, प्रेम, वो जो हमारी अपनी इननेट क्वालिटीज़ हैं, उन्हें गंवा दिया है. कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. परमात्मा का साथ हमारे साथ है. वो हमारा पिता, हमारा साथ देने को तैयार है, हमें शक्ति देने को तैयार है. हम फिर उन खुशियों को लौटा सकते हैं. बॉल इज इन आवर कोर्ट. अगर आपके पास कोई सवाल, कोई मन में बात उठ रही है, कोई सजेशन है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक ऐसी शक्ति लेकर आज हम सब अपने साथ हैं. थोड़ी देर मनन करें. आज जो हमने सीखा इस पूरी श्रृंखला में, जो हमें बात समझ में आई है, ये सारी खुशियाँ, ये सारे एहसास हमारे अपने हैं, खुद क्रिएट किए जा सकते हैं. किसी भी पल, किसी भी सिचुएशन में मैं अपनी स्टेबिलिटी कायम रख सकती हूँ. इस ताकत के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

कोरियर की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। कहते हैं कि मनुष्य आदतें जब बनाता है तो वो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है और कभी भी उसे बदलने की हिम्मत या क्षमता रखता है। लेकिन आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसमें ये भी बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी उन्हीं आदतों के अधीन होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आदतों ने हमें ओवरटेक कर लिया है, ओवरपा कर लिया है और हम खुद को, स्वयं को उसके आगे हारा हुआ मानते हैं और फिर उसकी स्वाधीनता स्वीकार करके खुद उसके अधीन हो जाते हैं या फिर कहें तो उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन हमारी इस श्रृंखला में हमारी ये कोशिश है कि हम उन कारणों को जानें कि क्या ऐसा हो जाता है कि हमारी वो आदतें हम पर हावी हो जाती हैं और क्या हम उन आदतों को छोड़कर नई आदतें यानी पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उन्हें अपना सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ खास मुंबई से हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हर बार की तरह हमारी हमसफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत से हमने ऐसी आदतों के बारे में बात की है इस पूरी श्रृंखला में। अभी तक हमने बहुत मोटी मोटी उन व्यसनों की बात की, उन एडिक्शंस की बात की जिनसे आज हर व्यक्ति जूझता नजर आता है और कई बार हमने ये भी देखा कि एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि यही सच्चाई है। ना सिर्फ अगर हम नहीं जूझ रहे तो हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो इस आदत का शिकार होता है, चाहे वो स्मोकिंग की बात की थी हमने, चाहे वो हमने ड्रिंक्स की बात की थी, इवन ड्रग्स तक की भी बात हम कर चुके हैं। जो बड़ी बात सामने आई थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं डिसीजन हमने अपने हाथ से छोड़कर और उसके आदि बनते जा रहे हैं। पीयर प्रेशर भी उसमें बहुत बड़ा कारण था, हमारे जो अपने हैं वो भी सहायता कर सकते हैं इसे छोड़ने के लिए। स्मोकिंग की बात की थी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पर्यावरण पे थे। निकोटीन या तंबाकू या स्मोकिंग का जो एक और एस्पेक्ट है वो है गुटखा। 2 रुपए का वो पाउच गुटखा हर पॉकेट में हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होते हैं। गुटखा को हम क्यों एडिक्शन नहीं मानते हैं?
1: ऐसे सबसे बड़ा एडिक्शन है और इनफैक्ट ट्रेजेडी जो है कि भी भारत में पहले भी था, अलग अलग रूप से तो हम स्मोक करते थे लेकिन मेजर जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आया है कि हम ज्यादा वो जैसे स्मोकिंग करते थे ऐसे करने लगे। लेकिन देखो विदेशों में कोई भी गुटखा नहीं खाता है, नो च्यूइंग टोबेको इज ऑलमोस्ट जीरो इन अदर कंट्रीज, तो यही बताता है कि भी हम कितने ज्यादा आदी हुए और गुटखा है वो उतना ही डेंजरस है
0: यहाँ, क्योंकि ये मिथ में बहुत रहते हैं हम लोग कि गुटखा तो जो है वो स्मोक तो नहीं कर रहा या ड्रिंक तो नहीं कर रहा, गुटखा ही तो खा रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्या होता है जब ये तंबाकू मुंह में जाता है?
1: वो भी तंबाकू ही है तो उसमें भी निकोटीन है, वो जो सारी है एक्सेप्ट भी कोल टार, कार्बन मोनोक्साइड, वो जो चीजें हैं वो गुटखे में नहीं है। और दूसरी हार्मफुल इफेक्ट है गुटखे में कि जब उसे चबाते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और व्यक्ति मुंह को खोल नहीं पाता है। शुरू में तो उसे खोलने में दिक्कत होती है, फिर शायद 3-4 इंच खोल पाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि जो एक उंगली भी अंदर डाल नहीं सकते, यहाँ तक कि खाना भी ऐसे खाते कि भी चम्मच में लेंगे, मुंह में डालेंगे, उल्टा करेंगे, फिर सीधा करके फिर निकालनी पड़ती है। आप अगर उनकी कंडीशन देखो तो आपको सचमुच एक सिंपथी होगी।
0: बिल्कुल, मतलब इट्स एक्टिंग द मोस्ट हॉरिफाइंग एस्पेक्ट अगर जिंदगी का देखें तो। सिस्टर शिवानी, ऐसा क्या है मतलब हम इसको स्वीकारते ही नहीं? देखिए, हमने स्मोकिंग की बात की थी तो चलिए हम फिर भी मान लेते हैं, घर वाले भी मान लेते हैं, हम खुद भी कहीं कहीं अगर मैं स्मोक करती हूँ मुझे पता होता है कि हाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन ड्रग्स की बात की थी, ड्रिंक्स के मामले में भी हमें मालूम होता है। गुटखा को हमने इतना आसान क्यों मान लिया है? इवन विमेन भी जो स्मोकिंग और ड्रिंक्स के बारे में फिर भी 2 बार सोचते हैं, वो भी गुटखे के 3 दाने लेने में कोई और उसे फांकने में कोई अपनी परेशानी का सबब नहीं मानती हैं। क्यों इसे हम एक एडिक्शन के रूप में नहीं देखते हैं?
2: एडिक्शन नहीं भी देखें लेकिन हार्मफुल तो है ही ना, तो एक हार्मफुल पदार्थ हम अपने अंदर क्यों डाल रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट में वो जो परखने की शक्ति है राइट और रॉन्ग वो या तो कम हो चुके हैं या रॉन्ग पता होने के बावजूद भी जैसे कि हम बहुत बेपरवाह हो चुके हैं अपने बारे में। हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ तो जानते हैं। हमने नॉनवेज की बात की थी, हमने ये सारी जो बातें की हमको सब पता है कि इसके क्या नुकसान है लेकिन फिर भी हम उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। वैल्यू फॉर माई ओन लाइफ, आई डू नॉट वैल्यू माई ओन लाइफ, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू न जानने के कारण हम सोचते हैं जितना है उसको कम से कम इस चीजों से इंजॉय करें। ये हमारे स्टिम्यूल स्टिमुलेंट्स हैं इंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसका अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा उस नुकसान की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि जीवन में खुशी चाहिए.
0: और कहीं ना कहीं हम इस कगार पर पहुंच गए कि खुद को ही नकार दिया.
2: हाँ, बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना. हाँ, अपने हाँ, जीवन की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है. जब हम कहते हैं अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते, कहते हैं 10 मिनट अपने लिए निकालो, टाइम नहीं है. लैक ऑफ वैल्यू फॉर द सेल्फ, बिल्कुल अपने जीवन की इम्पोर्टेंस नहीं है. तभी तो अपने शरीर की भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अंदर ये सारा डाल रहे. जैसे एक अज्ञान की नींद में सोए हैं और चलते जा रहे हैं.
1: शिवानी बिन एडिक्शन तो है ही है.
2: एडिक्शन
1: की डेफिनेशन भी हम देखे तो अगर आपने एक मास तक गुटखा खाया, फिर देखो 2 दिन नहीं खाओ, इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं.
2: नहीं, लेकिन शुरू भी कर रहे हैं, विमेन भी ले रहे हैं, तो क्यों हम शुरू भी करते हैं उस तरह की चीज को.
1: एंड हाउ एक्सपेंसिव इट इज, कभी हम ये नहीं सोचते. हम तो सोचते वो पुड़िया 1 रुपये की या 2 रुपये की मिलती होगी, लेकिन अगर किलो का हिसाब किया जाए तो शायद 3-4 हजार रुपये किलो है. आज गरीब लोग भी खाते हैं, जो शायद बच्चों को बादाम नहीं खिलाएंगे, है ना, अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे, परंतु गुटखा आराम से खा रहे.
0: तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है जो गुटके का, अगेन आपके पास आते हैं सिस्टर शिवानी, की जब हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, जब हमने बात की अवेयरनेस की फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड इटसेल्फ, यू नो, अगर 10-11 साल में जहां ये लतें भी पड़ रही होती हैं, इवन स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी गुटका जो है वो मुझे लगता है माँ बाप भी शायद उसको परेशान नहीं होते उसको देख के कि गुटखा खा रहे हैं. तो यहाँ ये जो जब अवेयरनेस अगर शुरू में ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम बात हर बार प्रिवेंशन की भी करते आ रहे हैं, सो हाउ माय अवेयरनेस विल हेल्प मी नॉट टू गेट इनटू दिस होल हैबिट.
2: टोटली, इट विल नॉट टेक मी टुवर्ड्स इट एट ऑल. अगर बचपन से ही पेरेंट्स ने वो अपब्रिंगिंग में वो बात सिखाई होगी, उसके नुकसान बताए होंगे और खुद उस जीवन शैली को फॉलो कर रहे होंगे, तो बच्चा भले उसकी क्लास में सारे ले रहे हो वो चीज को, उसके बिलीफ सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड होगा कि वो उस तरफ जाएगा ही नहीं. दैट इज फॉर श्योर. पीयर प्रेशर इज एन एक्सक्यूज, इट्स अ रियल एक्सक्यूज कि नहीं पीयर प्रेशर में तो आप सब कुछ कर लेते हैं. कितने बच्चे हैं जो बावजूद सारे पीयर प्रेशर के नहीं करते हैं ना, तो वॉट इज इट दैट दे हैव विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. बहुत स्ट्रांग अंदर विल पावर एंड बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन परिवार में, जो पूरा वैल्यू सिस्टम जो परिवार में डला है, दे विल नॉट गो टुवर्ड्स दैट.
1: क्या होता है शिवानी बेनी, जो कहा ना कि आध्यात्मिकता से हमें अपनी एक अलग से पहचान मिलती है, अपनी आइडेंटिटी होती है कि आई एम यूनिक, नो आई एम स्पिरिचुअल. इसके लिए भले 99% ले रहे हैं, तो भी वो बच्चा जो स्पिरिचुअल बातों को अपनाए उसको टच भी नहीं करेगा.
0: डेफिनेटली, दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपकी अपनी आइडेंटिटी अगर पहले से ही है. यहाँ एक हम कहते हैं, हर बार बात ही कर रहे हैं, बार बार हर एडिक्शन के ऊपर जब बच्चों की बात आती है, फैमिली फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. कितने दिनों से हम जब बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आज है, एक पेरेंट लेता है, खासकर अगर हम देखें फादर या मदर भी हो सकती है, वो स्मोकिंग में है, ड्रिंक्स में है, शाम को एक पैक ड्रिंक का जरूर लेंगे ही लेंगे, आदत है उनकी, कोई बात नहीं, ये गुटखा है वहां पैकेट पड़ा रहता है. ये माँ जो है वो चाहती है कि ना हो किसी तरह से, क्या हो, फादर को नहीं समझाया जा सकता, फादर नहीं समझ पा रहा. क्या एज वन सिंगल पेरेंट कैन ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आज के इस दौर में, बिकॉज हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं. हम पहले भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर चुके हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, और अगेन मेरे लिए वैल्यू अलग है, पूरे परिवार के लिए वैल्यू अलग है. तो आज जब बच्चे को वो गुटखा दिख रहा है ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ, उसको उठा के वो डालने की कोशिश करेगा, क्या एक सिंगल पेरेंट उस बच्चे को मोटिवेट कर सकती है उससे परे रहने के लिए?
2: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज पॉसिबल, क्योंकि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो बन सकते हैं, एक रोल मॉडल आप बनकर, उल्टा और ही शायद बच्चे के अंदर आप वो प्रेरणा ला सकते हैं कि यू नो सी व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट. जब हम
0: यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि अगर वो समझाएगी कि फादर तुम्हारे गलत कर रहे हैं, सो उनको ये लगेगा कि क्या मैं फादर के अगेंस्ट तो नहीं भड़का रही. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माओ के सामने जो आज की जो जनरेशन में है वो आ रही है, कि जब मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि देखिए फादर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या गुटखा लेते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं कर रही हूँ. सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस?
1: जनरली तो ये नहीं होता है, इन जनरल देयर मे बी रेयर, कुछ होंगे ऐसे 1-2%, परंतु अधिकतर तो माँ तो एक्सट्रीम अगेंस्ट होती है. मैंने कहीं एक डॉक्टर को मैं पहचानता हूँ, वो थोड़ा ही, बहुत थोड़ा पीते, और कभी उसने ऊंची आवाज से भी नहीं बोला, इतना एक आध पैक लेके कभी ऊंची आवाज से भी उसने नहीं बोला, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसकी पिटाई कर देते हैं। उस स्टेज में एक पैक भी लिया है तो भी उसकी पिटाई कर देंगे, मतलब महिलाएं तो एकदम अगेंस्ट है।
0: नहीं, लेकिन अगर आज के सर्कमस्टांसेस में ज्यादातर देखें, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, हस्बैंड्स पार्टीज में पी ही रहे हैं, रात को भी शाम को भी, कई लोगों ने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि लेते ही हैं, ऐसे में ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि लेडी के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट है, माँ के सामने, कि हाउ टू डील विद इट।
2: आई थिंक बट स्टिल पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको, पूरी नॉलेज एक बच्चे को देनी ही पड़ेगी कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड प्लस एम्पावर उस बच्चे को, इतना एम्पावर करे ताकि वो उस रास्ते पर या उस चीज को टेस्ट करने की भी जरूरत ना समझे, इतना हम उसको सशक्त बनाए। एंड आई थिंक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो डायलॉग है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे बच्चे की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जहां हम इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो क्या हम ये एक चीज अपने लिए नहीं, तो फिर उन्हीं के लिए गिव अप कर दें, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे में दो तरह के हमें दिखाई देते हैं, एक जो अपने घर में बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि उस चीज से नफरत करते हैं, उन्हें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नफरत होती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को अपने घर में देखा, उसकी वजह से झगड़े देखे, तो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं टच करेंगे। और लेकिन दूसरे वो जिन्होंने उसको बहुत हेल्दीली एक्सेप्ट होते हुए देखा अपने घर के अंदर, एंड फिर उनके लिए वो एक बहुत नॉर्मल चीज है।
0: नहीं तो फिर झगड़े होने चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग।
2: नहीं नहीं, तो दैट्स व्हाट आई सेड, दो तरह का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, या तो एकदम अवर्जन या फिर इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल फॉर देम।
1: कि भी ये इवेंट इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, आप उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन क्या है इम्पोर्टेंट है। इसी किस्से में अगर माँ बच्चे को यह समझाए कि फादर कोई भी कारण से ले रहे हैं लेकिन बेटा इतनी बुरी चीज है तुम उसको छूना तक नहीं, और अगर बेटा माँ से अटैच है क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है।
2: And I think the men need to understand कि peer pressure या social pressure या party circle इस process में अपना वो maintain करने के लिए कि सब friends ले रहे हैं, उस चीज में वो अपनी family life पर कितना negative impact डाल रहे हैं। आप friends को खुश कर रहे हैं और family को,
0: और जो कितना important, in fact बच्चा जो जिस age में है, हम कहीं ना कहीं हम हर बार ये मानते आ रहे हैं कि जिम्मेदारी तो हमारी है,
2: और कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को कहां फिर हमें राइट रह जाएगा कुछ भी चीज के लिए रोकने के लिए। अगर वो कोई और राह पर भी चलता है, हमें क्या हक रहेगा उसे रोकने के लिए जब हम

0: मेरा बेटा या मैं पहला ड्रिंक मैं साथ बैठकर पिलाऊंगा,
1: क्योंकि इस चीज को हमने इसलिए सिग्निफाई कर लिया क्योंकि ये हमने सोचा ये बॉन्डिंग की निशानी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सी जहां इंटरनल बॉन्डिंग नहीं होगी वो हॉलोनेस है, हम ये बाह्य चीजों का आधार ले लेते हैं टू शो पीपल एंड इवन टू सैटिस्फाई माई ओन सेल्फ कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, देखो हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि हमें छुप के कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
0: हमें छुप के मतलब हमें खुद पता है कि हम वो नेगेटिव चीज कर रहे हैं तो हम नेगेटिव भी साथ साथ कर रहे हैं, डेफिनेटली समवेयर वी नो दैट।
1: ये अपने आप को ही सैटिस्फाई करने की कोशिश है।
2: कन्विक्शन तो ये होना चाहिए कि दो पैग अल्कोहल भी हार्मफुल है, जो आज डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं।
0: डॉक्टर पटेल इसी बात पे हम आ रहे हैं कि अभी तक हमने जो बातें की हैं, चाहे वो स्मोकिंग की है चाहे वो गुटके की है, वो ऐसी लगती है कि सिर्फ उससे कुछ अपने होश नहीं खोते हैं हम, उसके लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। ड्रग्स हमारे आसपास कोई ज्यादा हमें नहीं दिखते हैं जो ड्रग्स लेते होंगे। एल्कोहलिज्म एक ऐसा इतना बड़ा अभिशाप इस वक्त सोसाइटी का बन चुका है जहां घर घर में अल्कोहलिज्म का एक प्रकोप कहा जाए वो है, और उसमें होता यह है कि आप अपने होश खो बैठते हैं, कहीं ना अपना अपने ऊपर से आपका जो कंट्रोल है वो खराब हो जाता है। उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रकोप समाज में नजर आता है।
2: सबसे पहली तो ये बात है कि भी जो आज क्यों ज्यादा ही शराब पीने लगे हैं, क्योंकि हमारे में मस्तिष्क में कहीं इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स है कि जिसके कारण हमारे में शाइनेस आती है, हम कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं, ओपन अप नहीं होते हैं, ऐसी कई बातें हैं। जब आप शराब पीते हैं तब वो जो इनहिबिशन है वह इनहिबिट हो जाता है, वो जो इनहिबिशन है वह कट ऑफ हो जाता है, और उसके कारण व्यक्ति फ्री फील
0: एग्जिबिट कर देते हैं।
2: हाँ, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है ना, फ्रीली बोलने लगता है, आराम से उसको लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, परंतु वो टेम्पररी फेस है। एक तो ये इनहिबिशन है, वो इनहिबिशन दूर होने से आपको अच्छा लगता है। फिर जब है वो लीवर पर बहुत बड़ा डैमेज होता है, ये 100% सिद्ध हुई बात है कि जो व्यक्ति अगर आप 4-5 साल भी थोड़ी थोड़ी भी शराब पीते रहो तो लीवर सिरोसिस होने लगता है। ऐसे पेनक्रियाज की जिसका डायबिटीज के साथ संबंध है तो पेनक्रियाज पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, पेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये एसिडिक है और एसिडिटी अल्सर आदि निर्माण करेगा। और सबसे जो इफेक्ट है वह है ब्रेन पर, क्योंकि एक तो ब्रेन पर ये इनहिबिशन हुआ और आगे चलकर के एक बीमारी है वर्निक्स एनकेफेलोपैथी कि जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे सचमुच एक अपाहिज की तरह जीवन व्यतीत करता है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। और दूसरा एक है कोर्सकॉफ साइकोसिस, एक पागल की तरह व्यक्ति। पर आगे के स्टेजेस है, परंतु क्यों हम उसके बीच बो रहे हैं? थोड़ी भी शराब लेकर के आप उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। और एक चीज जो बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि एटलीस्ट 50% एक्सीडेंट्स है वो शराब पी हुई हालत में होते हैं, कोई भी एक्सीडेंट्स को आप लीजिए। तो इन सबको साथ में अगर होलिस्टिकली देखा
0: जाए, समाज के लिए भी फिजिकल अब्यूज सबसे ज्यादा, परिवारों का टूटना सबसे बड़ा कारण, चाहे हम झुग्गी झोंपड़ी वर्ग में जाएं, चाहे हम उस निम्न वर्ग में जाएं या फिर आज उच्च वर्ग में किसी भी वर्ग में चले जाएं, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं
2: अल्टीमेटली होते,
0: वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। सिस्टर शिवानी, बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं डिटॉक्सिकेशन के, और बहुत बार बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अल्कोहलिज्म को दूर करने में बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर यही देखा गया है कि शायद रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प एक्चुअली इन द रियल सेंस, क्योंकि अल्कोहलिज्म में कहीं ऐसा लगता है कि हाथ में अपने नहीं रह गई है पावर, हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प?
1: स्पिरिचुअलिटी एक ओवरऑल हीलिंग करती है, आत्मा पर बहुत सारे घाव हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के, प्रेजेंट चैलेंजेस के, कुछ अपनी आदतों के बहुत सारे घाव हैं। तो अध्यात्म जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के साथ, वो सिर्फ हमारी ये आदत को नहीं छुड़ाती है, वो तो सिर्फ एक सिंपल चीज है, वो तो जल्दी से छूट जाती है, अल्कोहल स्मोकिंग ये तो कुछ दिनों में छूटती है वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, लेकिन ये हमारे डीप घाव जो लगे हुए हैं उसको हील करती है। फिर जब वो हील होने शुरू हो जाते हैं, आपका वापस रिलैप्स होना वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका रूट सॉल्व हो गया ना।

0: अब अभी नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप बिहेवियरल लेवल या इवन बीमारी का समझकर आप छोड़ते भी हैं तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता और फिर आप उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो खालीपन है वो तो भरा नहीं। भले बाहर से समझ कर छोड़ना चाहते थे, छोड़ पाए, लेकिन जब अगली कोई चैलेंज आई, तो दैट्स व्हाई इनर एम्पावरमेंट ये जब आप साथ में करेंगे, देयर इज नो वे कि देयर विल बी अ रिलैप्स, क्योंकि परिस्थितियों को फेस करने की ताकत आ गई है। तनाव, गुस्सा जो एक कॉमन था अभी तक, वो फिनिश होता गया धीरे धीरे। डिप्रेशन ये सब कभी अनुभव नहीं होंगे, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? वेरी हेल्दी, बिकॉज मेडिटेशन से आप अपने माइंड के मास्टर बनते जा रहे हैं। तो नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, और अगर आप अपनी हैप्पीनेस एक बार खुद क्रिएट करने शुरू कर दी है, यू डोंट नीड एनीथिंग
1: व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्निक एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद के जो सुबह उठ के जो हालात होते हैं, एक्चुअली पीपल डोंट लाइक इट,
0: राइट,
1: जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं अल्कोहलिज्म का, तो खासकर ये देखा गया है कि उसके बाद के जो उनके हालात होते हैं, दे आर एक्चुअली फील वेरी बैड, उनको खुद को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर पटेल, दो
2: मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी आज अप्रोचेस है, जैसे बहुत ही फेमस है अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस भी, वहां आप देखेंगे उनके 12 स्टेप्स माने गए
1: जी।
2: वो 12 स्टेप्स सारे के सारे स्पिरिचुअल है। कुछ एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे सबसे पहले तो कहते हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरे में यह बहुत बड़ी समस्या है और मैं शक्तिहीन हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अल्कोहल पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। फिर दूसरी बात बताते हैं कि भी मेरे से कोई बड़ी शक्ति ही मुझे मदद कर सकती है, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल शक्ति मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। तीसरा कि भी परमात्मा को जैसे भी मैं मानता हूँ, उस रूप से मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ कि परमात्मा मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाएंगे। फिर कि भी मैं अपनी सारी कमियां है परमात्मा के सामने रख रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे में यह कमियां हैं, यह शक्तियां हैं, और वह मैं परमात्मा के सामने रखता हूँ, उससे मुझे शक्ति मिलेगी। इस प्रकार से मैं मदद को मांग रहा हूँ, नहीं प्रतिदिन मैं प्रेयर कर रहा हूँ। सारे आप 12 स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिक।
0: अब इसी को हाँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा हम जैसे डिफरेंटली लेते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, यू नो, ये सबसे पहली चीज हमें मिली कि मैं आत्मा का ओरिजिनल गुण ही शक्ति है। तो अभी तक जो मैं अधीन था, अभी तो कर्म इंद्रियों के भी अधीन या कोई पदार्थों के भी अधीन, वो खत्म हो जाएगा जब रोज सवेरे उठकर हम 10 मिनट के लिए भी इस तरह बैठे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो मेरे अंदर कमजोरी ये हो नहीं सकती है। तो अपने आप, और जब हम वो कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, तो परमात्म शक्तियां सारी मांगनी नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही सारी आत्मा के अंदर भरती जाती है, अपने आप एम्पावरिंग हो जाती है। मेन चीज है सोल इतनी अपने आप को चार्ज्ड फील करती है कि उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए। इनफैक्ट हमें समझ में आने लगता है फिर कि ये सारे जो स्टिमुलेंट्स थे ये हमें डिस्चार्ज करते हैं, ये हमें डी एनर्जाइज करते हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे थे, देन व्हाई वुड वी गो टुवर्ड्स इट।
2: राजयोग एक स्टेप अहेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी वहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते भी मैं पावरलेस हूँ, यहाँ पर पहले ही स्टेप में पावर भरती
1: है कि मेरा मूल जो है वो पावरफुल है, पावर है, उसके बाद अगर आज मैं हो भी गया हूँ, आई कैन एक्चुअली अगेन रीच दैट लेवल।
2: और परमात्मा से शक्ति लेने की बात तो राजयोग में भी है ही है कि मुझे परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ करके उस पावर को अपने आप में भरना है। और राजयोग की आप अगर पॉजिटिव थॉट्स भी देखेंगे, टेक्निक अगर आप देखो राजयोग की, सारी वही है कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, परमात्मा शक्ति के सागर है, उनसे मुझे शक्ति मिल रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव प्रोसेस ही सारा हमें मदद करता है व्यसनों से मुक्ति दिलाने।
1: आई थिंक ये तो मैं बिल्कुल पूरे अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि रोज का किया हुआ ये अभ्यास कहीं ना कहीं हमारे अपने आत्मबल को बढ़ा देता है। जो शक्ति को मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। डॉक्टर पटेल, चलते चलते आज की इस पूरी बातचीत में एक बात हम ये जानना चाहेंगे, हमने जितने भी व्यसनों के फिजिकल एस्पेक्ट की तरह जो बड़े बड़े व्यसन थे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन था, चाहे वो स्मोकिंग थी, चाहे वो गुटखे की बात है, ड्रिंकिंग की बात है, एक बार किया गया या रोज रोज किया गया, दोनों में से क्या सभी सही है, दोनों में से कोई भी सही है?
2: बोथ आर इक्वली हार्मफुल, क्योंकि एक बार भी किया तो आगे चल के आदत हो जाएगी, कहीं बार आपके पास समस्या आई तो वही चीज आपको याद आएगी, तो इसके कारण बेस्ट तो ये है कि एक भी बार नहीं करना। और जो लोग एक्सट्रीम एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनमें कई बार फिर हमें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भी उनकी क्वांटिटी अगर बहुत कम हो गई तो भी अच्छा है, बेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक तो पहले जो घर में आकर के तोड़फोड़ करते थे, मारते थे, वह सारा खत्म हो गया, तो उसे भी साइकियाट्रिस्ट कुछ हद तक एक्सेप्ट करते हैं। परंतु गोल तो यही होना चाहिए कि मुझे टोटली उसे छोड़ना,
1: किसी
2: जब तक आप कंप्लीटली नहीं,
1: क्लीनलीनेस की जो बात है, कन्वर्जन की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जैसे शिवानी, कई बार जो हम ड्रिंक्स की बात करते हैं वो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में शुरू करते हैं, कई बार डिप्रेशन में शुरू करते हैं, दोनों की अलग अलग भावनाएं होती हैं जब करते हैं। छोड़ना दोनों में ही आसान है?
0: बहुत आसान है। एंड आई वुड से एनीवन वाचिंग दिस प्रोग्राम नाउ, अगर कहीं भी थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है, जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड जस्ट गो देयर फॉर अ फ्यू डेज। बस थोड़े से दिन जाइए, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कीजिए, आपको एक बहुत पॉजिटिव चार्ज्ड मेडिटेशन रूम मिलेगा, बहनें मिलेंगी जो आपसे इसकी विधि को आपके साथ शेयर करेंगी, सिर्फ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमने शुरू से देखा एक एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़े दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, लाइफ विल चेंज डेफिनेटली।
1: ओके सुश्री शिवानी, डॉक्टर पटेल, बहुत अच्छा लगा आज के इस पूरी बातचीत के लिए। अभी हमने उन एडिक्शंस की बात की है जो सामने सामने नजर आती हैं, जो हमारे अपने अंदर चल रही हैं एडिक्शंस। अगर मैं कहूं कि एंगर एक एडिक्शन है, जैसे आपने कहा था एक बार कि चॉकलेट भी एडिक्शन हो सकती है, या कहीं ना कहीं टेंशन एडिक्शन है, पेन लेने की एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स में एडिक्शन है कि मैं आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, किस तरह से ये एडिक्शंस, ये आदतें भी हमारे लिए मजबूरी बन सकती हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो उनके ऊपर बातचीत करना अभी बाकी है। आने वाली कड़ियों में उन्हें जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमने ये मान लिया कि जो आदत हमारी जिंदगी में आ गई है, चाहे वो स्मोकिंग की है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, चाहे वो गुटखे की है, वो आदत है और उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मेंटली मैं अपने आप को बहुत चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी। जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि एक बार भी ये थॉट अगर हमारे पास आ जाता है कि मुझे इन व्यसनों से बाहर निकलना है, इन आदतों को छोड़ना है, तो फिर आप वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अनुभव होगा। आप किसी भी राजयोग सेंटर जा सकते हैं, खुद को इतना बुलंद कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और इन सभी आदतों को अगर अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप एक वादा कीजिए अपने आप से कि ये कदम जरूर उठाकर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। एक वादा और लेते हैं हम आपसे कि अगर आप किसी भी व्यसन को, किसी भी आदत को छोड़ने का अपने आप में व्रत लेते हैं, किसी राजयोग सेंटर में जाकर या फिर मेडिटेशन के माध्यम से, तो आप अपना वो अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। आपके खतों का हम इंतजार करेंगे, आपकी ईमेल्स का हम इंतजार करेंगे, फोन कॉल्स का भी हम इंतजार करेंगे। आने वाली कड़ियों में उन सभी आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें कभी हमने एडिक्शन माना ही नहीं, जो हमारे अपने ही अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब बनती है। फिर होगी मुलाकात अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप भी ऐसे ही एक किनारे पर खड़े थे, वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: ओह यस, एक्सक्यूज मी लेडीज, माफ कीजिए दादी माँ।
3: माधवी

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी सुशीला दीदी का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के गांव में हुआ था। जालंधर कन्या महाविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने बहुत सी राष्ट्रीय कविताएं और प्रेरणा गीत लिखे। सभी क्रांतिकारी प्यार से उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे, और हो भी क्यों ना, वे हर क्रांतिकारी संघर्ष से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। काकोरी कांड के लिए उन्होंने अपनी शादी के गहने दिए, तो लाहौर षड्यंत्र कांड में फरार भगत सिंह की कलकत्ता में रुकने की व्यवस्था की। दिल्ली में वायसराय की ट्रेन उड़ाने की योजना बनी तो दीदी को कलकत्ता से दिल्ली आना पड़ा। क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़ने के लिए वे नाटक खेलकर धन जुटाती। दिल्ली असेंबली बम कांड के क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की योजना बनी तो वे कलकत्ता से नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गईं। राखी के अवसर पर भगत सिंह को लिखे उनके पत्र को प्रकाशित करने वाले संपादक को जुर्माने के साथ 6 साल की कैद हुई। उनके नाम 2 वारंट निकले और पकड़वाने वाले को 2000 रूपये का इनाम देने की घोषणा की गई। आजाद की शहादत के वक्त भी दीदी इलाहाबाद में थी। क्रांतिकारी घटना दिल्ली की हो, लाहौर की या कोलकाता की, दीदी हर जगह मौजूद दिखाई देती हैं। वे सभी क्रांतिकारियों की बहन जो थी।
3: अरे यार, अभी तक ये चाय नहीं आई। अरे दद्दा, अरे चाय भेजो ना।
4: अरे आ गई आ गई आ गई चाय, ये लो चाय और ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। अच्छा सुनो, कचौड़ी में चटनी डालूं क्या?
3: हाँ दादा, थोड़ी चटनी मुझे भी डालो। हाँ ये खट्टी वाली।
4: हाँ हाँ लो ना, ये लो, ये तुम भी लो।
3: ये कागज करो उधर और कचौड़ी करो अंदर।
5: ए भैया, कागज इधर उधर मत फेंको, लाओ मुझे दो, मैं डाल देता हूँ कचरे के डब्बे में।
4: अरे किशन, वो कचौड़ी वाला कागज देना जरा। अरे ये क्या, ये तो क्रांति संग्राम किताब का पन्ना है। ये उस्ताद भी कुछ ध्यान नहीं देते, बस रद्दी समझकर फेंक दिया।
3: क्या बात है दादा, क्या बहुत काम का है ये कागज।
4: अरे ये सिर्फ कागज नहीं है, शहीदों की अमर गाथा है। ये तो शहीदों के लहू से लिखा गया गीत है।
5: तो सुनाओ ना दादा हमको भी।
3: हाँ हाँ भैया सुनाओ सुनाओ।
4: हाँ हाँ सुनाता हूँ सुनाता हूँ। मेरे पास कॉलेज के कुछ लड़के अक्सर आते हैं, वो आज भी आने वाले हैं। मैं उन्हें सुनाऊंगा तो आप लोग भी सुन लेना। चलो मैं जरा कुछ काम वाम देख के आता हूँ।
3: तो कहाँ देर हो गई तुझको?
6: अरे मैं तो घर पे रह गया, तो तू कहाँ रह गया था?
3: मैं आ रहा था, गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में।
6: अच्छा और नमस्कार काका।
4: नमस्कार नमस्कार बेटा।
6: हाँ काका, आ तो गए हम, मगर आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज ये मत कहना कि काम पर कोई नहीं है, आज तो हम कहानी सुनेंगे ही। क्यों भाई?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं।
6: हाँ हाँ सुनाइए काका।
4: अरे सुनाऊंगा सुनाऊंगा, वो देखो वो भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे आने का और कहानी सुनने का।
3: सुनने वाले राजी हैं, बस देर है तो सुनाने वाले की।
6: जल्दी कीजिए काका।
4: देखो बेटा, ये बात है सन 1927 की, दिन 8 अप्रैल, गर्मी की शुरुआत हो गई थी। बीए फाइनल के विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दे दी गई थी। परीक्षा शुरू होने में 5 मिनट का समय था।
3: भाई सब पर्चा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हल कीजिएगा। हाँ, और अपने अपने स्थान पे बैठे। ये अखबार आपका है क्या? जरा मैं देख लूं। हे भगवान, ये क्या, लखनऊ के रिंग थिएटर का नाटक समाप्त, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेन लाहड़ी को फांसी।
7: हे भगवान, ये क्या हो गया?
8: देखिए मार साहब, वो सुशीला गिर गई है और बेहोश हो गई है।
3: अरे भाई शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। चलिए अपनी अपनी सीट पर जाइए सब लोग, अपना प्रश्न पत्र हल कीजिए। मैं देखता हूं। सुशीला सुशीला क्या हुआ? ये लो पानी पियो। हाँ अब बोलो कैसा लग रहा है?
7: अब ठीक लग रहा है। काम के साथ बड़ा नाम है करने वाले, देश पर मर गए किस शान से मरने वाले, सर हथेली पे लिए जान से ये खेल गए, देश आजाद हो इस वास्ते सब झेल गए।
0: हटिए हटिए, दूर हटिए भाई, हवा आने दीजिए।
3: सुशीला
4: इतना कहकर सुशीला फिर बेहोश हो गई और फिर उस दिन परीक्षा नहीं दे सकी। सुशीला का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के दंतो चहुड़ गांव में हुआ था। परिवार राष्ट्रभक्त और आर्य समाजी था।
6: अरे बधाई हो डॉक्टर साहब, कन्या ने जन्म लिया है आपके घर। अरे घर चलिए और पूरे गांव में मिठाई बंटवाइए।
0: हाँ हाँ चलता हूँ चलता हूँ, अरे पहले एक दो मरीज देख लूँ। हाँ भाई ये दवा लो, दो दो घंटे से देते रहना, आपकी बिटिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
9: फीस?
0: अरे नहीं नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए, इसकी मिठाई बच्चों को खिला देना, समझे?
6: अरे डॉक्टर साहब पूरा दंत चूहा गांव मिठाई खाने के लिए तैयार है, अरे सब बहुत खुश हैं।
0: हाँ हाँ खुश क्यों नहीं होंगे, बिटिया ने जन्म लिया है भाई, शुभ संकेत है हमारे गांव के लिए। आइए चलिए।
6: अरे भाई पंडित जी, डॉक्टर करमचंद के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, जरा पोती देखो भाई, बच्ची का भाग्य।
3: हाँ हाँ बिल्कुल, आज तारीख 5 मार्च सन 1905। हाँ भाई जन्म का समय क्या है?
0: सुबह 4:30।
3: हाँ तो 4:30 शुभ समय, कन्या भाग्यवान है। नाम स से शुरू होगा, ये सुशीला, तय रहा सुशीला, कन्या धनवान होगी पर धन से नहीं, सेवा भाव से, मान सम्मान से, देश प्रेम से।
0: और क्या चाहिए, ये भी सेवा भाव से ही विश्वास कर रहा हूँ। और ये रही आपकी दक्षिणा।
3: वो सही कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं।
6: अरे वाह, देखिए डॉक्टर साहब कन्या के चेहरे पर तेज तो देखिए। डॉक्टर साहब एकदम झांसी की रानी लगती है। आप पलक देखती है।
0: सच कह रहे हो भैया, मुझे लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली है, इसका कपाल तो देखो कितना उभरा हुआ है। बेटी तुम चलना, खुद चलना, तुम्हारे पैरों की छाप देखकर लोग मंजिल तक पहुंचे, तुम्हारे कदम राजमहल नहीं गरीबों के झोपड़ों तक जाएं, यही मेरी कामना और आशीर्वाद है। बेटी तुम चलना, खुद चलना, तुम चलना।
4: सन 1926 हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के लिए सुशीला जी चल पड़ी।
7: रुको, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको?
10: छोड़ दो,
7: एक मिनट, आप जरा शांति बनाए रखिए, मुझे बात तो करने दीजिए उसे। एक मिनट, क्या सबूत है इसने चोरी की है? क्यों भाई, तुमने सचमुच चोरी की है?
10: नहीं बहन, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरे पिताजी बीमार हैं, देहरादून अस्पताल में भर्ती हैं, मैं 2 दिन से भूखा था, मैंने तो रोटी उठाकर खा ली थी बस।
11: अरे झूठ बोलता है ये, रोटी के बहाने चोरी कर रहा था, और चोरी तो चोरी है, रोटी की हो या पैसे की, क्यों भाई?
12: हाँ,
7: छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए, ये लो तुम्हारी रोटी के पैसे। इंसान की परिस्थिति तो देखो, रोटी खिलाओगे तो पुण्य ही मिलेगा, बस हाथ उठाया मारना शुरू कर दिया।
10: दीदी मैं चोर नहीं हूँ।
7: आओ भाई इधर आओ, तुम मेरे साथ आओ। चलो हाँ मान लिया तुमने चोरी नहीं की, देखो मैं भी देहरादून जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो और अपना जीवन देश के लिए न्योछावर कर दो। तुम्हारे पिताजी की देखभाल मैं करूँगी, भारत माँ को आजाद कराने के लिए कुछ करो इस समर में।
10: दीदी मुझे जीने का उद्देश्य मिल गया है, आज से मेरा अपना कुछ नहीं, सब भारत देश का है, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है।
9: हम सब एक हैं, भारत माता की
12: जय,
9: भारत माता की
12: जय,
9: भारत माता की
12: जय।
7: शुरू हुई है जंग हमारी, जागी है भारत की हर नारी, दशा भाइयों की जिसने न जानी, कौन कहेगा उन्हें हिंदुस्तानी।
13: वाह वाह क्या बात है बहन, मेरा नाम भगवती चरण है, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है।
7: सुशीला है नाम आपकी इस बहन का, मैं बहुत खुश हूँ मुझे एक और क्रांतिकारी भाई मिला जिसके विचारों में आग है।
4: भाई बहन देहरादून में बिछड़े और फिर कुछ दिनों बाद जालंधर में मिले।
13: सुशीला बहन, सुशीला बहन।
7: कौन है?
13: मैं हूँ आपका भाई।
7: अरे भगवती चरण भैया, आप यहाँ जालंधर में और वो भी अचानक, और ये कौन है?
13: ये तुम्हारी भाभी दुर्गा है।
7: अरे वाह, नमस्ते भाभी, आइए दुर्गा भाभी।
13: हमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के पर्चे गोपनीय ढंग से लोगों तक पहुंचाने और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए।
7: भैया ये भले ही मेरा पहला क्रांति कार्य है, लेकिन आप अपनी बहन पर भरोसा कीजिए।
4: इस पर्चे के वितरण से जालंधर में तहलका मच गया, अपराधी की खोज में पुलिस सक्रिय हो उठी, पर नतीजा ठन ठन गोपाल। कुछ समय के लिए सुशीला को जालंधर छोड़कर कलकत्ता में रहना पड़ा।
0: अरे कहने को तो मेरा नाम सेठ छज्जूमल है, पर अपनी बेटी के लिए इस कलकत्ता शहर में एक अच्छा अध्यापक नहीं ढूंढ सका।
7: जी जी सेठ जी।
0: हाँ बोलो बोलो, तुम कौन हो जी?
7: सेठ जी मुझे जालंधर कन्या विद्यालय के संचालक लाला देवराज ने भेजा है आपकी बेटी की देखरेख और अध्यापन के लिए।
0: अरे वाह बेटी वाह, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, देवराज जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, वो कई बार मुझसे कह चुके थे। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आओ बेटी आओ। हाँ ये रहा तुम्हारा कमरा, और सामान यहाँ रख दो और मैं भोजन के लिए कह देता हूँ, ठीक है बेटा? और हाँ बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक कह देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ।
7: अरे वाह कितना हवादार कमरा है, वो सामने सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, जरूर ये रास्ता राजपथ तक जाता होगा।
4: साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस नारे की तख्ती उठाकर सुशीला भी जुलूस में शामिल हो गई। यहाँ सुशीला की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से हुई।
7: प्रणाम सुभाष बाबू।
14: अरे बस बस, क्या नाम है तुम्हारा?
7: सुभाष बाबू पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं।
14: हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है।
12: आपकी बहन का नाम सुशीला है। मैं सुभाष चंद्र बोस बनना चाहती हूँ।
14: तुम सुशीला रहकर ही क्रांति संचालन कर सकती हो। मैं तुम्हारे भीतर एक सुलगती आग देख रहा हूँ। आगे बढ़ो और अंग्रेजों के खिलाफ ज्वाला बनकर फूट पड़ो।
12: मुझे काम दीजिए, मैं सिर्फ घर बैठे चूल्हा नहीं फूंकना चाहती।
14: हाँ सुशीला, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। ये लो तिरंगा। सुभद्रा, तुम भी साथ जाओ। साइमन, वापस जाओ।
15: साइमन कमीशन,
16: वापस जाओ।
15: साइमन कमीशन,
16: वापस जाओ।
4: ऐसे ही एक दिन अचानक भगवती चरण सुशीला से मिले।
12: भैया, आप यहाँ कलकत्ते में?
13: समझो मेरा फरारी जीवन आरंभ हो गया। कलकत्ता आऊं और तुमसे ना मिलूं। अभी मैं किसी होटल में ठहरूंगा, फिर उचित अवसर देखकर कलकत्ता छोड़ दूंगा।
12: भैया, मेरे होते हुए आप होटल में नहीं रहेंगे?
13: देखो बहन, तुम खुद एक अन्य परिवार के साथ रह रही हो। मैं तुम्हारे साथ रहा तो सेठ छज्जू राम के ऊपर भी संकट आ सकता है।
12: भैया, ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डर, जो होगा देखा जाएगा। आप चलिए मेरे साथ।
4: मकान के दूसरे हिस्से में भगवती चरण रहने लगे। अचानक एक दिन तार आया।
13: चलो सुशीला, तुम मेरे साथ चलो।
12: लेकिन भैया बोलो तो सही, क्या बात है? तार में क्या लिखा है? घबराने की तो बात नहीं है ना? लाइए, मुझे दीजिए तार। चिंता मत करना, मैं भाई के साथ पहुंच रही हूँ। तुम्हारी दुर्गावती? दुर्गावती? भैया, क्या मैं ठीक समझ रही हूँ?
13: हाँ सुशीला, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात है।
12: भैया ये लो, पिस्तौल साथ में रख लो, क्या पता कब काम पड़ जाए।
13: हाँ हाँ दो। चलो जल्दी स्टेशन चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है।
12: हाँ हाँ चलो चलो चलो।
13: देखो ट्रेन आ चुकी है। मैंने कहा था ना कि हम लोग लेट होंगे।
12: अब क्या करें भैया?
13: अरे रुको रुको रुको रुको, वो देखो सामने उस यूरोपियन साहब को, साथ में वो मैम, वही है तुम्हारी दुर्गा भाभी।
12: वाह, दुर्गा भाभी। भाभी जैसा तुम्हारा नाम है ना, वैसा ही काम तुमने कर दिखाया है। धन्य है भारत की नारी।
4: भगवती ने अपनी पत्नी और यूरोपियन वेशधारी भगत सिंह को पहचान लिया। उन्हें विश्वास हो गया सैंडर्स को भगत सिंह ने ही मारा है। तो सुशीला ने उनसे कहा, एक दो दिन होटल में रहो फिर घर आ जाना, यही ठीक रहेगा। सही अर्थों में वो सबकी दीदी थी। उनकी ममता सब क्रांतिकारियों के लिए एक जैसी थी। एक दिन ऐसा हुआ।
12: भगवती भैया और सुखदेव भैया, मैं भी आपके कारखाने में बम बनाना सीखना चाहती हूँ।
17: देखो सुशीला बहन, अब तुम एक लड़की हो और यहाँ लड़की आएगी जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हो सकता है पुलिस को भी शक हो जाए।
12: अच्छा, लड़की नहीं आ सकती ना? ठीक है, तो मैं सिख लड़का बनकर बम बनाना सीखूंगी और इस तरह मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं बम बनाना भी सीख लूंगी।
17: ठीक है ठीक है, चलो तो कल सिख लड़का बन के आना।
12: हाँ हाँ।
4: लेकिन ज्यादा दिन वो वहां रह न सके, उन्हें फिर महिला बनना पड़ा। इस बीच बम बनाते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई। दिन था 28 मई 1930।
12: उधर भगवती भैया शहीद हुए और इधर दो बम मकान में अपने आप फट गए। हमें इसी समय ये घर छोड़कर जाना होगा। चलो दुर्गा भाभी, मेरी सहेली सत्यवती के यहाँ चलते हैं।
4: कुछ दिन तक तो वो अपनी सहेली के यहाँ रही, फिर आजाद ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अपने पुराने परिचित वकील श्याम मोहन की याद आई। सुशीला दीदी ने वकील साहब का मकान भी खोज लिया।
12: वकील साहब, एक बार आप ही ने कहा था मेरा घर क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान है।
6: हाँ मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, देशभक्ति के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं।
12: धन्यवाद वकील साहब।
4: श्याम मोहन वकील साहब ने सुशीला दीदी और क्रांतिकारियों का साथ दिया।
0: अरे चंद्रशेखर आजाद जी, क्या वकील साहब के यहाँ हथियार रखना सुरक्षित होगा?
17: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी आप भी मेरे साथ ही चल रहे हैं, चल के देख लीजिएगा।
0: ठीक है,
17: आइए
0: आइए।
17: सुशीला बहन दरवाजा खोलो, मैं चंद्रशेखर आजाद।
12: नमस्ते पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ और ये कौन है?
17: नहीं नहीं, घबराइए मत, मास्टर जी अपने ही आदमी हैं।
12: अच्छा।
17: सुशीला, तुम पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तुम्हें कभी दिल्ली, कभी मेरठ, तो कभी कानपुर भागना होगा, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए।
0: लेकिन पंडित जी, ये कैसे पता चले कि भगत सिंह क्या चाहते हैं? हम में से कोई भी लाहौर जाकर उनसे मिल तो सकता नहीं।
17: हाँ, इसी सवाल ने परेशान तो मुझे भी कर रखा है।
0: पंडित जी, यदि ये काम कोई महिला करे तो पुलिस को कोई शक नहीं होगा।
17: कहते तो आप ठीक हैं। बहन सुशीला, क्या तुम लाहौर जाके भगत

0: कौन आया है? कौन?
1: सुशीला बहन तुम?
2: लो भैया पहले ये रोटियाँ खाओ, मक्की की रोटी और साग है। भैया हम जल्द ही तुम्हें छुड़ा लेंगे।
0: देखो सुशीला बहन, पुलिस को तुम पे शक हो जाएगा, अब तुम यहाँ मत आना।
2: मैं क्रांतिवीर भाइयों की बहन हूँ, इन गोरे बंदरों से नहीं डरती। अरे भैया जब मौका मिलेगा जरूर आऊंगी, आप मेरी चिंता मत करना। बस मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह आपको इस जेल से छुड़ा लूं।
0: तुम परेशान मत हो बहन, और भाइयों से कहना वो काम जारी रखें। मेरे ना रहने से कुछ नहीं होगा, आजादी के लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। तुम जाओ, अलविदा।
2: नहीं भैया, मैं गांधी जी से बात करूंगी कि वो अंग्रेज सरकार से सीधी वार्ता में तुम्हारी सजा के बारे में बात करें।
0: नहीं बहन नहीं, तुम ऐसा मत करना। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए।
3: सुनिए आप, हाँ इस तरफ आइए, आपको साहब बुला रहे हैं।
2: अच्छा भैया मैं चलती हूँ, लगता है पुलिस को शक हो गया है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।
0: जाओ बहन, अलविदा।
2: चलो संतरी जी।
3: हाँ आइए।
2: संतरी भैया तुम चलो, मैं जरा उधर होकर आती हूँ।
3: हाँ जल्दी आओ।
2: मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली।
1: अरे सरकार, वो औरत भाग गई। अरे मुझे उसने बोला कि मैं वो अभी आती हूँ, और वो पता नहीं कहाँ गया।
4: पुलिस को शक तो हुआ, पर सुशीला चकमा देकर भाग निकली। भगत सिंह उन्हें अपने बचाव के लिए मना कर चुके थे। आजाद के कहने पर वो गांधी जी से मिली, पर भगत सिंह को छुड़ाने की बात बन न सकी। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए।
2: भैया तुम अकेले ही चले गए, क्या अपनी बहन की याद भी नहीं आई तुम्हें? भैया 23 मार्च 1931 को मेरा छोटा भाई भगत सिंह भी शहीद हुआ, लेकिन दुर्गा भाभी मुझे इनका अधूरा काम पूरा करना है। मैं करूंगी इनका काम पूरा।
4: बाद में सुशीला दीदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गईं, और 1932 का अधिवेशन, जिसे अंग्रेज सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया था, उसमें अपना योगदान दिया और गिरफ्तार की गई, मुकदमा चला।
5: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
6: तुमने कानून तोड़ा है, तुमको सजा मिलेगी, आप जेल में चक्की पीसो।
5: मुझे जेल का कोई डर नहीं है, भारत माता की जय।
6: अपना पूरा नाम बताओ।
5: मेरा नाम इंदुमती है, और इसके अलावा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती।
6: ओके, 3 माह की जेल और ₹200 का जुर्माना, तुमको सी क्लास जेल मिलेगी।
5: मैं जुर्माना नहीं भरूंगी।
6: तो 1.5 महीने की सजा और भुगतो, दैट्स इट।
5: कोई गम नहीं, शीश कटे घर बार छिने, उजड़े चाहे शरीर हमारा, न झुके थे न झुकेंगे, बदल देंगे सागर की धारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
4: 4.5 माह की सजा काटने के बाद सुशीला दीदी दिल्ली चली गई, और श्याम मोहन वकील साहब के साथ रहकर क्रांति का संचालन करती रहीं। एक दिन अचानक पुलिस ने उनके मकान को घेर लिया, और सुशीला की सहेली ने ही मुखबिरी की थी।
3: कौन है बाहर?
5: मैं हूँ, मैं सुशीला दीदी की सहेली। तुम पुलिस के साथ? गद्दार,
7: तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, सब तरफ पुलिस है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
4: एक महीने सुशीला दीदी को थाने में रखा गया, उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सका। उन्हें कहा गया 24 घंटे के अंदर दिल्ली छोड़कर चली जाएं।

0: दिल्ली से सुशीला पिता के पास पंजाब चली गई। 1 जनवरी 1933 को श्याम मोहन वकील साहब के साथ उनका विवाह हो गया और वो हो गई सुशीला मोहन। ये दो क्रांतिकारियों का सुखद मिलन था।
1: काका, क्या फिर सुशीला दीदी घर गृहस्थी में रम गई?
0: नहीं नहीं, सुशीला दीदी जैसे लोग जीवन में कभी शांत नहीं बैठते। आज स्त्री पुरुष बच्चों सभी के लिए सुशीला दीदी प्रेरणा है। अरे हमें सीखना है कैसे सुशीला दीदी ने असहाय गरीब लोगों के लिए और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जीवन का नया रास्ता बताया। अपने सुख दुख भूलकर अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा यज्ञ में झोंक दिया और जीवन के अंतिम दिनों तक काम करती रही।
2: हाँ काका, इस कागज में भी लिखा है कि सुशीला दीदी ने 13 जनवरी 1963 को इस संसार से विदा ली, सबको चलते रहने की प्रेरणा देकर।
0: हाँ, वो कहती थी ये अनमोल जीवन तभी बचेगा जब स्वस्थ रहेगा तन और मन।
3: वाह भैया वाह, सुशीला दीदी तो हम सब के लिए प्रेरणा है।
4: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद घ्या।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर शिवानी।
3: ओम शांती।
2: वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
3: थैंक यू सो मच।
2: आपने पिछली बार कहा था कि कम से कम हम लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस करें कि तब जब भी गुस्सा आए या कोई इरिटेशन आए तो हम कुछ बोले ना, एटलीस्ट सुपरफिशियल आउटर लेवल से शुरू करें, ABCD से कम वहां तो रोक लें। आपने यही कहा था ना, उससे मिलता जुलता कुछ मैं पढ़ के सुनाऊं आप। 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस। इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट अंडर्स।
3: आप एक एक बात जो पता नहीं कहां से ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा लगता है कि सारी जो हम बातें कर रहे हैं वही बातें आपको और मिलती जा रही हैं, ताकि जो बात हम कर रहे हैं एंड इट्स ऑन आवर माइंड ऑल्सो,
2: हाँ, जो जो मैं खोजता रहता हूँ ना
3: वो अपने आप फिर कहीं ना कहीं से मिल जाती है। बट वो आपने होमवर्क ट्राई किया?
2: हाँ किया, लेकिन मैं फेल हो गया।
3: आप फेल हो गए? एवरी टाइम?
2: बिल्कुल फेल होगा।
3: एवरी टाइम फेल?
2: नहीं, बस देखिए क्या है ना, इरिटेशन हुआ, मैं रोका तो अंदर ही जलता रहा एक एक दो दो घंटा, उस पॉइंट को नहीं बोला, लेकिन उससे क्या होने लगा, चेहरे से दिखता था, लोग पूछते थे और एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, लेकिन अंदर दबे हुए हैं। और मैंने कहीं सुना भी था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको दबा के मत रखना। चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कुछ जरा डिफिकल्ट है।
3: राइट, नाउ एंगर एक बार जो क्रिएट हो गया तो उसको दबा के रखना डिफिकल्ट है, और एक्चुअली उस टाइम हम अवेयर भी नहीं होते। अगर उतनी अवेयरनेस होती कि ये अभी क्रिएट हुआ है लेकिन इसको बाहर नहीं निकालना है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड वे। जब हमें यही अवेयरनेस नहीं थी कि हम अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो थॉट्स अपने आप आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस होती कि हमने क्रिएट किया फिर हमने बोला, तो देन दे विल हैव टू बी अ लिटिल पॉज कि मैंने क्रिएट किया फिर मैंने बोला। We are working towards finishing the creation of anger, और एक नई creation करनी है कि मेरी सोच ही एक अलग तरह की create हो, फिर मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि क्या सोचा, वो बोलना है, कैसे करना है। लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना, ये एकदम से नहीं होगा।
2: मैं बीच में डिस्टर्ब करूं? एक चीज हुई, बोलने के बाद याद आया कि यार मुझे ये तो होमवर्क था, मुझे बोलना नहीं था।
3: But that is also very good. That is also very good. See, अगर पहले क्या था, लेट्स गो फ्यू डेज बैक और सम टाइम बैक, जब
2: पहले ये था क्यों नहीं बोलूं, अच्छा हुआ ना,
3: दैट इज,
2: ऐसे करेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम,
3: दैट इज इट,
2: एंड आई एम राइट। एंड उसको सिखाएंगे कैसे, करेगा कैसे बंदा, फिर ठीक कैसे होगा।
3: परिवर्तन है, परिवर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आज सोचा, आज समझ में आ गया, कल हो गया। व्हेन वी से अवेयरनेस, हमें परिवर्तन का भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अवेयरनेस की चेंज कैसे आएगा, बिकॉज उसकी भी एक इक्वेशन है। पहले रिएक्ट किया तो उसको जस्टिफाई किया, कोई भी रिएक्शन, नॉट ओनली एंगर, कोई भी रिएक्शन, क्रिटिसाइज किया उसको जस्टिफाई किया हमने, हम हर्ट हुए उसको जस्टिफाई किया,
2: मेरे साथी भी जस्टिफाई करते थे,
3: हाँ, सभी जस्टिफाई करते
2: थे, बोल सके तो बोल दिया, वेरी गुड,
3: राइट, सो जस्टिफाई,
2: हिम्मत है आप में,
3: हाँ। आपको किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लग रहा है, आपने कहा नेचुरली बुरा लगेगा, हमारे आसपास भी सारे लोग कहेंगे नेचुरली बुरा लगेगा, तो हम सब ने उसको जस्टिफाई किया। एंड जब हमने उसको जस्टिफाई किया मतलब हमने अपने आप को कहा यू वर राइट,
2: ही वॉज रॉन्ग।
3: एंड ऑलवेज वी वुड फाइंड समथिंग, जो स्टिम्यूलस था हम रिएक्ट कर रहे थे, एंड एवरी टाइम द इक्वेशन वॉज आई एम राइट दे आर रॉन्ग। जब तक ये पहली लाइन नहीं टूटी जस्टिफिकेशन की, तब तक तो जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं होनी। एंड वी हैव स्पेंट मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ ओनली जस्टिफाइंग आवर रिएक्शंस, एंड हमारे आसपास के लोग उसको एंडोर्स भी कर देते हैं, उसको स्टैंप लगा देते हैं, और हम जाते भी ऐसे ही लोगों के पास है. यू नो, हम जब उदास हैं, परेशान हैं, गुस्सा है, हम अपनी बात शेयर करने भी ऐसे ही लोगों के पास जाएंगे जो कहेंगे यस यस यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग लाइक दैट, इट इज नेचुरल टू फील लाइक दिस एट दिस टाइम. तो फिर वो हमारे रिएक्शन और भी ज्यादा रीइन्फोर्स हो गया कि आई वॉज राइट. जितना वो रीइन्फोर्स होता गया, जस्टिफाई होता गया, उतना वो स्ट्रांग बनता गया एंड उतना वो मेरा जीवन जीने का तरीका बनता गया.
2: सिस्टर एक बात पूछती थी आपसे, एक बार मैं एयरपोर्ट पे देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी यू नो उससे बहुत आर्ग्यू कर रहा था, जो एंट्रेंस पे पुलिस जो होती है, और वो भी अड़ गया पुलिस वाला उससे, मतलब 100th होगा, मतलब उसकी 100 रुपए तनख्वाह तो उसकी 1,00,000 होगी, वो अड़ गया पुलिस, यू कांट डू दिस दिस दैट दैट. बाद में उसकी वाइफ भी थी, हम भी थे, और अचानक 10-15 मिनट के बाद ये सारे के सारे VIP लाउंज में मिले मुझे. अब उसकी वाइफ बार बार मुझे बोले यू नो दैट मैन कैसी बदतमीजी से बात कर रहा था साहब से. तो वो मैंने कहा वो आदमी कर रहा था मैम, लेकिन आपके साहब ज्यादा बदतमीजी से कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था कि आप मुझे अपने टिकट दिखाइए, कागज दिखाइए, आइडेंटिटी दिखाइए. उन्होंने फिर अड़ गए कि मेरी आप आइडेंटिटी पूछने वाले कौन है. मैंने कहा वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था. एंड उस औरत को इतना बुरा लगा. एंड ये जो बात आप कह रही थी कि जस्टिफिकेशन और स्टैंप की, इसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि मेरे, हाँ सुरेश भी बोले कि ऑफकोर्स ऐसे कैसे बोल सकता है, आप इतने बड़े आदमी हो.
3: यहाँ तक कि आप सिर्फ ये नहीं बोलो, आप ये भी बोलो देखो मेरे को भी तो सब जानते, मेरे से भी मांग लिया, मतलब तो रीइन्फोर्स कर दिया कि वो जो सामने वाला है वो तो बिल्कुल ही गलत.
2: यही मेहनत जो आपने कल हमको होमवर्क दिया था परसों लास्ट एपिसोड में, इससे मेहनत हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, एनर्जी तो उतनी लगी.
3: नहीं, लेकिन डायनामिक्स बिल्कुल ऑपोजिट है ना. जब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो रॉन्ग है, हम राइट थे, तो जस्टिफिकेशन का रिजल्ट क्या है, आई एम राइट सो आई डोंट हैव टू चेंज. तो मेहनत नहीं करनी ना मुझे, चेंज होने की मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मैं राइट था. पुलिसमैन ने ठीक से बात नहीं की, उसको बात करने का तरीका नहीं आता. आई विल इवन कंप्लेन टू हिज हायर अथॉरिटी, इज दिस द वे ही बिहेव्स, आई विल गेट हिम ट्रांसफर्ड, आई विल गेट हिम सैक्ड. माइंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन. तो जस्टिफिकेशन जब हुई, एंड ये सारा दिन हो रही है, हमारे पास इतने लोग जो आते हैं मिलने अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके, कहेंगे माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय हस्बैंड इज लाइक दिस, माय सन इज लाइक दिस. अब काउंसलिंग मींस हमें उनको बताना है कि आपको क्या करना है इसमें, व्हाट डू यू हैव टू डू सो दैट योर सिचुएशन बिकम्स मोर फेवरेबल.
2: बिकॉज दैट वो आई हैव गिवन अस कि उसको बताओ.
3: आई सेड वो तो आए नहीं ना, अब आप आके बोलो माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय मदर इन लॉ, दे जस्ट वॉन्ट कि वो आए. We should listen to them. कि my mother-in-law is like this, mother-in-law is like this, and we say, poor you, आपकी mother-in-law ऐसी है ना, क्या करे, लेकिन आपको रहना तो पड़ेगा उनके साथ, अब आप रहो. Then they'll say, अच्छा आप बताओ सिर्फ हम कैसे एडजस्ट करें उनके साथ. And then अगर हम उनको कहें बट आपकी mother-in-law राइट है जो वो कर रही है, उनके दृष्टिकोण से तो वो बिल्कुल सही है, they don't like us. They say, this is not what we came to you for. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जस्टिफिकेशन हर एक ढूंढ रहा है, और जब तक जस्टिफिकेशन तब तक द जर्नी डज नॉट बिगिन.
2: मैं भी ऐसे ही डॉक्टर ढूंढता था. हाँ, सिगरेट इज बैड फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट. अल्कोहल से कुछ नहीं होता. क्यों नहीं होता? नहीं, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ. हम तो दूसरा बोलता था बाबा रिसर्च हो चुकी है, अल्कोहल से भी फिब्रिलेशन हो सकता है, ज्यादा लोग वीकेंड्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, हार्ट का पूरा बीट चेंज हो जाती है. तो नहीं नहीं नहीं, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ.
3: दिस इज इट, जस्टिफिकेशन. सो फर्स्ट स्टेप जो आपने कहा ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी हैबिट का, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी संस्कार का इज स्टॉप जस्टिफिकेशन. स्टॉप सेइंग I was right, the other person was wrong. चाहे कुछ भी हुआ हो, अगेन हम जस्टिफिकेशन या राइट एंड रॉन्ग बात का नहीं देख रहे हैं, हम राइट एंड रॉन्ग अपने रिएक्शन का चेक कर रहे हैं. हियर इट हैज टू बी वेरी क्लियर, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ बहुत गलत, मेरे लिए गलत किया, वो राइट है या रॉन्ग है जो उन्होंने किया इज नॉट द इशू. मेरा जो रिएक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है, दैट इज माई फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जब तक हम अपने रिएक्शन को राइट कहते जाएंगे, एनी नेगेटिव रिएक्शन, एंड नेगेटिव मीन्स जो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, जो मुझे परेशान उदास करता है, जो मेरे मन को ड्रेन करता है, एनर्जी कम करता है, जो मेरे शरीर पर इफेक्ट लाता है, जो मेरे रिश्तों में उलझने पैदा करता है, एनी सच रिएक्शन, छोटा सा छोटा भी, ये मेरे लिए राइट नहीं है. आई हैव टू स्टार्ट सेइंग दैट. एंड इवन जैसे आपने कहा ना अल्कोहल या सिगरेट, उसमें भी हम कहते हैं थोड़ा लिया तो, एक लिया तो. अब थोड़ा भी लिया लेकिन जो चीज हानिकारक है, जो चीज डैमेजिंग है, जो कोई बेनिफिट क्रिएट कर ही नहीं सकती है,
2: मतलब चोरी की, हाँ, थोड़ी की या बड़ी की चोरी,
3: तो जो चीज है ही डैमेजिंग, ये भी नहीं कि वो न्यूट्रल है, कि बेनिफिट नहीं क्रिएट करती, न्यूट्रल है अगर थोड़ा लिया. एक बूंद भी जिस चीज का लिया वो कुछ ना कुछ नुकसान ही अगर करके जाएगा तो उसके लिए जस्टिफिकेशन अब नहीं. इसी तरह एक भी तामसिक टॉक्सिक थॉट, चाहे मैं 5 मिनट के लिए उदास हुई, आई हैव टू टेल माई सेल्फ आफ्टर दोज 5 मिनट्स, दिस वॉज नॉट राइट फॉर मी, देन आई हैव स्टार्टेड मूविंग. अगर मैंने कहा तो पहले तो 1 घंटा गुस्सा आता था ना, अभी 10 मिनट ही आया, सो दैट वॉज फाइन. नो, इवन दैट आई हैव टू टेल माई सेल्फ, बट दैट वॉज नॉट फाइन. हाँ, कम हुआ, बट दैट इज स्टिल नॉट फाइन. नो, इट्स लाइक सेइंग 10 सिगरेट लेते थे, अभी 5 ही लिया ना, सो दैट्स ओके. नो, दैट्स ऑल्सो नॉट ओके.
2: हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होना चाहिए,
3: गोल बहुत क्लियर होना चाहिए. और जब तक गोल पर नहीं पहुंच रहे हैं, अपने किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को कभी भी, लेट्स अंडरलाइन दिस, कभी भी किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को राइट नहीं कहना है. राइट कहते ही वो संस्कार और स्ट्रांग हो जाता है, जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है. वी आर मूविंग टूवर्ड्स इरेजिंग इट, डोंट इंडोर्स इट एवर एवर, अपना भी नहीं, किसी और का भी नहीं.
2: अगर समझो किसी को कैंसर हो जाए और बोले ठीक है इट्स राइट, वहां नहीं बोलते, तो इस बात को हम उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते कि ये कैंसर है, ये भी एक डिजीज है, ये एक बीमारी है.
3: फाइनली कैंसर भी तो क्रिएट करेगा.
2: हाँ,
3: ये ही फाइनली, आज मेडिकल साइंस हमें बता रही है कि हमारी मेजोरिटी बीमारियां इन इमोशनल ब्लॉकेजेस से ही तो क्रिएट हुई है. किसी के अंदर दबाने की आदत है, किसी के अंदर कंट्रोल करने की आदत है, किसी के अंदर गुस्सा करने का लॉन्ग टर्म, जब वो संस्कार रहा, रिपीटेड फ्रीक्वेंट पैटर्न रहा, तब एक इमोशनल ब्लॉकेज, फाइनली शरीर के अंदर एक एनर्जी ब्लॉकेज, फाइनली एक बीमारी. फिर हम बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे आपने कहा कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, हम उन बीमारियों को ठीक करने में कितनी मेहनत करते हैं?
2: अगर इस बीमारी को जो आप कह रही हैं आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, एटलीस्ट सुपरफिशियल बाहर के लेवल पे देख लेते हैं, अगर ये मेरी ठीक नहीं हुई, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, तो क्या ये मुझे दुख नहीं देगा? क्या इससे मुझे कैंसर नहीं होगा? क्या इस पेन से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा? तो फिर कौन सा पेन बढ़िया है? कौन सा पेन?
3: जो आपने
2: मैं गाली देके किसी को डांट डूंट के अपना तो निकाल लूं?
3: सी, अगर नहीं दिया, मतलब गुस्सा सप्रेस किया, तो मुझे पेन नहीं होगा.
2: नहीं, ये जब बीमारी में मुझसे मेरा एंगर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहते हुए भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं गलती कर जाता हूँ, फिर मैं गलती करता हूँ.
3: वन थिंग यू अंडरलाइन, अगर आपने कोशिश करनी शुरू कर दी, वो कम होना शुरू हो गया है. एंड दिस इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी.
2: आर यू श्योर?
3: 110%. वेयर एवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग्स हैपन.
2: वेयर एवर अटेंशन गोज, टेंशन गोज.
3: टेंशन गोज अवे. यस, एब्सोल्युटली. यू नो, एनर्जी, योर थॉट प्रोसेस हैज टू फ्लो ऑन दैट थिंग. एंड फ्लो, अब ये पहले हमने कहा गुस्सा जायज है, अब हमने कहा मुझे इसको खत्म करना है.
2: सिस्टर, लोग बोलते हैं मुझसे सिगरेट नहीं छूटती, लोग बोलते हैं मेरा नेचर नहीं बदलता, लोग बोलते हैं कि मैं
3: एक मिनट, जिनसे सिगरेट छूटती नहीं है ना, वो एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते.
2: और जो गुस्सा नहीं छूटता है, नेचर नहीं बदलता, वो भी नहीं बदलना चाहता है क्या?
3: नहीं, वो जब तक जस्टिफाई करेगा तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज मेरी राइट है. इट्स लाइक सेइंग स्मोकिंग छोड़ना है एंड जब परिस्थिति आए तो यू से स्मोकिंग इज माय मेडिसिन. इट्स दैट एक्सट्रीम. यू आर सेइंग स्मोकिंग ही मुझे रिलैक्स करती है इस टाइम पे, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. एक तरफ से लॉजिकली बोलते हैं उसको खत्म करना है, जब डॉक्टर के सामने बैठे हैं तो कहेंगे यस यस आई हैव टू फिनिश इट, और जब सिचुएशन आई तो कहे दिस इज माय रिलैक्सेंट. दिस
2: डिस्ट्रेसिंग कर रहा हूं क्योंकि मुझे नींद चाहिए, बहुत दिन से प्रॉपर नींद नहीं मिली.
3: मैं परेशान हूं, घर में इतनी टेंशन है, झगड़ा हो गया, इफ आई डोंट हैव माय ड्रिंक आई वोंट बी एबल टू स्लीप, दिस इज माय मेडिसिन. तो पॉइजन को फिर परिस्थिति आने पर अगर मेडिसिन कह देंगे तो जस्टिफिकेशन हो गया ना. हाउ विल इट एवर गो, इट विल नेवर गो. कोई भी संस्कार नहीं बदलेगा कोई भी चेंज लाने में, चाहे वो बाहर की आदत है या अंदर की कोई आदत है. तीन चीजें पता होनी चाहिए, वाई टू चेंज. अल्कोहल छोड़ना है, वाई. सिगरेट छोड़नी है, वाई. रिएक्शन नेगेटिव अपना छोड़ना है, वाई. पहले तो सारे वाई ढूंढ लो उसके, वाई टू चेंज. सेकेंड, हाउ टू चेंज, क्या करना है. जैसे हम इस सीरीज में देख रहे हैं, धीरे धीरे और गहराई में देखेंगे क्या क्या करना है ताकि हमारे वो संस्कार बदल जाए. लोगों को लगता है कि हाउ टू चेंज का आंसर सबसे डिफिकल्ट है, ये नहीं पता. ये तो बहुत इजी है, हाउ टू चेंज बहुत इजी है. वाई टू चेंज भी बहुत इजी है, वाई चेंज हमारे पास इतना सब नॉलेज है अभी कि वाई आई नीड टू चेंज दिस. हाउ टू चेंज भी बहुत नॉलेज अवेलेबल है, हाउ टू चेंज. थर्ड क्वेश्चन, Want to change.
2: Want वाली बड़ी प्रॉब्लम है.
3: Want to change. ये सबसे पावरफुल लाइन है. Do I want to change? Unless I want to change, all the why to change and how to change doesn't work.
2: जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी लंदन में एक बार फिर, तो एक मेरे फ्रेंड से मैं बात कर रहा था अबाउट अल्कोहल. यार हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आके दिन में नींद नहीं मिलती है, कभी रात की शूटिंग कभी दिन की, तो मैं ड्रिंक ले लेता हूँ. तो वो मुझसे कहने लगा यार, फिर दो तीन दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग में कहने लगा, यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड सुरेश, तुम्हारा जो प्रोफेशन है उसमें यूथ चाहिए, यंग दिखोगे, आपको तो छोड़ देनी चाहिए. तो मैंने कहा अरे खुशी से जिएंगे हम, बुढ़े का रोल कर लेंगे, बाप का रोल कर लेंगे, दादा का रोल कर लेंगे, मैं दारू क्यों छोड़ू, मैं तो मस्त लाइफ जियूं. वांट वाली जो बात है, एक तरफ तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब उसका सवाल मुझसे पूछा गया तो इमीडिएटली बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अगर मैं बूढ़ा लूंगा तो बूढ़े का रोल करूंगा.
3: सो ये वांट टू चेंज. तो जब तक आप वांट टू चेंज नहीं क्रिएट करते हैं, लेट्स नॉट स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन द व्हाई टू चेंज एंड द हाउ टू चेंज.
2: टाइम वेस्ट
3: वेस्ट बिकॉज वो होगा नहीं बिकॉज द वांट इज नॉट देयर. कोई भी चीज के लिए वांट चाहिए, आई वांट टू चेंज दिस. तो वो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा, जस्टिफिकेशन. रिएक्ट किया, एक्सेप्ट कर ले, no problem, I got hurt, I got upset, I got angry, I made a mistake. Just let's come up to this one step. Every time, aaj sara din mein agar hum react kar gaye, sirf first equation ko solve kare, I accept, saying this to myself only, ye kisi aur ke liye nahi hai, apne aap ke liye, I accept this was my mistake. I want to change this sanskar. To pehle justification khatam. Second, स्टेप कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे गुस्से का कारण कौन था. तो मैनी ऑफ अस विल से, हाँ मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात बहुत गलत की, उनको बोलना नहीं चाहिए था इस तरह से.
2: हाँ कई बार समझाया से मत करो,
3: फिर भी करे,
2: अच्छा नहीं लगता, फिर भी किया.
3: तो मेरा रिएक्शन गलत था, आई एक्सेप्ट मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिलाया उन्होंने, मतलब जस्टिफिकेशन खत्म की, फर्स्ट स्टेप पर आए, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि वो गुस्सा मेरी क्रिएशन था, ब्लेम कर दिया. मेरा रिएक्शन, मैं बीमार हुआ, लेकिन मैं बीमार इसलिए हुआ क्योंकि मौसम खराब है, नॉट सेइंग मैं बीमार हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ.
2: हाँ, कितने लोग मेरे एनआरआई फ्रेंड्स आते हैं अमेरिका से, लंदन से, ऑल दैट, ये सड़क के ऊपर जो बॉम्बे में चौपाटी पे सारा गंद मिलता है, जंक फूड खूब खा जाते हैं, बोलते यार इंडिया का पानी खराब है, बीमार हो गया मैं.
3: सो वी नीड टू गो स्टेप वाइज. पहले हम जस्टिफाई करते थे कि गुस्सा ही सही है, अब हम वो लाइन पर पहुंच गए कि नहीं ये मेरे लिए नुकसान करता है, तो ये मेरा गलत था। लेकिन सेकेंड स्टेप अब और भी इम्पोर्टेंट कि ये गुस्सा या जो भी रिएक्शन, ये मेरी क्रिएशन है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। लेट एनीथिंग हैपन इन द वर्ल्ड एंड एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, नॉट स्मॉल थिंग्स, एनीथिंग, तो भी मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है।
2: डिफिकल्ट है
3: ये रियलिटी है। ये डिफिकल्ट या इजी का, इसमें डिफिकल्ट हम तब कह सकते हैं कि चेंज कैसे लाना है, तब हम फिर भी बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, दैट्स ओके, बिकॉज तब कुछ करना है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि क्रिएशन तो मेरी है।
2: मेरी इतनी अच्छी कांच की बॉटल तोड़ दी इसने, मेरा इतनी अच्छी नई गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर ने मार दिया,
3: नो दैट्स ओके,
2: तो मुझे गुस्सा आया।
3: गुस्सा आया इज ऑल्सो ओके, गुस्सा आया इज ऑल्सो फाइन। इम्पोर्टेंट इज गुस्सा नॉट गुड, सो जस्टिफिकेशन फिनिश्ड। और दूसरा, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया, ये दो लाइन हो गई ना, तो तीसरी वाली फिर इजी हो जाएगी।
2: क्रिएट किया वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है सिस्टर,
3: इसको सारा दिन में चेक करना है, जिस दिन आपका मूड अच्छा। चलो आप भी हुई, ड्राइवर भी हुई, जो उसने किसी को जाके नई गाड़ी ठोक दी वो भी हुई, लेट्स से। लेकिन आज आपका मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली है, मतलब यू आर रियली रियली रियली हैप्पी। एंड उस समय ड्राइवर ने वो गाड़ी कहीं ठोक दी, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा।
2: मानता,
3: आप बोलेंगे उसको एक बार, फिर बोलेंगे चलना छोड़, मूड बहुत बढ़िया, चलो चलते। आप भी वही, ड्राइवर भी वही, गलती भी वही, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी है इस समय, स्थिति, मन बहुत खुश है इस समय, तो वो खुशी में रिएक्शन चेंज हो गया ना, ये भी आपने ही क्रिएट किया। अब ऐसे ही किसी और समय पर फिर ड्राइवर भी हुई, आप भी हुई, गलती भी हुई,
2: गलती शायद कम भी हो,
3: मूड अच्छा नहीं हो, बड़ा रिएक्शन हो गया। और एक परिस्थिति, ड्राइवर भी हुई, आप भी हुई, गलती भी हुई, लेकिन आज आप अपने ऊपर अवेयरनेस से हैं, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया ना, नेक्स्ट टाइम गाड़ी ध्यान से चलाना, ये भी आपकी क्रिएशन है। ये नहीं कि ड्राइवर ने कुछ कर दिया, क्योंकि ड्राइवर हुई, गलती भी हुई, लेकिन आज आपका रिस्पॉन्स अलग, तो कैसे हुआ? हर बार जब हम प्यार से बात करते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है, हम फॉरगिव कर देते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है, हम कंपैशनेट होकर पूरी बात को भूल ही जाते हैं कंप्लीटली, वो भी हमारी क्रिएशन है, हम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़कर गलत बात बोल देते हैं, वो भी हमारी क्रिएशन है। सिचुएशंस वही है। लेट्स जस्ट टेक दीज टू स्टेप्स, फर्स्ट justification for the reaction, that is finished, and second personal responsibility, blame finished. ये दो चीजें करनी आज सारा दिन में बस, अभी चेंज नहीं करना, अभी चेंज भी नहीं करना, करो गुस्सा आज सारा दिन में, जितनी बार करना है करो, मतलब जो आ रहा है उसको आने दो, कोई बात नहीं, सिर्फ जैसे आपने कहा ना, आने के बाद भी जो checking है, ये one, this was not right in any situation. Let's first see this. Not that छोटी छोटी बातों में this was not right, और कोई थोड़ी बड़ी बात आ गई यहां तो गुस्सा आना ही चाहिए था, नहीं, this was not right anywhere, every time, never right. ये important, तभी justification finish होगा, कभी right कभी wrong तो नहीं finish होगा। आज सब ठीक है तो सिगरेट नहीं पीऊ, लेकिन आज तो बहुत टेंशन है तब पी लिया, not working. Justification never. And second, ये जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया, बात चाहे कुछ भी थी, ये क्रिएशन कंप्लीटली मेरी थी, कंप्लीटली, उसमें भी ऑलवेज एंड 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जो तीसरा स्टेप है चेंज करने का, बहुत इजी होने वाला है। दिस इज हाउ वी हैव टू गो, एंड दैट्स वाई वो जो आपकी वर्डिंग्स थी वो कितनी सुंदर है, 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 90% is because of the wrong tone of voice.
2: Raise the words, not the voice.
3: Why? What does it mean, raise the words? Raise the words means shreshth sundar bol bolo, powerful shabd bolo. Aapko kuch kaam karwana hai kisi se, shabdon ko uthao. Aur shabdon ko uthao matlab accurate, perfect, पावरफुल वर्ड, आपके दो शब्द
2: पॉजिटिव,
3: शब्दों को उठाओ, रेज द वर्ड. जब रेज द वॉइस होगी,
2: शब्द स्ट्रांग बोल दो लेकिन आवाज मत उठाओ.
3: नहीं, जब रेज वॉइस होती है, आवाज उठती है, तो शब्दों की वैल्यू
2: जीरो
3: और शब्दों की क्वालिटी, हमारे मुख से कुछ भी निकल जाता है तब. दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी बुरा लगता है तब, क्योंकि जब एनर्जी टर्बुलेंट हो गई, मन गया आउट ऑफ कंट्रोल, वाणी भी गई आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर आवाज उठ गई. हमें लगा हमने ऊंची आवाज में बोलेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आवाज उठी. एंड दैट्स व्हाई द सेकंड लाइन वाज सो ब्यूटीफुल कि बारिश से पौधा उगता है, थंडर से नहीं. मतलब आपको कुछ रचना रचनी है, कुछ काम करवाना है, क्रिएट करना है, तो उसको नरिश करना है. प्यार, पावर, शक्ति, पॉजिटिविटी से नरिश करो, चाहे अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, काम के स्थान को भी.
2: ये सारा रिसोर्ट है हजारों एकड़ में. मैं देखता हूँ बारी बारी स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं.
3: छोटे नरिशमेंट है,
2: कितना नरिशमेंट दे रहे. अगर यही एकदम बड़ा कोई इलाके, एकदम पानी का एकदम,
3: नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ बड़ा तूफान आ जाए अभी,
2: थंडर
3: तो
2: आ जाए,
3: ये सारी सुंदर रचना उखड़ भी सकती है. तो थंडर क्या करता है और नरिशमेंट क्या करती है, वॉइस की टोन क्या करती है और वर्ड्स की पावर क्या करती है. हमें काम करवाना है ना, सुंदर पावरफुल वर्ड्स यूज करो. ऐसी पावर हो शब्दों में कि शब्द बोले और सामने वाला मना न कर पाए. मना कर ना पाए इसलिए नहीं क्योंकि मजबूरी है, मना करना ना चाहे क्योंकि बोल इतने सुंदर है, वो उस तरह से मना ना कर पाए कि इतने सुंदर बोल बोले हैं, इतने प्यार से बोला है कि मैं मना ही नहीं कर सकता इनको अब. दैट इज रेज द वॉइस. So just take care of the tone. जितना आवाज volume कम, volume मतलब anger. Volume doesn't mean tone of the voice. It is the anger. जितना वो कम होता जाएगा, मन control में आएगा, तो words भी फिर control में आएंगे. कम बोलकर, सुंदर बोलकर, and more important, प्यार की energy से बोले हुए बोल, तो आपका garden बहुत सुंदर बनेगा. And इसीलिए जो हमने last time देखा था, सामने वाला garden भी सुंदर बनेगा, मटेरियलिस्टिक, और जो प्यार और खुशी वाला गार्डन है वो भी बहुत सुंदर बनेगा. दोनों जगह काम अच्छा हो जाएगा. फिर
2: ये होमवर्क लेकर मैं चलता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलके बताता हूँ आपसे क्या हुआ रिजल्ट इसका.
3: थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच. नमस्कार. ओम शांति. थैंक यू सो मच.
4: 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस. Raise your words, not your voice. The first step to transformation is not to justify your negative emotion, but to take personal responsibility of having created it. When we justify our emotion, we blame others for it. We then expect them to change and do not find the need to change ourselves. To change any habit, we need to answer 3 questions. Why should I change? How do I change? And most important, do I want to change? Unless the want to change is there, the how to change will not get implemented.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार

0: परम में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं. जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
1: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याच सोबत
2: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
3: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: Namaskar and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे, लेकिन सच कितना सहज है. अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान, और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान. लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी है, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है. तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति
4: सिस्टर शिवानी. इतनी सारी बातें कर ली, इतना सब कुछ जान लिया हमने. खास जो हमने बात जानी थी, अगर पिछली कुछ कड़ियों को देखें तो जिस समय में हम रह रहे हैं, हम में से हर कोई ये महसूस कर रहा है कि समय बहुत बलवान है, ये भी कहते आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत खराब चल रहा है, ये भी सुनते आ रहे हैं. और जिस तरह से क्लैरिटी आई है हमारे सामने कि यस, कितने युगों की बात की है और अब आई थिंक अल्टीमेट हो चुका है, बिकॉज ब्लैकनेस इज देयर ऑल अराउंड अस. आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा. उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहां से होते हुए आए हैं.
5: हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर. यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन. और जहां क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी. यू नो, बिकॉज जो चीज क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी. एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर. एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है. और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं, और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुकी हैं, यू नो, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है.
4: नास्ट्रोडेमस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है.
5: यस, सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ. नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो. पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में. एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नजदीक लग रहा है कि 2008, 2010, 2011. तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज within our lifetime. पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
4: चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
5: जब होगा तब देखा जाएगा. लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा. तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है. बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं. सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा. अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा. बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता. हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड. हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद दिन सुबह होनी है।
4: इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली।
5: यस एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर। बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम। जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल मैटर एंड गॉड इज एनर्जी। तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, तो इसलिए जितनी नंबर ऑफ सोल्स है वो फिक्स्ड है, उसमें ना कोई एडिशन है ना कोई सब्ट्रैक्शन है। एंड द अदर इज एनर्जी मूव्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट, वो पहले एक ऑर्डर्ड स्टेट में है, जब वो मूवमेंट या एक्शन में आती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऑर्डर्ड स्टेट से क्योटिक स्टेज में आ जाती है, एंड देन अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन्स। जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है, एंड दैट रीचार्जेस और रीकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी, एंड इट मूव्स फ्रॉम अ कियोटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज। तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे धीरे धीरे कर्म में आते आते आते इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज, फिनिश नहीं होती। लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा निराकार शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इनटू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन, एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन। द सोल विल बी इट्स हाईएस्ट स्टेज, मूव कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हाईएस्ट स्टेज। तो हमें समझ में आता कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल। तो जैसे दिन का साइकिल सुबह दोपहर शाम रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल डाउन, सत्युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज एंड देन आयरन एज। तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे। कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है आजकल हम कहते हैं, घोर कलयुग है। जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है। लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर
4: देयर इज दैट होप, यू नो,
5: इट्स नॉट अ होप, इट्स अ रियलिटी। सो इट्स जस्ट दैट वी प्रिपेयर फॉर दैट रियलिटी। अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो तो हमारी रात कैसे बीतेगी? इट विल फील कि ओ माय लाइफ विल बी लाइक दिस, यू नो। बट हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं ना, वो नो ग्लोबल लेवल सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है?
4: वंडरफुल। एक्चुअली यू नो, माइंडसेट चेंज करने की बात है सबसे पहले, ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्फ सुबह आने वाली है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस।
5: इट कांट गो ऑन। एंड एनीवेज इफ यू लुक एट इट एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, environment, it just can't go on and on and on forever. कब तक? कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा। तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे तो सोल वॉज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर, तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाइएस्ट एनर्जी। सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल, जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूँ, वो उस समय में 100% नेचुरल थी। जैसे आज मैं शरीर हूँ ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूँ, उस टाइम मैं आत्मा हूँ इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था। इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट स्लोली, बट इट वाज अ स्लो प्रोसेस, इट वाज अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल, एंड वी हैव एंजॉयड दैट जर्नी, वी हैव। जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, यू नो, इतना दुख है, इतनी अशांति है, लेकिन कितना समय
4: अशांति तो अब आई है,
5: अब आई है। ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, हम कोई गेम भी खेलते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम वी गेट टायर्ड, बट वी एक्सेप्ट दैट। हम समझ लेते हैं कि 4 घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे, और फिर जब थक जाते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल वी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
4: नो, वी विल नॉट।
5: 3 hours 45 minutes वाज गुड गेम, 15 minutes पेन, कैन गिव अप द गेम,
4: but it pains actually those 15 minutes, so that's the pain we're feeling now.
5: That's the pain. And why are we feeling that pain? Because now we are tired. You know, the soul has really reached its stage where hame ye yaad hi nahi ki main atma hu, to wo energy level bilkul jaise finish nahi, lekin it's reached its lowest point. Lekin now we have the opportunity, because the highest source of energy Paramatma has intervened into the system, so all that I have to do is now
4: connect
5: to him. And I will again move from the chaotic stage to the ordered stage.
4: Before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like I want to ask you a question. ये जो हम पूरे 4 युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं. That's what the question is, you know.
5: Cycle.
4: तो इसका मतलब कई बार हम
5: जैसे सुबह दोपहर शाम रात कई बार हो चुकी है.
4: कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुके,
5: कई बार हो चुके हैं. आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है. साइकिल है. तो अगेन, अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे ये कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा. लेकिन साइकिल,
4: तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं.
5: एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है देन
4: आपको पता है कि आगे भी क्या.
5: इट्स वेरी इजी. से जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं, तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती हैं, एकदम थकी हुई जैसे, यू नो, टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम. एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं, तुम 100% प्योर थे, यू नो, तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है. वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब यू नो पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल. पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है. क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे, आप थे 100% प्योर, आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए, लेकिन थे आप, और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे जाएंगे.
4: आप ही जाओगे, कोई आप और ही जाओगे.
5: और आपने ये जंप पहले भी किया है, क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है. तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है, जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर. यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो, somebody has to motivate दिल से, यू've डन इट बिफोर, सो नाउ यू कैन डू इट अगेन. बट इफ somebody asks मी टू डू समथिंग विच आई've नेवर डन बिफोर, इट विल बी लिटिल चैलेंजिंग. बट इफ आई've डन इट सो मेनी टाइम्स बिफोर, देन इट्स सिंपल. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है, क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है, बट आई वॉज क्लीन.
4: तभी सिस्टर शिवानी कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने ये देखा हुआ है पहली बार. इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ.
5: yes. ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था. बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन. तो ये व्हाट इज दिस? अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है? लेकिन अब हमें समझ में आता है, बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटेशन, इट इज मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
4: हो चुका है.
5: हो चुका है. जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है, और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को ले तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है, यू नो इंट्यूशन। इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माई फ्यूचर, इट्स माई टुमोरो। बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माई पास्ट।
4: Okay.
5: See, look at it on a cycle. Here I am today. This is my tomorrow. But then if I look at it from here, this is my yesterday. So that's why, because it's my yesterday, to yesterday to yaad hai.
4: It's somewhere there in my mind.
5: Yahan hai. To jitna jitna mind ko silent karte jayenge, to wo yesterday yaad aata jayega. Aur jitna yesterday yaad aayega, tomorrow pata lagta jayega.
4: Yes. Now, the time is ki we have to become proactive.
5: Absolutely. Because ab hame bahut kuch karna hai. Now is not the time ki we can just sit back and say ki jo hona hai wo. Kyunki bahar ka parivartan jitni teevra gati se hoga, usse zyada teevra gati se hame apna antrik parivartan chahiye. Kyunki chaos bahar badhega. You know, ordered to chaotic stage. तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर से क्योटिक स्टेज में जा रहे हैं और अभी भी और क्योटिक स्टेज में जाने वाले हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर वट एवर एवरीथिंग, तो वो जो क्योटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज केओटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
4: चेंज हो जाएगी,
5: फिर से ऑर्डर्ड स्टेट में आएगी। लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर,
4: क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या केओटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो
5: वो पर्यावरण हाँ एकदम अच्छा था। तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है। आत्मा प्योर प्रकृति प्योर, आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई। अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल, क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बैटरी चार्ज हुई हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई। लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
4: उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
5: टाइम नहीं उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है,
4: भी करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है।
5: हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन अ मॉरल सोशल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज
4: वेरी वेरी फास्ट।
5: यू नो मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा को उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है। एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है। और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं। अब हम कलयुग में वैसे तो हैं जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम। किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम।
4: स्ट्रेंथन एक्चुअली
5: यस, एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द डायमंड एज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल. क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय. सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल. लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल. तो दिस एज इज द डायमंड एज. तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी. जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज. लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहाँ आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है.
4: मोस्ट एक्साइटिंग
5: वेयर यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्डन एज एंड नाउ. गोल्डन एज में सब कुछ ही अच्छा है, यू नो. तो आपको अच्छाई का भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो. सत्युग में आप हमें फील भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिकॉज होगा ही अच्छा,
4: नेचुरल,
5: इट विल बी नेचुरल. सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है. लेकिन अभी का जो समय है, जहाँ अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए जहाँ चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसे होगी?
4: That's why it's the most valuable period.
5: That's why we are not waiting for Satyug to come. No, we are not, because this period is more beautiful than that, because my life becomes so beautiful right now. तो ये वो संगम युग है. कलयुग से सत्युग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है. सो दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट पर, कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है. एंड इट हैज जस्ट टू मूव एंड द साइकिल हैज टू बिगिन all over again. So this is that period of transformation, jahan from 100%, not 100%, but very impure, we will jump to a stage of 100% pure. Aur usko karne ka tarika kaise hoga?
4: What I can feel is a meditation.
5: Yeah.
4: The way I link, because that, see, if we look at, mujhe lagta bhi hai ki sare darshak jo hamare dekh bhi rahe hain program, hamare is parivar ka hissa hai ki, अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं. यू नो, इट हैज मे बी इट्स 10 मिनट्स, मे बी इट्स 15 मिनट्स, मे बी इट्स हाफ एन आवर, बट दैट्स अ पीरियड यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू. एंड इफ यू मिस इट, यू डोंट लाइक इट, यू वांट इट टू बी देयर.
5: तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी. मेडिटेशन. मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, दे विल री इमर्ज. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? यू नो, जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वॉज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहां वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारे ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर के लेयर में ले आ जाएगा, और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी quite chaotic outside, you know, the outside cleaning process will take place. Transformation kya hoti hai? Ek taraf purana ghar tootta hai aur dusri taraf naya ghar banta hai. To ek taraf kaliyug ka parivartan hoga, srishti ka parivartan hoga, jo humne dekha global warming, snow melting, we said 20 feet the sea level will rise, all this will happen.
4: प्रलय की बात की जाती थी.
5: तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो, पर्यावरण की सफाई होनी है. सत्योगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड. लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा? उन्हें पता भी नहीं चला,
4: आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहने शुरू
5: हो गए। एब्सोल्युटली, तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे। दो काम हम अभी कर रहे हैं, एक अपने ओरिजिनल संस्कार्स को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार्स मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परमधाम, और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगी। एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉर्पोरेट से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुक तो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुक तो करते हैं। जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सके। तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है तो हमें भोगना की फीलिंग ज्यादा आ रही है ना, सफरिंग हैज इंक्रीज्ड। तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है। तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के, जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी, तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यही मिलती हैं। हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं वो ही हमारी सजा है। तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के या फिर योग से। तो जितना हम योग करेंगे अभी परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार्स इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग
4: कम होती जाएगी।
5: एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई मतलब उतने आपके अकाउंट्स सेटल होते गए। क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी लेकिन अंदर की तैयारी
4: जो है वो पूरी
5: उससे पहले हो जाएगी। सो वी विल बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटीफुली, एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो आने वाला समय है वो तो आएगा ही, वी कैन नॉट स्टॉप
4: दैट। सिस्टर शिवानी, नाउ एंड आई एम नॉट गोना से एनी मोर, यू गिव अस होप बिकॉज यू शोड अस द रियलिटी, दैट्स व्हाट आई विल स्टिक टू। और ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: ओम शांति।
4: ओम शांति। मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा, अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्यों सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा था कि याद तो कहीं ना कहीं होगी ही, अगर हम उससे गुजरे हैं तो हो सकता है हमारी यादों में हो। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो, उन्हें तलाशना भी बाकी है। तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हाँ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

सनन सनन पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके मगन रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक झुम झुम झुम झमक झमक छुम

रे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैन उघारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: गुरु गोविंद दोनों खड़े, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश पंकज वेदांत।

0: विनोद, सैंडी, रवि, आकाश, उन्नति, दृष्टि।
1: हर रोज सर यही कहकर कक्षा समाप्त करते हैं। इस हौसी को मन में अच्छी तरह से बसाते हुए हम आज की योग कक्षा को यही विराम देते हैं। मैंने कितनी अच्छी तरीके से नकल उतारी ना।
2: सर चुप।
3: कुछ भी कहो, सुबह सुबह यह योग की कक्षा से बस आनंद ही आनंद रहता है दिन भर।
4: मुझे तो हर काम को करने की बस डबल हिम्मत सी हो जाती है।
0: चलो भाई चलो, सब उधर क्यारी की तरफ चलते हैं। आज तो हम सब बासु अंकल का जन्मदिन मना रहे हैं।
5: कैसे? केक काटकर?
6: जी नहीं, पार्क में आम का पेड़ लगाकर।
3: कितना अच्छा आइडिया है। अगर सब अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं तो धरती हरी भरी हो जाए।
5: बासु अंकल ने ही तो इस पार्क में पत्तों को जलाने के खिलाफ आवाज उठाई थी।
0: आज उन्हीं की वजह से तो सबने मिलकर उधर कंपोस्ट पिट बनाया है।
1: और ये सुंदर फूलों के पौधे भी तो उन्होंने ही लगाए थे।
3: बड़ी मेहनत करते हैं अंकल, माली के साथ साथ मिलकर काम करते हैं।
0: दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं।
5: मतलब?
0: बासु अंकल उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और माली उन्हें पौधों का ज्ञान देते हैं। दोनों एक दूसरे के गुरु हैं।
5: फिर तो गुरु पूर्णिमा पे दोनों एक दूसरे के पांव छूते होंगे।
3: फिर से तुम लोगों ने हंसी में एक बहुत गहरी बात कह दी है।
5: क्या?
3: देखा जाए तो पूरी सृष्टि में ही हमारे गुरु फैले हुए हैं।
0: ठीक कहते हो दीदी, बल्कि पूरी सृष्टि ही हमारी गुरु है।
3: हम सबसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। बापू ने तो जेल में रहते हुए कपड़े की मशीन से सिलाई सीखी।
7: क्या मतलब, दर्जी की तरह?
3: जी हाँ, एक मोची से जूते की मरम्मत करनी सीखी और अपने आश्रम हर समय हर तरह की सफाई करने के लिए तत्पर भी रहते थे। एक बार एक बड़े से पतीले को मांझने लगे। इतना बड़ा पतीला मांझते मांझते बहुत दम लग रहा था, तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। तभी बा आई और उनके हाथों से पतीला छीन लिया और थोड़ी डांटते हुए कहने लगी, बहुत लोग हैं इस काम को करने के लिए, आप आराम कीजिए।
1: हाँ हाँ, बापू को बा का कहना मानना ही पड़ा।
7: मुझे तो एक कविता याद आ रही है जो मैंने एक कॉन्टेस्ट के लिए याद की थी।
5: मैंने भी, चलो मैं एक कविता सुनाता हूँ।
4: मैं भी।
3: ओहो, फिर मैं समझी थी तुम लोग बड़े हो गए हो।
0: दीदी आपने भी तो मैं बोला।
3: हाँ हाँ ठीक कहा, ये मैं बड़ी ही बलवान है।
5: क्या मतलब दीदी?
3: मतलब अगर ईश्वर से संबंध की बात की जाए तो कहा जाता है, जब मैं हूँ तो तू नहीं, जब तू है मैं नहीं।
5: आपका मतलब है मैं का मतलब अहंकार से?
1: मैंने तो एक कविता सुनाने की बात की थी और यहाँ शुरू हो गई एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा।
3: अच्छा तो सुनाओ अपनी कविता, सब सुनाओ।
7: सब?
3: हाँ हाँ सुनाओ, जिसे जिसे आती है बोलो।
1: फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना।
8: ये वाली
9: तो हम सब ने याद है, आओ सब मिलकर बोलते हैं।
10: सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना।

0: मुबारक हो अंकल।
1: हाँ हाँ धन्यवाद। ये देखो, ये मैंने उधर उन सब लोगों को भी बुलाया है जो मेरी सेवा करते हैं। हमारे पार्क का माली, हमारी लोकेलिटी का गार्ड, पास के स्टोर वाले अंकल, मुझे रोज फल सब्जी पहुंचाने वाला भैया, ये सब भी मेरे मित्र हैं।
0: मित्र या गुरु?
1: गुरु?
2: अभी अभी दीदी यही कह रही थी, हमारे सृष्टि में सब हमारे गुरु हैं।
1: हाँ वो तो है।
3: एक बात बताऊं, उस दिन मैं पार्क में घूम रही थी तो बड़ा मजा आया। मैंने एक घास काटने वाली महिला को देखा, दूर से हरी हरी घास के बीच बैठकर घास काटती हुई, रंग बिरंगे कपड़ों में वह बहुत अच्छी लग रही थी।
4: मैं कल्पना कर सकता हूँ।
3: हाँ हाँ, तो मैं उसके पास तक चल कर गई। उसने मुझे अपने पास आते देखा और जैसे भांप ही लिया कि मैं दराती से घास काटना चाहती हूँ। उसने बिना कुछ कहे मुझे दराती पकड़ा दी, और मजे की बात यह है कि जब मैंने घास काटने की कोशिश की तो मुझसे कटी ही नहीं।
0: क्यों?
3: हाँ हाँ, दूर से आसान सा काम दिखने वाली चीज के लिए भी एक खास तरह की तरकीब चाहिए। दराती को एक खास तरह से पकड़ा जाता है, घास को दूसरे हाथ से एक तरह से पकड़ा जाता है, फिर एकदम जड़ों के पास से एक एंगल से उसे काटा जाता है।
5: दीदी आपने तो जैसे घास काटने पर पूरी रिसर्च कर डाली।
3: हाँ हाँ ठीक कहते हो, इतनी आसान दिखने वाली चीज इतनी मुश्किल हो सकती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था।
6: यानी उन पलों के लिए घास काटने वाली महिला आपकी गुरु हो गई?
3: हाँ, उसकी जो भी कला थी, जो भी काम था, उसने मुझे सिखाया, फिर मैंने उसका धन्यवाद किया और घर वापस आ गई।
7: ऐसे कभी कभी कोई बिल्कुल ही अलग सा काम करने में कितना मजा आता है।
5: एक बार मेरी मम्मी गाड़ी चला रही थी, हमने बाजार से सब्जी ली थी और घर वापस जा रहे थे।
4: अच्छा।
5: कुछ अलग करने की बात से ये याद आया।
4: बताओ।
5: उन्होंने दो मजदूर औरतों को एक रिक्शे वाले से कम पैसों में ले चलने को कहा। उन्हें हमारे घर के पास ही जाना था। मम्मी ने तुरंत उनसे कहा, चलो हम उधर ही जा रहे हैं, पूरे पैसे बचा लो, और उनको ले आई अपने साथ और सोसाइटी के बाहर छोड़ दिया।
4: वाह, ये तो अच्छा किया।
5: बड़ा मजा आया।
4: मैं तो खाली पेट आया था। अच्छी बात है यार, खाना मिल रहा है, तो बड़ी और कस्टर्ड।
0: ये लो जी लो, मैं पूरियां बांटने का काम कर रही हूँ।
8: क्यों नहीं, चर्चा के साथ साथ पूरियों पर भी तो ध्यान रहना चाहिए।
4: हमारे योग कक्षा के यही तो मजे हैं, हर एक का जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम से, और गर्मा गर्म चर्चा भी करते रहते हैं।
9: हाँ हाँ, बस बस बहुत हो गया, अभी हलवा भी तो खाना है।
0: आज तो कोई जाने नहीं है, चलना नहीं है क्या? बासु अंकल को और भी तो काम है।
1: अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं है, सब मिलकर बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, इस बार का तो मैं अपना जन्मदिन हमेशा याद रखूंगा। क्या मजेदार डिस्कशन हुई है हमारे योगाभ्यास ग्रुप की।
0: हाँ, मजा आ गया, पूरी आलू और हलवे का भी।

0: सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

0: उसको भुला दो जो तुम्हें याद भी करता नहीं।
1: नहीं, नहीं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

साहब बराबर पहुंचा दिया ना।

प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।

वही तो कमाल की बात है लता जी की कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार है, मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं लता मंगेशकर हूँ, तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ। हम सबके लिए उन्होंने गाया, मेरे से पहले वालों के जेनरेशन के लिए भी गाया और आज तक गा रही। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं।

0: 14, 15, 16, 17
1: इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी छोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए।

दुल्हन खूबसूरत है, कितना यानी कि बाय गॉड कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो आओ, लेकिन ठहरो।

Yes!

सुन रहे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल ठक ठक ठक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

पापा पानी पापा पानी पापा पासा पानी पानी पतनी पनीदा मदपा मदगा मदग धनी धनी धनी धनी पानी पानी पानी।